0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: listen to us. Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: क्या आप सुन रहे हैं?
1: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
1: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा, हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलामुअलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस फाइन मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग लवी डवी शो पर, मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर। आप सभी का इस खूबसूरत सी सुबह में, सनी सनी मॉर्निंग में, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देखिए, छोटा हफ्ता था, ट्यूसडे से शुरू हुआ, आप देखते देखते आज थर्सडे भी आ गया और एक और वीकेंड जो है वो दस्तक दे रहा है हमारी ज़िंदगी में, हमारे रूटीन में, और इस बारे में भी बहुत सारी बातचीत होगी और आपके मनपसंद टॉपिक के साथ बातचीत के साथ आमिर और मैं आपके साथ रहेंगे 11 बजे तक। 416-303-3639।

0: आपके आ जाने से और जब आप आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं तो बस चाय पीने का दिल चाहता है।
1: जी बिल्कुल, चाय और कभी कभी तो पूरा जग ही पीने को दिल करता है। जब पढ़ाई करते थे और मोटी मोटी किताबें होती थी, पहले तो किताब को देख के ही नींद आने लगती थी। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और वो लोग जिन्होंने MBA किया है, वो लोग जिन्होंने MCOM किया है या कॉमर्स की पढ़ाई की है या अकाउंटिंग की पढ़ाई की है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस
0: जी
1: हवाले से। वो किताबें इतनी मोटी होती हैं कि बगैर चाय के आप उन किताबों को
0: तो पढ़
1: पढ़ना
0: ही
1: तो
0: नहीं
1: बड़ी
0: सकते।
1: दूर की बात, हाथ लगाना भी तसव्वुर नहीं कर सकते।
0: अमेजिंग।
1: पहली बात तो यह है। दूसरी बात इंतहाई अहम यह है
0: अच्छा।
1: कि चाय आपको नहीं लगती, आप चाय को लग जाते हैं।
0: ये इस लाइन से हमारे लिसनर्स बिल्कुल रिलेट करेंगे। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं और अपने मैसेजेस सब तक पहुंचाना चाहते हैं
1: जी
0: तो आप हमें स्टूडियोज में कॉल कर सकते हैं 416-593-0055। और अगर चाय के साथ आपकी कोई पर्सनल ऐसी बातचीत है जो आप सिर्फ आमिर के साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं आमिर अपनी जुबान में आपको बताएं उर्दू में अच्छी सी तरीके से, तो आप 416-303-3639 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। May 21st इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल टी डे
1: ओह अच्छा,
0: आमिर, सेलिब्रेटिंग अ ड्रिंक विद अ हिस्ट्री एंड डीप कल्चर सिग्निफिकेंस फॉर मेनी कंट्रीज। हम सभी जिन कंट्रीज से हम आते हैं वहाँ तो चाय का
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: सिग्निफिकेंट
1: बिल्कुल।
0: है। और टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ग्लोबली ऐसी बहुत सारी हैं जो चाय के लिए जानी जाती हैं, जहाँ चाय ओरिजिनेट हुई थी, कई जगह चाय बहुत पी जाती है। उस बारे में हम ड्यूरिंग द शो डेफिनेटली बात करेंगे। चाय को आज सेलिब्रेट करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और आपके बारे में आप बड़े संजीदा लग रहे हैं आज, लगता है कि किस दौर की चाय को आप मिस कर रहे हैं।
1: मैं हर दौर की चाय को मिस कर रहा हूँ। एक दौर तो ऐसा था कि अगर चाय थोड़ी सी नीम गर्म हो या थोड़ी सी उसको ठंडी कर लिया जाए तो हम चाय के साथ नहाने के लिए भी तैयार थे। यानी इस हद तक चाय के साथ हमें प्यार था।
0: हाँ जी।
1: पहले वक्तों में पूछा जाता था, मेहमान आता था तो उससे कहा जाता था कोई लस्सी पानी पिलाएं इसको,
0: जी।
1: कोई लस्सी पानी पिलाएं। यानी उस वक्त लस्सी बड़ी आम होती थी पीने के लिए। और फिर एक वक्त आया कि लोगों ने मुहावरा ही बदल दिया, चाय पानी हो गया वो। आजकल अकेला ही पानी रह गया है। कोई पानी वानी पिलाए,
0: जी, आज
1: राइट?
0: जब ब्रिटिश रूल था
1: जी
0: हमारे मुल्क में तो उस वक्त से शायद एक कॉन्सेप्ट आया, मेरा ख्याल है उसी वक्त से आया होगा, हाई टी का,
1: हाई टी, जी बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, हाई टी
0: ना, डिनर और लंच और डिनर के बीच का।
1: बीच का, बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: तो हाई टी में मतलब होता था कि जो डिनर को थोड़े कुछ एक आध इंग्रेडिएंट्स और एक आध डिश छोड़ दी जाएं, लेकिन बड़ा हैवी कटलेट्स और सैंडविचेस और वो सारी चीज़ें होती थी, फिर चाय पिलाई जाती थी। तो हाई टी का कॉन्सेप्ट है, चाय पे बुलाया है, एक गाना भी बनाया सौतन फिल्म का,
1: जी
0: शायद
1: बिल्कुल,
0: मेरी
1: चाय
0: शादी
1: पे
0: का
1: बुलाए,
0: ख्याल दिल में आया
1: दिल
0: है
1: में आया है जी,
0: इसलिए
1: बिल्कुल
0: मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया
1: चाय
0: है,
1: पे बुलाए,
0: है ना।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो चाय के साथ चाय पे बुलाते हैं, मतलब कॉफ़ी नहीं हो सकती, कॉफ़ी तो शादी बिगाड़ देगी।
1: देखिए, कॉफी का तस्वुर ज्यादा यहाँ नॉर्थ अमेरिका में है, खास तौर पर कनाडा में कॉफी का तस्वुर बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: है।
0: ज्यादा है।
1: आप यूरोप चले जाएं, खास तौर पर इंग्लैंड में,
0: मैं वही आपसे पूछी थी, आप बिकॉज इंग्लैंड में आपने बहुत लंबा अरसा गुजारा है, वहां अभी भी चाय उतनी ही शिद्दत फिर से पी जाती है।
1: चाय की वो लोग परस्तिश करते हैं
0: स्टिल लाइक अभी भी उतना ही।
1: और चाय इतने एहतमाम से वहां पी जाती है कि बेहतरीन क्रॉकरी रखे हैं उन्होंने, बेहतरीन बर्तन रखे हैं उन्होंने, और बहुत तरद्दुद के साथ, बड़े तकल्लुफ के साथ, बड़े एहतमाम के साथ चाय पीते हैं वो लोग।
0: इतनी इंपॉर्टेंस देखिए
1: बहुत
0: उसको।
1: प्यारी प्यारी पिचे रखी हुई हैं,
0: अच्छा, कभी भी
1: साथ
0: बड़े कप में नहीं पीते
1: नहीं
0: यहाँ की
1: पियेंगे,
0: तरह, छोटे
1: यस
0: से कप
1: छोटे से
0: होते
1: कप
0: हैं।
1: में पियेंगे, छोटे कप हैं, बड़े दिल हैं वहां लोगों के, और बड़ी बड़ी चैनके रखी हैं उन्होंने
0: अच्छा।
1: चाय के लिए, और वो मोर और लेस भरी रहती हैं। आप वहां नॉर्थ में चले जाएं, पीक डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, लेक डिस्ट्रिक्ट चले जाएं, मैनचेस्टर से उस तरफ चले जाएं, एडिनबरा चले जाएं, ऊपर स्कॉटलैंड की तरफ चले जाएं, तो चाय, मान लीजिए कि खाना ना भी खाएं लोग तो लोगों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन चाय के बिना लोगों का वहां गुजारा नहीं
0: और वो
1: होता।
0: जो टी कोजी होती थी जिससे वो कैटल को ढकते थे कि वो ठंडी ना हो जाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बड़े वो ट्रे में रख के जो हमारे बैक होम में आते थे वैसे ही वहाँ शायद अभी उन्होंने कल्चर बड़ा मेंटेन किया,
1: बड़ा मेंटेन किया। और दूसरा अहम बात यह है कि चाय को वहाँ मुख्तलिफ शक्लों में पिया जाता है। चाय के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हर शख्स का DNA अलग है, इसी तरह उसकी चाय की पसंद भी अलग है। कुछ लोग चाय में जरा ज्यादा दूध लेना पसंद करते हैं, मिल्की मिल्की सी चाय पसंद करते हैं।
0: कुछ हमारे लोगों जो पंजाब के साइड के जो लोग हैं,
1: हाँ, उसमें अगर थोड़ा सा भी दूध कम हो तो ये कहते हैं ये क्या काली चाय पिला दी आपने मुझे, डिसरिस्पेक्ट है। ये चाय का एहतराम बहुत जरूरी है। तो वो चाय से इनकार कर देंगे एक तरह से। कुछ लोग हैं वो दरमियाने दर्जे की पीते हैं, यानी वो कहेंगे चलें जी टी बैग एक ही डाल दें उसमें और दूध जरा कम रखिएगा, तो वो बड़ी ब्राउन सी बड़ी खूबसूरत सी दिखने में चाय बनती है।
0: जी बिल्कुल, और उसी से मैं आगे बढ़ाऊँ उस बात को कि आजकल एक स्पेशली इन दिस फील्ड जिसमें हम लोग हैं रेडियो में, थोड़ी सी आवाज़ का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए भी और पसंद भी है। तो लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल सोच रखूं तो अक्सर दिन की पहली चाय मैं बहुत ज़्यादा जिंजर और कार्डमम और वो सब मसाला डाल के, जिससे आँख कान खुल जाएं सब ना दिन के लिए। लेकिन वैसे चाय जो अक्सर जो इंग्लिश टी होती है, इफ़ आई रिमेंबर माई पेरेंट्स वो चाय जो पीते थे उसमें वो एक दार्जिलिंग की टी होती थी फ्लेवर वाली, वो डाल के पीते थे। उनका चाय का मतलब होता था कि सिर्फ टी अच्छी चाय, इसका उसमें बहुत ज्यादा मसाला नहीं होता था, चाय का टेस्ट होता था जैसे आप बता रहे हैं। तो वो सबका अलग अलग अंदाज होता है।
1: इंग्लैंड में ज्यादातर पानी वाली चाय पीते हैं, वो कैटल ऑन करेंगे। आप जब कहीं जाती हैं किसी दफ्तर में, किसी घर में, या कहीं कहीं कोई विजिट करती हैं, तो वहां पे एक मुहावरा का बोला जाता है, शायद वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बोला जाता हो, कि कैटल ऑन कर दीजिए। कैटल ऑन करने का मतलब ये है कि चाय की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो वहाँ कैटल ऑन करना एक मुहावरा बन गया है, एंड इट्स अ एवरीडे फ्रेज दैट पीपल यूज इन देयर डे टू डे कॉन्वर्सेशन चाय के हवाले से, कि गुफ्तगू हो, बातचीत हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, किसी घर में जाएं आप, दफ्तर में चले जाएं, तो चाय लाजमो मलजम।
0: चाय का कब से बातचीत शुरू होती है?
1: जी,
0: एक हाथ एंगेज रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये इंटरेस्टिंग बातचीत हमारी आपकी होती रहेगी आमिर। हम कंट्रीज के बारे में भी बात करेंगे कि जो जहाँ पे बहुत चाय पी जाती है। तो नंबर आप बता दीजिए।
1: हम उन शख्सियात का भी जिक्र करेंगे वो बहुत ज्यादा जो चाय पीते हैं। आपके बारे में मुझे एक बात पता चली है जो बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अहम है, वो मैं अपने सुनने वालों के साथ भी शेयर करूंगा। पिछले दिनों शिवानी कहीं अपने टेस्ट्स करवाने गई और वहाँ ब्लड टेस्ट भी था जाहिर है, और डॉक्टर ने जब नीडल लगाई ब्लड के लिए तो अंदर से चाय निकली। इस पे मजीद बात करेंगे।
0: उन्होंने मेरा नाम कनाडा के लोकल नोबल प्राइज के लिए डाल दिया है।
1: आपका हमारा ये ताल्लुक और ये सिलसिला आगे यूं ही बढ़ता रहेगा। 11 बजे तक आप ये प्रोग्राम समाप्त फरमाएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 license number 12374।
3: साहब, आलमी सतह पर हालात बहुत जल्द बदल रहे हैं और हम आए रोज कोई ना कोई नई खबर सुनते हैं, कोई ना कोई नई बात हमारी समाहतों तक पहुंचती है जो हमें चौंका देती है। हम घबरा से जाते हैं, सहम जाते हैं कि न जाने आलमी सतह पर यानी बैनुल अक्वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पर हालात कब पैंतरा बदल जाएंगे, कुछ पता नहीं। सूरत हाल यानी सिचुएशन बड़ी गंभीर है और इतनी गंभीर और इतनी पेचीदा हो गई है कि ऐसे में फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, हकायक का जायजा लेना पड़ता है, हकीकत से आश्कार होना चाहते हैं हम। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि बात किससे की जाए, क्या बात की जाए, किससे पूछा जाए, किससे माहिर राय ली जाए। एक्सपर्ट ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड ऑफ द आवर। इसके लिए एक ऐसा नाम हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने जब से शुरू किया ये काम उसके बाद पलट कर किसी और काम की तरफ नहीं देखा। एक प्रोफेशनल की यही पहचान, यही शनाख्त और यही प्रोफेशनलिज्म होती है कि जिस काम को अपनाए वो उसमें बामे उरूज पर पहुंच जाए और इस तरीके से लोगों की हेल्प करे कि लोगों को ये एहसास हो कि वो तन्हा अकेले नहीं है। मशवरा लेने के लिए, सलाह करने के लिए, बात करने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक लंबे अरसे के तजुर्बाकार और माहिर और एक्सपर्ट इनके साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की, साउथ एशियन कम्युनिटी में अगर मॉर्गेज के एतबार से बड़े नाम लिए जाएं, पुराने नाम लिए जाएं, तो उनका भी एक नाम शामिल है, द मोस्ट रिप्यूटेड एंड द मोस्ट रिकग्नाइज्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन साउथ एशियन कम्युनिटी, राजीव तलवार जी। वेलकम करते हैं सर आपको।
4: थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। हाय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब?
3: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं राजीव भाई, कि आलमी सतह पर बहुत सी जंगें चल रही हैं, मसाइल चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी सी एक तरह से हो गई है, इस सारे केओस में, इन सारे हालात में आप मॉर्गेज वर्ल्ड को या फाइनेंशियल वर्ल्ड को कैसे देखते हैं?
4: देखिए सर, वी आर लिविंग इन अ वेरी अनसर्टेन वर्ल्ड आमिर भाई। आज की डेट में जो दुनिया है बड़ी अजीब सी है, क्या कब क्या हो जाए, कौन से देश में क्या, यू डोंट नेवर नो। जो बात आप कर रहे हैं उसका इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली बहुत गहरा है। देखिए, जो अगर आप प्रोजेक्शन पूछते हैं मुझसे 2026 की, जो भी रेट्स की या इकोनॉमी की प्रोजेक्शन होती है, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स। नंबर वन इंडिकेटर इकोनॉमी का है जीडीपी।
3: सही,
4: जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका के फोरकास्ट 2026 के लिए महज 1.1 to 1.2% है। ये फ्लैट इकोनॉमी है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। एक आम बताऊं, देखिए मुझे 23-24 इयर्स बिजनेस में हुए हैं, जनरली तौर पे अगर हम कभी भी जीडीपी की बात करते हैं तो वो 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2 हुआ करती थी। आज वो महज 1.1% पे है, एब्सोल्यूटली फ्लैट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन. अभी आप देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.9 थी 4-5 महीने पहले, और मार्च की जो फिगर्स आई हैं वो 2.4% पे आई हैं. आनी ही थी क्योंकि एनर्जी लेवल्स और गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा. आप देखेंगे गैस लगभग 1.9 या 2 डॉलर्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू बाय इट, जो कि 129 हुआ करती थी. तो ये जो 35-40% का जो इंक्रीज आया है दैट्स अ ह्यूज इंक्रीज. गैस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी. इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एवरीथिंग विल गो अप, ग्रोसरी प्राइस विल गो अप. अब जाके देखिए आप पहले ग्रोसरी खरीदते थे कितने पैसे लगते थे, आज कितने डॉलर्स लग रहे हैं
3: जी.
4: द थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट को लकीली फेड्स ने पिछले अप्रैल में जो लास्ट मंथ में जो डिसीजन हुआ है उसको उन्होंने बढ़ाया नहीं है, कम नहीं किया है. द ओवरनाइट लेंडिंग रेट इज 2.25 और जो प्राइम लेंडिंग रेट कनाडा में आज की डेट में है वो 4.45 है. बट देयर इज अ बट हियर, आगे जाके क्या होगा मैं अभी डिस्कस करता हूँ. उसके बाद एक और इंडिकेटर बताना चाहता हूँ मैं इकोनॉमी का है सर, द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज की डेट में कनाडा में 6.5-7% पे बैठा हुआ है
3: जी.
4: तो आप देखिए सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव है, गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आज से 6 महीने पहले हम कहते थे कि मार्च अप्रैल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25-0.5% गिरेगा, नहीं गिरा है. अब की प्रोजेक्शन आगे की क्या लग रही है, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स दिस कैन गो अप बाई 0.25-0.5% एटलीस्ट. अब देखिए इकोनॉमी में जो हम अगर मॉर्गेज की बात करते हैं, हाउ डज रियल इफेक्ट रियल एस्टेट जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कैसे इफेक्ट करता है रियल एस्टेट को. देखिए आपके घर की वैल्यू आज अगर $1 million है
3: जी,
4: मेरे पास बहुत केस आ रहे हैं घर की वैल्यू 1 million, मॉर्गेज 1.2, घर की वैल्यू 750, मॉर्गेज 950, घर की वैल्यू 800, मॉर्गेज 1 million. तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना,
3: नहीं सकते सही.
4: आपको लेंडर आपको बोलेगा कि मैं अगले साल रिन्यूअल पे 7% रेट दूंगा, यू कैन नॉट से नो.
3: बिल्कुल सही,
4: यू हैव टू टेक इट और यू विल फाइंड अनदर मॉर्गेज व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट अगेन. तो इसलिए ये जो रेट बढ़ने वाला है बढ़ेगा, इससे जो एक्विटी है आपके घर में और कम होने वाली है
3: जी.
4: अगर आज डिफरेंस 2 lakh का है तो हो सकता है साल 3 lakh का हो जाए या 3 lakh का हो जाए, विच मीन्स अगर मॉर्गेज 7 lakh की है, मॉर्गेज 1 million किया तो घर की वैल्यू हो सकता है 7 lakh रह जाए,
3: 7 lakh रह जाए
4: उसमें या थिंग्स. द अपॉर्चुनिटी विंडो इज गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन
3: डाउन. बिल्कुल सही.
4: मैं पिछले आपको याद होगा आमिर भाई करीबन 4-5-6 महीने से हम सारे चैनल्स पे, सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मेरे कम से कम 10 articles इसी टॉपिक के ऊपर आए कि जिन लोगों की मॉर्गेज की रिन्यूअल आ रही है 2026 और 2027 में, फिक्स इट नाउ, इट इज गोइंग टू लैंड इन टू बिग ट्रबल्स. देखिए अगर आप आज फिक्स पे बैठे हैं तो भी फिक्स करा के शायद आपको कुछ उसमें से पैसे निकल आए, आपका क्रेडिट पे हो जाए, और अगर आप वेरिएबल्स पे बैठे हैं तो उसको भी चेंज करके आप अभी कम पे जा सकते हैं, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज सर. टेक केयर ऑफ योर मॉर्गेज, इट्स योर फाइनेंशियल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन डेफर योर अदर हेल्थ एज वेल. सो जो मॉर्गेज का रिन्यूअल आने वाला है और आपके पास विंडो खत्म हो रही है, उसको अगर आप जितनी पास ले जाएंगे अपनी मॉर्गेज के रिन्यूअल के, आपके हाथ से उतना ही कम कुछ रह जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, ईदर लूज द होम और टेक वॉट एवर द बैंक इज ऑफरिंग यू. बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि बैंक ने बोला है कि आपकी रिन्यूअल अक्टूबर में है, वी आर नॉट रिन्यूइंग, टेक योर मॉर्गेज सब दैट.
3: बिल्कुल ठीक.
4: मॉर्गेज बहुत तरह से होती है. अगर आपने कुछ, आई डो गॉड नोज हाउ द प्रीवियस ब्रोकर डिड योर मॉर्गेज, तो आप अगर उसको अभी चेक कराएं, ये सिचुएशन आपके ऊपर आ जाए अकस्मात एकदम से, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वुड हैव बीन ईदर लीव द होम और एक्सेप्ट व्हाटएवर इट इज
3: राइट,
4: और चेंज करने का तो मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं ना, प्राइवेट में जा पाएंगे क्योंकि देयर इज नो इक्विटी. इफ यू कैन पुट $300,000 यस वी कैन डू इट, बट अगर 300,000 ही होते सबके पास तो ये नौबत ही नहीं आती. सो डू इट नाउ ब्रदर्स, टेक केयर ऑफ योर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कॉलिंग मी बट एवरीबडी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग. आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पीपल मेरे पास आ रहे हैं, कम से कम 10 से 15-20 लोगों को मैं एवरी वीक टेलिंग देम कि आपके घर में इक्विटी नहीं है साहब, कुछ नहीं हो सकता. और अगर आपके में है तो अभी फिक्स कर लें, क्योंकि 6 महीने बाद ये जवाब दोबारा आपको सुनने को मिल सकता है. डू इट नाउ, फिक्स योर मोर्गेज, इट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट परचेज. इफ यू डोंट टेक केयर फॉर इट नाउ, बाद में इट विल कम बैक बिग टाइम टू बाइट यू. कॉल मी बैक, मेरे पास 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स. आई कैन टेल यू इन 5 मिनट्स आप कहां खड़े हैं, का आपके साथ हो सकता है आने वाले 2-4-6 महीनों में या साल भर में. आई विल टेल यू एंड इफ देयर इज अ रेमेडी वी विल फिक्स इट नाउ. थैंक यू.
3: बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन. और एक बार आपने बात करके मशवरा जरूर लेना है. हो सकता है घर में इक्विटी मौजूद हो, कर्जों में घिरे हुए हैं, कैश पुअर हो गए हैं, पैसे का फुकदान चल रहा है, यू नेवर नो. कभी कभी ऐसा होता है कि बात ना करने की वजह से हम कोई बहुत बड़ा मौका गंवा देते हैं. आप ऐसा मत कीजिए, राजीव तलवार जी से बात कीजिए. हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा इंतजाम करवा के दें कि आपके मुश्किल हालात आसानी में बदल जाएं. ये नंबर मिला है, आप ध्यान से नंबर सुनिए, सेव कीजिए, बात कीजिए और इंतजाम कीजिए. आप कैश पुअर मत रहिए. हो सकता है घर में कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए, इक्विटी बन जाए, रीफाइनेंस हो जाए, कोई ऑप्शन, कोई तरीका निकले कि आपको कुछ पैसा मिले. यहां है नंबर 905-819-1001. नंबर दोबारा बता रहे हैं, सेव द नंबर, डायल द नंबर एंड गेट योर मोर्टगेज फिक्स्ड. 905-819-1001. राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए. थैंक यू वेरी मच.
4: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू लिसनर्स, टॉक टू यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू.

0: साहब, मोहब्बत को हिट करने के लिए, मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, इशार का मुजाहिरा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को हिट करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने ताल्लुकात को हिट करना चाहते हैं, उनको एक बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर बात ये नहीं है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, गुजरनी है, गुजर जाएगी, सब लोग गुजारते हैं, कुछ अच्छी गुजार जाते हैं, कुछ की ज़रा बड़ी परेशान कन और तकलीफ़ों वाली गुजरती है। असल कहानी ये है कि आप अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, आपकी लेगेसी क्या है। ये बहुत अहम बात है, जितना भी इस पर फोकस किया जाए, जितना भी इस पर तवज्जो की जाए, कम है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। ज़रा भर के लिए मेरे साथ मिलके सोचिए कि क्या बच्चों के लिए कर्ज छोड़ के जाना है, क्या उनके लिए लाइबिलिटीज छोड़ के जानी है, क्या उनके लिए भारी बरकम किस्म की मोगेज की रकम छोड़ के जानी है, या फिर उनके लिए सेफ्टी छोड़ के जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी छोड़ के जाना चाहते हैं, एक अच्छी रकम बैंक में छोड़ के जाना चाहते हैं जिसके ज़रिए वो कारोबार कर लें और अपने कदमों पर, अपने पैरों पर वो खुद खड़े हो जाएं, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएं। आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमने एक बहुत सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। इनका ये मानना और इनका ये कहना है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। हर किसी के लिए पॉलिसी, जैसे उसकी जिंदगी अलग है, इसी तरह उसके लिए पॉलिसी भी अलग बनेगी, अलग काम करेगी। आपकी सिचुएशन, आपकी सूरत हाल को देख के आपको बेस्ट एडवाइस करती हैं हरप्रीत कौर जी। वेलकम करते हैं मैडम आपको।
1: थैंक यू सो मच आमिर जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल माय लिसनर्स।
0: शुक्रिया बहुत बहुत हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, वो लोग जिन्हें इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी लेने में दिक्कत है, उन्हें नहीं मिल रही है, कोई ना कोई वजह बन जाती है, रिफ्यूज कर दिया जाता है उनको, तो उनके लिए कोई हल, कोई सोल्यूशन है आपके पास जिनकी पॉलिसी रिफ्यूज हो जाए?
1: जी, ऑल इन वन आंसर, जी हाँ, मेरे पास ऐसी कंपनीज है जिनकी पॉलिसीज किसी कारण करके, कारण क्या हो सकता है, सबसे बड़ा आजकल जो है हेल्थ इशू, राइट। हेल्थ इशू में अगर डायबिटीज है या आपको एनी काइंड ऑफ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो पॉलिसी आपको जल्दी नहीं मिलती है। तो मेरे पास एक स्पेशल कंपनी है जो सिर्फ हम कह सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई हेल्थ इशू आ गया तो उससे डील करती है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है कि ये प्रॉब्लम के लिए आप इतने के एलिजिबल हैं, इस प्रॉब्लम के लिए आप इतने के लिए एलिजिबल हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो हम करके और उनकी जो है पॉलिसी अप्रूव करवाते हैं। और उसमें आपका जो है मेडिकल अप टू वन एक्सटेंट जो है लिमिट के हिसाब से मेडिकल होना है नहीं होना, वो कवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पास जो पॉलिसी कंपनी है उसमें मेडिकल इशू किसी को भी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर आमिर जी डिफरेंट डिफरेंट जो प्लान्स हैं वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम उनको प्रोवाइड कराते हैं।
0: बिल्कुल सही। यहाँ हरप्रीत कौर जी का नंबर है, यह नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर पॉलिसी कहीं रिफ्यूज़ हो गई है, पॉलिसी मिलने में दिक्कत है, चाहे किसी भी तरह की हो, लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस है, डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह की कोई पॉलिसी है और उसमें आपको लगता है कि आपको किसी के मशवरे की, सलाह की ज़रूरत है, या पॉलिसी रिफ्यूज़ हो गई है, कोई हल तलाश करना है उसका, तो ये नंबर मिलाएंगे आप 6474661611। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 6473346611। 1-1। हरप्रीत जी, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या फायदे रहते हैं इनके, क्यों लेनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस?
1: जी आमिर जी, अभी मैं, आपने अच्छा सवाल किया और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया कि हम पीछे अपनी फैमिली के लिए क्या कोई कर्जा छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या कोई अमाउंट जो है उनके लिए बेनिफिट के लिए दे के जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का मैं आंसर देना चाहूंगी कि आप लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके पास है, आपके जाने के बाद वो अमाउंट आप जो है फैमिली कवर अप कर सकती है, फैमिली उसे यूज कर सकती है, सब कुछ। बट प्लस पॉइंट कीवर्ड पकड़िएगा आप मेरा, कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस जाने के बाद दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, ये डेफिनेशन थी। बट द नई डेफिनेशन जो है, आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट खुद यूज कर सकते हैं।
0: अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही कमाल।
1: लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट आप जीते जी खुद यूज कर सकते हैं, अपना पैसा खुद यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो नया जो प्रोडक्ट आया है, नई पॉलिसी आई है, दैट इज वेरी वेरी गुड। और सबसे अच्छी चीज आमिर जी कि आप दे, अगर मैं एग्जांपल बहुत मिनिमम से स्टार्ट करती हूँ, आपने 50,000 की अगर अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कराई है, परमानेंट आपको 100 साल तक कवर करेगी, और वो 50,000 का जो कैश वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी फर्स्ट ईयर से, आने वाले 10 सालों में अमर जी उसकी कैश वैल्यू इतनी हो जाएगी, 40-50 हजार जितने की पॉलिसी कराई है उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और उसका जो 50,000 की पॉलिसी का डेथ बेनिफिट है वो आपका अगले आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में, 20-30 सालों में वो 100,000 में चला जाता है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक चला जाता है। तो वो छोटा सा अमाउंट जो है, अगर आप आज उसको कवर करते हैं टिल दैट एज 100 को आपको कवर करेगी, और उसका जो डेथ बेनिफिट है वो 100,000 में, वो लाखों में चला जाता है।
0: बिल्कुल ठीक है। यहाँ नंबर है हरप्रीत कौर जी का, ये नंबर मिलाएंगे आप और एक बार मशवरा जरूर करें। मशवरे का फायदा ये होता है कि ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगियों का एक लंबा अरसा एक सेक्टर में गुजारा होता है, एक प्रोफेशन में गुजारा होता है, इसलिए जो ये मशवरा देते हैं वो टू द पॉइंट होता है, वक्त बच जाता है, रिसोर्सेज बच जाते हैं, पैसे बच जाते हैं, इंसान बहुत बड़ी किसी सरदर्द से बच जाता है। इसलिए मशवरा जरूर कीजिए, ये नंबर मिलाइए 6473346611। नंबर अगेन, इट्स 6473346611। जी,
1: और आमिर जी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अगर आपकी एज यंग है तो आप उसको देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी उस पॉलिसी को आप लीजिए, ताकि आपके आने वाले टाइम का जो है वो बेनिफिट मैक्सिमम आप ले सके, और जितनी जल्दी आप लेंगे उतना ही प्रीमियम जो है वो कम होगा इसका। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज कि बच्चों के लिए मुझे बहुत कॉल्स आती है कि बच्चों के लिए तो ये गोल्डन गिफ्ट है। आज बच्चा अगर बॉर्न हो रहा है, बच्चा 10 साल का है, 5 का है, 15 का है या 20 साल का है, जितनी भी एज है बच्चे की आपकी, तो अगर आज आप उस बच्चे की पॉलिसी आप 50,000 या 1,00,000 से शुरू करते हैं, तो आने वाले टाइम में वो पॉलिसी मिलियंस में पहुंच जाती है। उसकी कैश वैल्यू जब तक बच्चे ने ग्रेजुएशन करनी है उसमें आप यूज कर सकते हैं पैसा उठा के, बच्चे की आपने शादी करनी है, बच्चे ने घर लेना है, तो एज ए डाउन पेमेंट तक की उसमें कैश वैल्यू बन जाती है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे कम उम्र में हम लेते हैं, जितनी यंग एज में लेंगे, बच्चे की लेंगे, तो उसकी जो मंथली पेमेंट है, प्रीमियम है, वो भी बहुत कम होता है, $40-50। मींस कि $1 a day और $2 a day में आप अपने बच्चे का बेनिफिट जो है इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और बड़ों के लिए अगर आप लेते हैं 40 साल में, 50 और 60 साल में भी, एनी टाइम यू कैन बाय दिस पॉलिसी। चाहे आप छोटा अमाउंट लेके कवर कीजिए, चाहे बड़ा अमाउंट लेके कवर कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर बजट हम आपकी पॉलिसी को आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन करके देते हैं। अगर आपके पास और भी लोन्स हैं, आपके पास डेब्ट्स हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो साथ में हम टर्म पॉलिसी का जो राइडर है वो ऐड करके और आपको 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000 जितना आप कवर करना चाहते हैं कवर आपको करके देंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग, और साथ में इस जो गोल्डन प्रोडक्ट है, जो कैश वैल्यू है, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस का पैसा खुद यूज कर सकते हैं जीते जी। तो ये प्लस पॉइंट है इसका, तो आप उसको जितनी जल्दी हो सकते हैं आप ले सकते हैं। छोटा अमाउंट चाहिए ऐड कीजिए आप, बट आप लीजिए उस चीज को जो आपको लॉन्ग लाइफ आपको बेनिफिट दे। क्योंकि मेरे पास कॉल आती है कि हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस यूज करना चाहते हैं, जब मैं उनकी पॉलिसी देखती हूँ कि उन्होंने कहीं और से ली होती है, टर्म 10, टर्म 20, टर्म को आप यूज नहीं कर सकते एज अ लाइफ इंश्योरेंस में अपना बेनिफिट लेने के लिए।
0: बिल्कुल सही।
1: वो आप अपने पीछे वालों के लिए लेगेसी छोड़ के जाते हैं। बट दिस वन जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप जो है अपने लाइफ इंश्योरेंस की कैश वैल्यू बना के उसको खुद यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। यहाँ नंबर है हरप्रीत कौर जी का, ये नंबर मिलाएंगे 6473346611। इट्स 6473346611। बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी, आपसे फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू सो मच आमिर जी। थैंक यू।
2: क्या आप सुन रहे हैं?
0: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
5: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
6: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
7: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
6: क्या वो मदद करेंगे?
7: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
8: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
7: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
8: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
9: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
10: लवी डबी शो, आप हैं शिवानी और आमिर के साथ। आमिर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स जो अब इतना पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि जीटीए में रेडियो टोरंटो कनाडा इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो
0: पूरे कनाडा में
10: जो ये कोर्स ऑर्गेनाइज करता है, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट के तौर पर पढ़ने आए और आज वो प्रोफेशनल बन चुके हैं। और परसों से यानी फ्राइडे से नया बैच शुरू होने जा रहा है। 23 मई से 4 हफ्ते तक आपको सैटरडे और संडे सिर्फ सैटरडे और संडे के चार चार घंटे देने हैं, 1 बजे से 5 बजे तक, और आप इस 4 हफ्ते के बाद अपने आप को एक डिफरेंट ही प्लेटफॉर्म पर पाया नजर आएंगे और एक प्रोफेशनल आप बन चुके होंगे। A to Z जो भी आप सोच सकते हैं वो सब वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा और आपको प्रोफेशनल बना के ही उस ऑफिस से बाहर भेजा जाएगा।
0: मैं राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एक नया स्किल सीखना चाहते हैं, नया सेटअप सीखना चाहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब पर कैसे एक सेंसेशन क्रिएट करना है, कैसे कैंपेन करनी है, कैसे प्रमोशन करनी है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपने बिजनेस को खुद ही कैसे प्रमोट करना है। बिजनेस प्रमोट नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम पे कमाल की स्टोरीज बना के फॉलोइंग और सब्सक्रिप्शन बढ़ाना चाहते हैं और डिजिटल मीडिया से पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। रजिस्टर कराइए 416-303-3639, नंबर अगेन 416-303-3639।
10: जी आमिर, चाय पे वापस आते हैं। May 21st यानी आज का दिन ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल टी डे। अब बात आती है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां चाय पी जाती है बहुत पैशन के साथ, बड़े चॉइस के साथ, बड़े दिल से। दोस्तों, इंडिया जो है ये जाना जाता है एक चाय के तौर पर बहुत बड़ा और बहुत ही एक बड़ा, मतलब बहुत सारे जो पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादातर लोग इंडिया में चाय पीते हैं और ज़्यादातर एरिया में जो चाय पी जाती है वो स्पाइसेस के साथ, मिल्क के साथ और शुगर के साथ पी जाती है। जो स्टैंडर्ड चाय का जो तसव्वुर है वो एक मसाला है चाय का है, जिसमें जिंजर है, आपका दालचीनी भी डाली जाती है, स्पाइसेस और दूसरे डाले जाते हैं, इलायची डाली जाती है। लेकिन जो जापान है इसकी जो ब्राइट ग्रीन टी है ये इसने अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। ग्लोबल टी इंडस्ट्री में द ग्लोबल टी इंडस्ट्री ड्राइव्स $multi-billion इंटरनेशनल ट्रेड और इंडिया और चाइना लीडिंग द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ टी, बात करें तो सबसे पहला नाम जो आता है, सबसे बड़ा फर्स्ट नाम चाइना का आता है जिसमें सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस की जाती है। अनडिस्प्यूटेड लीडर है प्रोड्यूसिंग टी में चाइना, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल टी आउटपुट चाइना से आता है।
0: Half of the world. Wow.
10: Yeah, और ये जाना जाता है, it is believed that the beverage originated in China, holding significant cultural importance in the nation.
0: Very nice.
10: Second number India का आता है, भारत का आता है। It holds the second spot as the largest producer of tea, producing one of the finest quality teas. Very India nice. Is also one of the largest consumers of tea, meaning. इसका मतलब यह है कि दैट अ ह्यूज पोर्शन ऑफ टी प्रोड्यूस्ड डजंट मेक इट टू एक्सपोर्ट, यानी कि डोमेस्टिकली ही कंज्यूम हो जाता है,
0: कंज्यूम हो जाता है
10: बिकॉज उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
0: बिल्कुल सही।
10: टी इज ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एज चाय विद इंग्रेडिएंट्स लाइक मिल्क, जिंजर, क्लोव, सिनेमन एंड कार्डमन। कीनिया में भी बड़ी चाय पी जाती है।
0: बिल्कुल ठीक।
10: लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है, तीसरा नंबर आता है। इसके बाद श्रीलंका का आता है। सिलोन टी ग्लोबली फेमस है इसकी। वियतनाम का नाम भी आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसके अलावा टर्की का नाम भी आता है। टी इज द सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी फॉर टर्किश पीपल।
0: वेरी नाइस। ये तो है चाय पिलाने वाले यानी चाय बनाने वाले जहाँ पे टी प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है। अगले सेशन में, अगले सेगमेंट में शिवानी आपको बताएंगी कि चाय पिलाने वाले मुल्क ज्यादा कौन कौन से हैं, जो जहां आप जाएं तो पिलाई ज्यादा जाती है, बनाई कम जाती है। वो भी होना चाहिए, यू नो, कि जाते ही आपको मतलब चाय मिलना शुरू हो जाए,
10: कभी मिल गई कभी वर्चुअली पिला दी।
0: आपका और हमारा ये ताल्लुक जुड़ा रहेगा आज 11 बजे तक। स्टे ट्यून।
10: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है।

0: देखिए बेसिक चीजें हमेशा लाइफ में याद रखें। आदमी कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कहते हैं रोजी थे रोटी के लिए जा रहे हैं बाहर। ठीक है, बेसिक, ये बेसिक चीज है। बेसिक ये मतलब कि आप रोजी के लिए, मतलब रोजी आपको खाने का टाइम नहीं तो ऐसे पैसे को क्या करना है।
1: ठीक है, बहुत अच्छी
0: तो
1: बात
0: हम, हमारे पास पेशेंट आते, मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, अब पेशेंट जो भी हमारे पास वैसे भी आता है, हमारे सब कुछ रखा है, फीस रखी है, लेकिन हम पेशेंट से जरूर जो है पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक
1: बिल्कुल
0: है, ये
1: सही,
0: हमारा
1: वाह
0: स्टाइल है।
1: बड़ी
0: ठीक है,
1: बात,
0: देखो
1: बहुत
0: स्टाइल है
1: अच्छी
0: हमारा,
1: बात
0: पहले
1: है।
0: पूछेगा। मैं कह रही पैसे की परेशानी है, कोई बात नहीं, हमारा पहला पर्पस है पेशेंट को ठीक करना।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही,
0: ठीक है, पहले पे देखिए हम लोग को, हमको ऊपर वाले ऐसी मतलब कि प्रोफेशन दिया है, तो हमें यदि पैसे, मैंने कहा हम लोगों को कहते हैं, मैं कहा चलो ठीक है, हमारी रोजी रोजी रोटी है, हमारा बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ है, पैसा खाना नहीं है हमको जो है,
1: वाह वाह
0: बस
1: वाह,
0: हमारा काम चलता रहे, इतना
1: बहुत
0: बहुत है
1: अच्छी
0: हमारे
1: बात,
0: लिए।
1: बहुत कमाल की बात, बहुत कमाल की बात है। ये नंबर है, एक बार आप बात करेंगे कुलदीप जी से, बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, जिंदगी में राहत और सुकून आ जाएगा, एक बार बात जरूर करें। सीनियर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं, ये रहा इनका नंबर, 6478180055, नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, 6478080055। कुलदीप जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
0: ठीक है, थैंक यू सुनामा जी, थैंक यू।
2: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
3: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना। डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे, पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है, ओदा तां जवाब ही नहीं। सोहणे फेस वालीए, उच्ची हील वालीए, गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारीए। फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस, विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263। कांडा ऑप्टिकल, द नेम यू कैन ट्रस्ट।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
5: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
6: मम्मा why don't you go to work now?
7: बेटा तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
8: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
7: क्या वो मदद करेंगे?
8: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई।

0: हमारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
1: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
0: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
1: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001। License number 12374।
3: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
4: साहब, कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक मौका आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन ये नेचर है इंसान की कि सोचने में, समझने में, देखने में, परखने में इंसान वक्त को, टाइम को जाया कर देता है और फिर वो बहुत लंबे अरसे तक पछताता रहता है कि काश उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा लिया होता, वो काम कर लिया होता। मार्केट आप जानते हैं कि खरीदारों के लिए यानी बायर्स के लिए बेहतरीन और कमाल की है। इससे बेहतर मार्केट शायद पिछले 20, 25, 30 साल में भी नहीं थी। जितनी बेहतर मौजू और मुफीद मार्केट है इस वक्त खरीदने वालों के लिए, और वो लोग जो पहली बार घर लेना चाहते हैं उनके लिए तो इंसेंटिव भी है, बेहतरीन और शानदार लोकेशन भी है। आप उस जगह मार्केट्स का जिक्र करें, प्रेयर्स के लिए मुख्तलिफ जगहों का जिक्र करें, या फिर आप एमिनिटीज का जिक्र करें, आप रोड्स की बात करें, आप डिपॉजिट स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोजिंग की बात करें, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी वेरी इजी टू एक्सेस नाउ। 2028 में क्लोजिंग होगी, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बेहतरीन मौका है। 600,000 से ये शुरू हो रहा है, 2 से 3 बेडरूम के कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं ये मेविस रोड एंड रे लॉसन बुलेवर्ड पर, और उससे भी बड़ी बात ये यहीं ब्रैम्पटन में ये कमाल का प्रोजेक्ट 1300 से 1900 स्क्वायर फीट पर ये मुश्तमिल है। हमें ज्वाइन कर रही हैं निकी गांधी जी, वेलकम करते हैं मैडम आपको।
5: बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग मी ऑन एयर। सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आमिर जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया मौका है इस टाइम बायर्स के लिए, बहुत ही अच्छी मार्केट है। अगर बायर को मार्केट में स्टेप इन करना है, इट इज अ बायर्स मार्केट राइट नाउ। सो आज हम बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंग वुड्स टाउन, जो कि अमित जी आपने बताया कि प्राइजेस जो है वो सिर्फ 600 में स्टार्ट हो रही है। सो ब्रैम्पटन में टाउन हाउसेज आ रहे हैं 600 में। पहले ऐसे होता था कि ब्रैम्पटन में बात आती थी टाउन हाउसेज, अच्छा 8 लाख 9 लाख पर। हम लेकर आए फ्री होल्ड टाउन हाउसेज ब्रैम्पटन में 600,000 में विद द अर्ली 2028 क्लोजिंग, जो कि बायर को एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर और प्लानिंग की बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बिकॉज आपकी क्लोजिंग भी अभी टाइम है, यू हैव हमारी एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, मतलब आपको बहुत ही एक कम्फर्टेबल और स्मार्ट वे में अगर इन्वेस्ट करना है ना, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है गाइज। और सबसे एक्साइटिंग बात, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना वो है मेविस एंड रे लॉसन बुलेवर्ड के प्राइम लोकेशन पे, जो ब्रैम्पटन और मिसागा के बिल्कुल बॉर्डर पे है।
4: जी।
5: तो लाइक आप कह सकते हो आपका एक पैर ब्रैम्पटन में, एक पैर मिसिसागा में, सो वेरी क्लोज टू दी ब्रैम्पटन मिसिसागा बॉर्डर. और ये जो फ्री होल्ड टाउन हाउसेज है जो आज के मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड पर है, और रियल एस्टेट में हम लोग हमेशा कहते हैं ना लोकेशन लोकेशन लोकेशन, रोलिंगवुड टाउन्स जो है ना इस लाइन पे बहुत ही बढ़िया फिट बैठ रहा है. सारे मेजर हाईवेज लाइक 401, 407, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, आपकी डेली अम्यूनिटीज की जितनी भी चीजें बहुत ही नजदीक है. शेरडन कॉलेज जो है 3 मिनट की सिर्फ दूरी पर है. हार्टलैंड टाउन सेंटर इज राइट देयर. शॉपर्स वर्ल्ड इज जस्ट फ्यू मिनट्स अवे. कॉस्को, वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, सब कुछ इतना कन्वीनियंट है. तो अगर आप फैमिलीज लाइक आप फर्स्ट टाइम बायर हो, अगर आपने मूव होना है, अगर आप इन्वेस्टर, दोनों के लिए ना ये लोकेशन बहुत ही स्ट्रांग है. और एक खास बात अमित जी इसमें ये है कि ये जो पर्टिकुलर पॉकेट है ना उसमें 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ना कितने सालों से कोई नया प्रोजेक्ट आया ही नहीं है. सो जो लोग ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि हमें इसी एरिया में रहना है पर अपने नए घर में मूव होना है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. एंड हमारे पास 1300 से 1900 स्क्वायर फीटेज के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है. 3 से लेकर 5 तक के बेडरूम अवेलेबल है. अगर किसी को 3 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, 5 बेडरूम चाहिए, हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. यानी कि आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना चाहते हो, सब के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है.
4: जबरदस्त.
5: और इसकी जो टाउन हाउस में जो मतलब उनकी लेआउट वगैरह है वो उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन करी हुई है कि सब के लिए फिट बैठता है. और स्पेशली बायर्स के लिए बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं. तो ये रोलिंगवुड्स टाउन जो है वो लॉन्च हो रहे हैं June 1st को. पर अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए अभी हमें कॉल कर दीजिए 416-456-3815. आई रिपीट 416-456-3815. इसके साथ साथ अमित जी मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने प्री कंस्ट्रक्शन में जो भी अगर बाय करता है उनके लिए GST HST रिबेट के थ्रू वो लोग 130,000 तक का बेनिफिट पा सकते हैं.
4: बिल्कुल.
5: ऑन्टारियो में ये रूल स्टार्ट हुआ है 1st अप्रैल से और 31st अप्रैल तक अगर कोई भी बाय करता है वो 130,000 तक का बेनिफिट पा सकता है. गाइज इस वजह से प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई है. और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर के लिए भी है. सो प्री कंस्ट्रक्शन में अगर बाय करना चाहते हो, अगर आप ब्रैम्पटन मिसिसागा में रहना चाहते हो, और अगर आपने सिर्फ 600 में कुछ बाय करना है तो रोलिंगवुड इज द प्रोजेक्ट फॉर यू गाइज. मार्केट भी अब धीरे धीरे ओपन अप हो रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी स्टेबलाइज हो गए, लोगों का बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी वापस आ रहा है. जो लोग वेट कर रहे थे ना उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गाइज. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और साथ में मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ मेरे सभी रियल्टर्स भाइयों बहनों के लिए कि हम लोग होमलेस मिरेकल आई एम द लिस्टिंग एजेंट विद द बिल्डर. तो अगर आप लोगों को भी एक्सेस चाहिए फील फ्री टू कॉल मी. हमारा June 1st को ब्रोकर लॉन्च भी होने जा रहा है तो गिव मी कॉल, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगी. और सभी लिसनर्स को अगर प्राइसिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए गिव मी कॉल राइट अवे एट 416-456-3815. आई रिपीट इट्स 416-456-3815. रोलिंगवुड्स टाउन.
4: यहाँ नंबर है. एक बात ध्यान में रखिए कि ये टाइम है, ये मौका है, ये समय है. ये निकल गया तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, यही प्रोजेक्ट जो 600,000 की बात कर रहे हैं 800,000, 900,000 तक भी पहुंच सकते हैं. आज शुरू करेंगे ये मामला और जब तक क्लोजिंग करवाएंगे यानी 2028 तक, तब तक ऑलरेडी इसकी कीमत बढ़ चुकी होगी. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जब तक इसकी क्लोजिंग होगी तब तक आपको मुनाफा ऑलरेडी मिल चुका होगा. ये रहा नंबर 416-456-3815. नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 416-456-3815. 15। निकी गांधी जी से जरूर बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया निकी आपके टाइम के लिए।
5: बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: 416-303-3639। आमिर, आप जानते हैं कि किस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ स्माइल्स?
4: किस कंट्री को कहा जाता है? ऑफ कोर्स कनाडा को।
6: बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो आप जिस लोग लैंड ऑफ ट्रबल भी कहते हैं, लेकिन एक कंट्री है जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ स्माइल, और ये कंट्री है थाईलैंड।
4: ओह अच्छा।
6: थाईलैंड इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज अ लैंड ऑफ स्माइल्स।
4: अच्छा अच्छा।
6: ये निकनेम जो है ये रिफ्लेक्ट करता है द जेन्युइन वॉर्मथ एंड पोलाइटनेस ऑफ इट्स पीपल।
4: देखिए ना, आप किसी थाई शख्स से बात करें अगर, तो वो किसी भी शख्स से बात कर लें तो आपको मुस्कुराता हुआ ही लगेगा।
6: थाईलैंड इज
4: ऑनेस्टली स्पीकिंग,
6: थाईलैंड इज अ स्माइलिंग आइलैंड जिसको कहते हैं।
4: अच्छा स्माइलिंग।
6: अच्छा, स्माइल इन थाई कल्चर कन्वेज मोर देन जस्ट हैप्पीनेस। अक्सर ये एक रिस्पेक्ट सिग्निफाई करता है और ईज सोशल इंटरेक्शंस। कभी होता है ना कि हम किसी से सोशली मिलते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे मिलने के बाद हम काफी ऑकवर्ड सा महसूस करते हैं। कई बार हम एक बार मिलते हैं तो लगता है कि हम कब से मिल रहे हैं इस इंसान से, राइट? तो ये जो क्वालिटी है ये थाईलैंड के लोगों में है।
4: अच्छा बिल्कुल, बड़े मिलनसार लोग हैं
6: जी। द कल्चर कन्वेज मोर देन जस्ट हैप्पीनेस, जैसे मैंने बताया। दिस वेलकमिंग एटमॉस्फेयर ड्रॉज मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एनुअली। उनके बिजनेस सेंस बहुत ज्यादा देता है इसको।
4: जी बिल्कुल।
6: मेकिंग थाईलैंड टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन। और जब लोग पूछते हैं कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ स्माइल, तो आंसर थाईलैंड है। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है थाईलैंड, हम सभी जानते हैं। और इसके जो सिटीज़ हैं, जैसे आप वेलकमिंग बड़ा नेचर है इनका, चाहे आप फुकेट के बीचेस की बात कर लीजिए, ट्रेडिशनल टेंपल्स की बात कर लीजिए चियांग माई के, और स्माइल हर जगह वहाँ दिखाई देते हैं, एवरीवेयर। और लैंड ऑफ स्माइल एक स्ट्रांगली लिंक होता है थाईलैंड की टूरिज्म के साथ।
4: जी बिल्कुल।
6: थाई कल्चर के साथ थाई फूड बड़ा पॉपुलर होता है, इसकी जो ग्लोबल इमेज बनी हुई है, मिलियंस ऑफ ट्रेवलर्स हर साल आते हैं। एक फ्रेंडलीनेस वहाँ के लोकल लोगों की जो है ना, वो ट्रेवलर्स को टूरिस्ट को खींच के लेकर आती है। कभी होता है ना कि आपका जो नेचर होता है, आपकी जो मुस्कुराहट होती है, आपका जो बिहेवियर होता है, वो आपके काफी सारे ड्रॉबैक्स को छुपा देता है। और ऐसा नहीं है कि थाईलैंड जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी। ऐसी कंट्री है जो दुनिया में हेवन के बाद यही कंट्री है। काफ़ी सारी कमियां रही होंगी, लेकिन उसको थोड़ी बहुत जो रहती भी है, वहाँ के जो लोगों का बिहेवियर है वो उसको कॉम्पनसेट कर देता है।
4: शिवानी, वो शख्स जो मुश्किल से मुश्किल हालात में खुश रहना सीख लेता है, वो जिंदगी के राज को पा जाता है। कोई शख्स ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जिसकी जिंदगी में दुख ना हो, परेशानी ना हो, अजियत ना हो, या वो डाउन फील ना करे। डिपेंड ये करता है कि आप उन गमों को, उन परेशानियों को अपनी मुस्कुराहट के साथ शिकस्त कैसे देते हैं। तो बहादुर लोग वही होते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कितनी भी बड़ी सऊबत हो, कितना भी बड़ा मसला या मुसीबत हो, वो हवास बाख्ता नहीं होते। वो अपनी सेंसेस को नहीं खोते। वो हशाश बशाश रहते हैं, और कुछ तो उससे भी ज्यादा बहादुर होते हैं जो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट को सजाए रखते हैं। एक बात बहुत अहम है, जिस दिन आप अपने आप को इस बात का यकीन दिला देंगे कि जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इंसान की मर्जी से नहीं होता, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जिस दिन आप इस गलत फहमी और इस मुगालते में रहेंगे कि मैं कर सकता हूं या हम कर सकते हैं या हमारे करने से ही होता है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने मामलात उसके सपुर्द कर देते हैं ऑलमाइटी के, तो आपकी बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें, बहुत से काम बहुत आसान हो जाते हैं
6: जी।
4: और आप फिर बेनियाज हो जाते हैं। बेनियाजी ऊपर वाले की नेमतों में से, ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग है। अब बेनियाजी है क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया के मटेरियलिस्टिक मामलों से अलग थलग हो जाना, एस्केपिज्म इख्तियार कर लेना, पहलू तही हो जाना, उसे बेनियाजी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में केयरलेस भी कहा जा सकता है कि आप बाहर की दुनिया से इतना केयरलेस हो जाएं कि आप पे वो असरअंदाज ना हो सके। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन इट कम्स अप टू स्माइलिंग। स्माइलिंग तो तभी करेंगे जब आपका अंदर भी स्माइल कर रहा होगा, वरना वो स्माइल भी जाली जाली सी लगती है,
6: जाली सी लगे, दिल भी पिंक नहीं लगने से ब्लैक लगने लगेगा। और अगर हम थाईलैंड की बात करें तो आपने जैसा बिल्कुल सही कहा आमिर, ये जो आपने बताया है ना वो वहाँ पूरी तरीके से लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थाईलैंड में स्माइल इज नॉट ऑलवेज जस्ट अबाउट हैप्पीनेस, फॉर देम इट कैन एक्सप्रेस पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और एम्बेरसमेंट ऑल्सो। जब आप किसी से एम्बेरस होते हैं, वो जब आप मुस्कुराहट देते हैं ना, वो भी दिन भर इंसान वो मुस्कुराता रहता है देख के कि आप किसी ने आपको किसी ने एम्बेरस कर दिया या किसी ने आपको एम्बेरस कर दिया।
4: मेरे साथ एक मसला है शिवानी, अच्छा। जब मैं मुस्कुराता हूँ तो मेरे जो सामने लोग खड़े होते हैं वो शर्मा जाते हैं।
6: अच्छा। मतलब वही समझ लीजिए आप,
4: और शर्माने और एम्बैरेसमेंट में क्या फर्क होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अक्सर मतलब किसी से बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ।
6: शर्माने का हमेशा मतलब ये होता है कि आपने उस इंसान का वो कॉम्प्लीमेंट पसंद किया, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट आपके लिहाज से या तो इतना बड़ा था या कभी कभी इनअप्रोप्रिएट भी था।
4: कभी-कभी
6: तो आपने बस शर्मा के उसको एक्सेप्ट भी किया और शर्मा के बिना किसी लफ्जों के बता भी दिया कि हम इसको कुछ कहने के लायक नहीं रहे।
4: तो आप मुस्कुराइए, मुस्कुराने पे कोई पाबंदी नहीं है, मुस्कुराहट को एक सदका भी कहा गया है, यानी जब आप डोनेट करते हैं कि जैसे किसी चीज को, तो इसको सदका भी कहा गया है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट के तासुर को ठीक रखिए।
6: एक और चीज पूछूं आपसे?
4: जी जी जरूर।
6: थाईलैंड में जब डिसएग्रीमेंट कोई दिखाता है ना,
4: हाँ।
6: तो भी मुस्कुराते हैं वहाँ।
4: अरे अरे अरे,
6: तो ज्यादा नहीं हो गया?
4: अरे ये तो बहुत ज्यादा ही मुस्कुराहट हो गई।
6: डिसएग्रीमेंट भी ऐसे नहीं कहते कि तुम क्या लगते हो, जाओ यहाँ से।
4: हाँ, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं।
6: मतलब डिसएग्रीमेंट पे वो मुस्कुरा के चले जाते हैं बिना कुछ आंसर दिए।
4: क्या बात।
6: अब आप सारे दिन सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या कहा था।
4: देखिए मुझे लगता है कि मुस्कुराहट के वक्त इंसान को अपने चेहरे के तासुरात पर काबू रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
6: हर एक इंसान खूबसूरत लगता है मुस्कुराता हुआ।
4: ओ यस यस यस।
6: अगर नहीं भी खूबसूरत होगा, वो मुस्कुराएगा ना, तो बहुत,
4: तो वो खूबसूरत लगेगा। ब्यूटीफुल स्माइल जिसे कहते हैं, जैसे मोनालिसा है, वो उनकी वजह शोहरत, मशहूर होने की वजह ही मुस्कुराहट है, वरना मोनालिसा तो शायद बहुत से लोगों से कम खूबसूरत होगी। तो मोनालिसा स्माइल, इट्स अ फ्रेज नाउ कि शी स्माइल्स लाइक मोनालिसा, तो उनकी पेंटिंग्स भी हम लगाते हैं सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से, हालांकि आम से नकोश की खातून मोनालिसा। तो इसलिए मुस्कुराइए। हो सकता है कोई बहुत टेंस हो, बहुत परेशान हो, बहुत अजियत में हो, किसी का दिन अच्छा ना गुजरा हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उसका दिन बेहतर हो जाए, ये बहुत जरूरी है।
6: क्या बात है। 416-303-3639 is the number to call.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 4378296023। इट्स 4378296023। मास्टर धनिक महाराज।
3: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
4: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और आमिर, 23 मई से 23rd ऑफ मई से डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू होने जा रहा है और बहुत लिमिटेड एक या दो सीट्स बची हैं क्योंकि स्मॉल साइज क्लासरूम में ही पढ़ाया जाता है। और लेकिन एक महीने में आप एक ऐसा स्किल सेट के साथ प्रोफेशनल बन जाते हैं, होल लाइफ का आपके पास एक हुनर आ जाता है। एक स्मॉल अमाउंट कर आपको जिंदगी भर में किसी और की के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी और के ऊपर एक फाइनेंशियली या फिर इमोशनली या फिजिकली या फिर किसी भी तरीके से आप अपने मास्टर खुद होते हैं, अपना प्रमोशन खुद करते हैं। कैसे हमें ये कर पाते हैं हमारे लिसनर्स, कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या उसमें सिस्टम रहता है, क्या क्या मॉड्यूल्स कवर रहते हैं?
5: सबसे पहले तो शिवानी, ये सवाल पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि 23 मई ये सैटरडे का दिन बनता है, अभी चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। आप रजिस्टर करवाइए डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के इस कोर्स में। आपको बता दें शिवानी कि ये वाहिद कोर्स है
4: जी
5: पूरे कनाडा में जो हम करवा रहे हैं। हमारे अलावा ये कोर्स इस नौयत का, इस नेचर का, इस टाइप का कोई नहीं करवा रहा
4: जी,
5: है
4: जी।
5: 40 घंटे की ट्रेनिंग है, 40 घंटे की ट्रेनिंग ले लेंगे, अपनी मार्केटिंग खुद कर सकेंगे
4: जी,
5: अपनी सेल्स खुद कर सकेंगे, अपनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट खुद कर सकेंगे, कॉन्टेंट खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे, YouTube, Instagram, Facebook और इस तरह के जितने भी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करके खुद प्रमोट कर सकेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो YouTube पे चैनल बनाना आपको सिखाएंगे
4: जी,
5: उस पर कंटेंट कैसे डालना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, ये सब इस कोर्स का हिस्सा है। कॉन्टैक्ट कीजिए, इनरोल कराइए 416-303-3639। रजिस्टर कराने के लिए 416-303-3639
4: पर आप कॉल कर सकते हैं, 416-303-3639। आमिर, आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक महीने में सिर्फ 8 दिन हमारे जो लिसनर्स हैं जो एनरोल करेंगे उनको आना है 1 बजे से 6 बजे तक। बड़ा कन्वीनियंट टाइम है, जल्दी भी नहीं उठना, वीकेंड पे सब अपने आराम से उठते हैं, थोड़ी मसरूफियत दूसरी रहती है। और 6 बजे का फ्री भी हो जाएंगे टू इन्जॉय द इवनिंग विद योर फैमिली एंड विद योर लव्ड वंस। तो बड़ा कन्वीनियंटली ये रखा गया है टाइमिंग भी आपने 2 दिन का, सैटरडे एंड संडे। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन?
5: बहुत अच्छा सवाल है शिवानी, मैं आपको बता दूं इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है. प्री रेक्विजिट किसी ऐसे कोर्स को कहते हैं जो अगला कोर्स करने के लिए जरूरी हो. आप बैक होम से 10वीं जमात पास हैं, यानी आपने मैट्रिक किया है, आप प्लस टू हैं, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं. मुझे इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं शिवानी, मैनी पीपल आर इंक्वायरिंग अस, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे भी हमारी इसकी प्रमोशन चल रही है, हम रेडियो पे भी अक्सर इसकी बात करते हैं. डे इन एंड डे आउट पीपल आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग अबाउट द कोर्स. मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है. अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो हम आपको इस कोर्स पर एनरोल कर सकते हैं. और शिवानी इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर महीने भर का ये कोर्स करें उसके बाद हम आपको एक साल के कोर्स पर चढ़ा देंगे जिसमें आप फंडिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं.
4: वाह, ये फंडिंग क्या होती है और कैसे मिलती है?
5: गवर्नमेंट फंडिंग. एक साल का कोर्स इसके बाद आप करें अगर, तो आपको वो पैसा मिलेगा जो आपको लौटाना नहीं है. और वो पैसा कितना हो सकता है, 45,000-55,000 तक भी आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम. सो पहले आप ये कोर्स कीजिए, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, जो कि एक महीने का होगा, यानी 8 दिन आपको आना है, 1 से 6 बजे के बीच में, सैटरडे एंड संडे. उसके बाद एक ऑनलाइन कोर्स होगा, वो एक साल का होगा ऑनलाइन कोर्स, और उस पर आपको भारी भरकम किस्म की फंडिंग मिल सकती है. मान लीजिए साल का अगर 50,000 मिला तो वो तकरीबन कमोबेश महीने के $4,000 बनते हैं, विच इज अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है ये. आप कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए और रजिस्टर कराइए. 416-303-3639.
4: जी, और आमिर ये हम अपने जो हमारे इस वक्त क्लाइंट हैं, रियल्टर्स हैं, या फिर ब्रोकरेज के ओनर्स हैं, या फिर ऑफिस के कोई स्टाफ को अपने ये कोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी एक ग्रुप जो कोर्स है वो भी हम इसका हिस्सा बन सकते हैं. यानी कि अपने स्टाफ मेंबर्स को या फिर ब्रोकरेज में अपने रियल्टर्स जो टीम है उनको आप ये एज अ ग्रुप ये कोर्स करवा सकते हैं, जिससे कि सब लोग अपने हिसाब से. इस ब्रोकरेज के लिए भी बहुत अच्छा है कि सब लोग प्रोफिशिएंट हैं, एफिशिएंट हैं और प्रोफेशनल बन चुके हैं अपना अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी लिस्टिंग्स को प्रमोट करने के लिए, अपना वर्चुअल टूर को प्रमोट करने के लिए. तो इन सब के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 416-303-3639. इस सैटरडे से कॉल शुरू होने जा रहा है और जल्द से जल्द कॉल कीजिए और जो लास्ट कुछ सीट्स बची हैं उनमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं. 416-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
5: कभी किताबों में फूल रखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आजकल वो नजर से हरफे सलाम लिखना।
1: वाह वाह,
5: वो चांद चेहरे, वो बहकी बातें, सुलगते दिन थे महकती रातें, वो छोटे छोटे से कागजों पर मोहब्बतों का पयाम लिखना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके चुपके नजर मिलाना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुपके चुपके नजर मिलाना, वो आरजुओं के ख्वाब बुनना, वो किस्सा ना तमाम लिखना।
1: वाह,
5: मेरे नगर की हसी फिजाओं कहीं जो उनका निशान पाओ, तो पूछना कि ये कहाँ बसे हो, कहाँ है उनका पयाम लिखना।
1: पयाम लिखना,
5: गई रुतों में हसन हमारा, बस एक ही तो ये मशगला था, किसी के चेहरे को सुबह कहना, किसी की जुल्फों को शाम
1: कहना। और आपकी नजर एक गजल है परवीन शाकिर की कही हुई, ये खूबसूरत सी गजल। हर्फे ताजा नई खुशबू में लिखा जाता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता।
5: क्या बात है,
1: एक लम्हे की तवज्जो भी नहीं हासिल उसकी, और ये दिल है कि उसे हद से सिवा जाता है।
5: क्या बात है,
1: यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, यही खामोशी कई रंग में जाहिर होगी, और कुछ रोज के वो शोख खुला चाहता है।
5: वाह,
1: और एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना, एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना, गुल को मालूम है क्या दस्ते सबा चाहता है।
5: क्या बात है,
1: बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, हर्फ ताजा नई खुशबू में लिखा चाहता है।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trust listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
6: Lovey Dovey Song of the Day is brought to you by Ruhani College. आँखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: अपनों के साथ मन से मन के धागे बांधे रखिए और बस किसी के सामने आपका ना चले ये मोहब्बत हमेशा कायम रखिए। और मोहब्बत ज़िंदगी है, हर परेशानी का जो सलूशन है वो प्यार में समाया हुआ है, ये बात हमेशा याद रखिए। मौसम बाहर देखिए बड़ा खूबसूरत है, अपनों के साथ निकलिए बाहर, लम्हे खूबसूरत से लम्हों का लुत्फ़ उठाइए, अच्छी अच्छी सी मेमरीज़ बनाइए और लवी डवी एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी बिताइए। लवी डवी के शो के साथ बने रहिए और लेती हूँ मैं आपसे इजाजत अपने को होस्ट आमिर के साथ। कल होती है आपसे मुलाकात फ्राइडे के दिन 416-303-3639। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू विद अस, नमस्कार।
1: फूल खिलेंगे और उन फूलों में से खुशबू फूटेगी और खुशबू जब फूटती है तो चार सू बिखरने की जिद भी करती है और खुशबू की इस जिद के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये फूल खिले, फिजा फूलों की खुशबू से मुअत्तर हो जाए, तो इसके लिए जमीन को सैराब जरूर करना पड़ेगा। फिर वो जमीन चाहे मोहब्बत की हो, चाहत की हो, इकरार की हो, साथ की हो, रफाकत की हो, हमदर्दी की हो, दर्द महसूस करने की हो, किसी हम सफर की हो, किसी हम रकाब की हो, या फिर किसी बे इंतहा करीबी साथी की। अगर आप चाहते हैं कि ये फूल खिलें मोहब्बत के, तो फिर मोहब्बत की सरजमीन को अपने खून से सैराब करना होगा, इसे सींचना होगा और फिर ही फूलों की खुशबू का इंतजार करने का हक रख सकेंगे आप। अपना ध्यान रखिएगा। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू।

0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस. एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो. 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो. नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स. एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट. Asians is the best.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
3: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 फॉर मिडलैंड एंड सील्स एंड 416-757-1000 फॉर मिडलैंड एंड एल्समियर और विजिट mymechanicauto.ca।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
3: Your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार gets the care it deserves.

0: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं। और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 for Midland and Sills and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। एशियंस is the best.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां news, views, sports, entertainment की खबरें होंगी बिल्कुल unlimited. Entertainment तो बहुत है, लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल unlimited. News और views तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल unlimited.
3: यहां भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 p.m.

0: And the maximum temperatures are going to remain around 14, 15 today, minimum at 7. And sunset hoga 8:43 p.m. Nice, beautiful day. Or tomorrow, temperatures a bit cloudy, sunny, 15 and 10. Or weekend ko Saturday hogi kafi rain, 75% chance of rain, 12 maximum and minimum at 8. Agle hafte ke temperatures jo hai mid-20s mein dekhne ko milenge. Bahut hi pyara sa geet. जिससे हमने दिन की शुरुआत की है, बजरंगी भाईजान का गीत था, जिंदगी कुछ तो बता. कई बार जिंदगी में जिंदगी को यही पूछना पड़ता है, जिंदगी में जिंदगी को यही कई बार हम पूछते हैं कि तू ही कुछ तो बता. एंड खासकर जहाँ पे अनसर्टेन टाइम्स से हम सब गुजर रहे होते हैं, तो ये सवाल जो है आप अपनी ही जिंदगी से कई बार पूछ बैठते हैं. बट यू नो वॉट, दिस टाइम विल पास. एंड कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि वी से इट्स ईजियर सेड देन डन, जब मुश्किल घड़ी होती है और मुश्किल हालात होते हैं. लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, आज नहीं तो कल, अगले महीने, अगले 6 महीने बाद, साल बाद, बट बिलीव मी, ये वक्त गुजर जाएगा. एंड इसी को सोचते हुए, इसी विचार से हम अपने आप को आगे लेकर चल सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा. 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है. एंड आपकी जितनी सॉन्ग रिक्वेस्ट है, आई विल प्ले देम बिफोर 2 PM. 12:15 की हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है. सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय एशियंस, विच इज़ अ पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर इन स्कारब्रो, एज वेल एज डॉन वैली नॉर्थ हांडे. क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि 2 लोकेशन से सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन. आई एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week. Clear Optical by Varun Kanda. अच्छा, एक रिपोर्ट आई है कि फीफा के जो मैचेस टोरंटो एंड वैंकूवर में खेले जाएंगे, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट कैनेडियंस ओवर $1 billion. मेन स्ट्रीम में देर आर सर्टन रेडियो होस्ट जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं, उनमें से आज एक थे जो सुबह को बात कर रहे थे. ही इज नॉट बिग इन बिग फेवर ऑफ फीफा सॉकर, इसलिए वो लोग हैं जो यहाँ पर, जिनकी पैदाइश है जो नॉर्थ अमेरिका में, उनको ऐसा लगता है कि द ओनली गेम्स दैट द वर्ल्ड प्लेज इज बेसबॉल, आइस हॉकी, बास्केटबॉल और कुछ इसी तरह से बस गेम्स होती हैं. तो मैं उस मेन स्ट्रीम रेडियो शो होस्ट की बात सुन रहा था जहाँ पर वो कह रहे थे कि भाई फीफा को करवाने का फ़ायदा भी क्या है, पैन एम गेम्स भी कुछ साल पहले की थी, उससे हमने क्या हासिल किया. बट द पॉइंट इज, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी चीज है कि फीफा वर्ल्ड कप इज बीइंग प्लेड इन नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका के अलावा हम भी उस लिस्ट में शामिल हैं. सो उससे एक एक टिकट जो है एट द प्रेजेंट मोमेंट कपल ऑफ $1,000 की टिकटें बिक रही हैं. सो आई मीन पीपल आर गोइंग टू मेक मनी, रेस्टोरेंट्स आर गोइंग टू मेक मनी. एंड जहां पर हम कहते हैं कि भाई हम एक वर्ल्ड सिटी हैं, टोरंटो के बारे में हम ऐसा कहते हैं, तो यहां पर फीफा का होना बहुत बड़ी बात है. दुनिया में वैसे भी अगर व्यूअरशिप की बात की जाए, अदर देन द समर ओलंपिक्स, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है फीफा की ही है. उसके बाद शायद NFL का नंबर आता है, IPL का नंबर आता है, बट नोवे क्लोज टू फीफा. सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट, क्योंकि अब हमें इस बिड जो कि फॉर्म में जॉन टोरी के टाइम में ये बिड जो है हमने हासिल की थी, और अब जो है हमारी जो मेयर है टोरंटो की, कहीं कहीं ओलिविया चाओ जो है ये भी कहती हैं कि वो पूरी तरह से इस फीफा को लेकर एक्साइटेड हैं. कहीं पर वो फ्लिप हो जाती हैं कि या आई डोंट नो सॉर्ट ऑफ अ थिंग यू नो, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि फीफा इज कमिंग टू टोरंटो एंड वैंकूवर. ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, एंड वी शुड जस्ट इंजॉय दिस मोमेंट जहां पर फीफा होगा यहां पर. और हजारों हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इंस्पायर होंगे आफ्टर दे वॉच देयर फेवरेट प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड यू नो प्लेइंग. एक डिफरेंट फीलिंग ही होती है. वन पर्सन विद रीसेंट ट्रैवल टू ईस्ट अफ्रीका बींग टेस्टेड फॉर इबोला वायरस, एंड ओंटारियो में वो बंदा जो है दाखिल है और उसकी टेस्टिंग हो रहा है. मैन इंजर्ड है इन कलिजन इन्वॉल्विंग पुलिस व्हीकल ऑन वैनकर्क ड्राइव नियर सैंडलवुड पार्कवे इन ब्रैम्पटन. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 13।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.
5: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट यूनिट नंबर 23 स्कारब्रो नोन फॉर देयर साड़ीज लहंगा सलवार सूट्स ब्राइडल वेयर मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स एशियंस 416-438-6568 East or West, Asians is the best.
6: He's breaking through the midfield.
7: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
8: Good afternoon. Shuru karte hain South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headlines.
5: Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Branton TV and Appliances, Win Lifetime Trading, Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, Kavya Homeo Care, Don Valley North Hyundai, and Clear Optical by Varun Kanda. Shuru karte hain taza tareen headlines. New York ke LaGuardia Airport ke paas sinkhole ne runway ko shut kiya, causes massive flight delays. Ebola outbreak ke baad India aur African Union ne New Delhi summit ko postpone kiya. Donald Trump ka kehna hai ki Iran talks ab final stages mein hain, ya to deal hogi या फिर स्ट्राइक्स रिज्यूम होंगे. यूएस ने एक्स क्यूबा प्रेसिडेंट रॉल कैस्ट्रो को चार्ज किया विद मर्डर ओवर डाउनिंग ऑफ प्लेन्स. एंड मेटा सीईओ ने स्टाफ से कहा नॉट एक्सपेक्टिंग मोर कंपनी वाइड लेऑफ्स फॉर 2026. रिपोर्ट के अनुसार ईरान थ्रेट के बीच डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने लंबी ड्रामेटिक कॉल में लिया हिस्सा. ट्रंप के चीन दौरे पर भी दोनों में हुई बातचीत. न्यूयॉर्क सिटी में आइकॉनिक चार्जिंग बुल की स्टैचू के पास कार एक्सप्लोड हुई. फायर फाइटर्स को 90 मिनट्स लगे टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल. डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अपनी अप्रूवल रेटिंग को 99% बताया और कहा कि नेतन्याहू विल डू व्हाटएवर आई वांट. बार्ड फ्रॉम हज गाजा के लोग थर्ड ईद उल अदा बिना एनिमल सैक्रिफाइस के कंडक्ट करेंगे ड्यू टू इसराइली रिस्ट्रिक्शंस. एंड की यूएस डिमांड पर ईरान का स्टैंड है कि यूरेनियम मस्ट स्टे इन ईरान. लोकल समाचारों में कैनेडियन सिटीजन को चार्ज किया गया विद इलीगली वोटिंग इन मल्टीपल यूएस इलेक्शंस. ईस्ट अफ्रीका ट्रैवल करने के वाले ओंटारियो रेजिडेंट को इबोला वायरस के लिए टेस्ट किया गया. प्रोफेसर ने एग्जाम रिजल्ट्स को रिजेक्ट किया ड्यू टू एआई चीटिंग एलिगेशंस एट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी. एंड एमिली बेली डिसअपीयरेंस के मामले में हैमिल्टन पुलिस एग्जीक्यूट सर्च वारंट. ब्रैम्पटन स्टील कंपनीज ने मिलियंस पे किए आफ्टर यूएस सेज दे डिडंट पे प्रॉपर टैरिफ्स. भारतीय समाचारों में इंडिया ने तैयारी की फॉर रेकॉर्ड समर पावर डिमांड प्लान्स टू रन एट फुल कैपेसिटी. एयर इंडिया की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट ने लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक फेस किया और एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव के अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मिलोनी ने रोम में ट्री प्लांट किया. इट वॉज अ ब्लैक मलबरी प्लांट. त्विशा शर्मा के मिसिंग हस्बैंड समर सिंह के खिलाफ इंफॉर्मेशन देने के रिवॉर्ड को 30,000 रुपया किया गया। एलओसी के पास ड्रग्स और चाइनीज पिस्टल बरामद हुई, पाकिस्तान लिंक सस्पेक्टेड। हरियाणा में 20-year-old गैंग रेप सर्वाइवर की मौत हुई बाय सुसाइड ओवर ब्लैकमेल। कोलकाता के शख्स को अरेस्ट किया गया फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। एंड टैक्सी और ऑटो यूनियंस के 3-day स्ट्राइक का आगाज हुआ इन दिल्ली NCR। इंडिया और इटली ने टाइज को एलिवेट किया टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। NIA चार्जशीट में बताया गया किस तरह एक लश्कर आतंकी ने पहलगाम टेरर अटैक को पाकिस्तान से डायरेक्ट किया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडर्स ने कॉल किया फॉर रीथिंक ऑन अलायंस विद उमर अब्दुल्लास पार्टी। एंड बॉच्ड किडनी के 2 साल बाद महिला की मौत हुई, डॉक्टर्स टुक लेफ्ट किडनी इंस्टेड ऑफ द राइट वन। अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने फिर से स्ट्राइक किया, वॉन्टेड अल बदर कमांडर शॉट डेड इन POK। पाकिस्तान की खबरों में CDF मुनीर का कहना है कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी टिल लास्टिंग पीस। फील्ड मार्शल ने शहीदों की तारीफ भी की। पाकिस्तान टिकटॉक इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के किलर को डेथ पेनल्टी सुनाई गई। रिपोर्ट के अनुसार हज के बाद इस्लामाबाद होस्ट करेगा फ्रेश US ईरान टॉक्स। सऊदी अरब ने डिप्लोमेसी को बैक करते हुए पाकिस्तान के मीडिएशन रोल की तारीफ भी की। मोहसिन नकवी ने तेहरान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप से मीटिंग की। प्रेसिडेंट जरदारी के साथ हुई मीटिंग में आगा खान फिफ्थ reaffirms commitment to supporting development in Pakistan. Ye Prince Rahim ki first visit thi to Pakistan since being named the spiritual leader of the Ismaili community last year. Successful talks ke baad center ne KP ko assure kiya of restoring gas supply to CNG stations. Governor ke mutabik KP CNG stations to operate from 6 a.m. to 6 p.m. daily. पंजाब को ऑर्डर दिया गया टू रिमूव व्हीट एंड फ्लावर ट्रांसपोर्ट बैरियर्स। बांग्लादेश सीरीज स्वीप के बाद पाकिस्तान स्लिप टू द 8th प्लेस इन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स। और सेक्शन 144 इम्पोज हुआ अराउंड एयरपोर्ट्स PAF बेसिस इन पंजाब फॉर 30 days। थ्रोइंग एनिमल वेस्ट एंड यूज ऑफ लेजर लाइट्स नियर एयरपोर्ट्स हैव बीन बैंड। स्पोर्ट्स जगत से LSG के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के 93 रन्स को देखते हुए इंटरनेट सेज वी आर एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड। सुनील गावस्कर वॉचेस द वंडर किड क्लोजली। BCCI सिलेक्टर्स को ब्लास्ट किया गया फॉर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू पेसर मोहम्मद शामी। इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान सीरीज के लिए शामी को पिक नहीं किया गया। BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने क्लैरिफाई किया था कि मोहम्मद शामी नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन डिस्कशन फॉर द टेस्ट एंड ODI स्क्वाड्स। BCCI वरिड है अबाउट हार्दिक पांड्या फिटनेस नाउ। बॉलीवुड खबरों से बॉबी डियोल की फिल्म बंदर का जोरदार ट्रेलर रिलीज हुआ। धर्मेंद्र वॉज नॉट थ्रिल्ड विद बॉबी डियोल प्लेइंग द विलन इन एनिमल। धुरंधर द रिवेंज लैंड्स इन लीगल ट्रबल ओवर डिस्क्लोजर ऑफ डिफेंस डिटेल्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट और सेंसर से पूछा टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन रिगार्ड्स टू द फिल्म। राजकुमार हिरानी का बेटा वीर हिरानी करेगा डेब्यू फ्रॉम वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो विद अर्शद वारसी। और पैडी के ट्रेलर लॉन्च में रामचरण ने देवेंदु के स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ की। माधवन ने एक वेलनेस ब्रांड को सू किया फॉर यूजिंग हिज इंटरव्यू क्लिप विदाउट हिज परमिशन। और फिल्म किंग बिकम्स अ रीयूनियन बोनांजा। शाहरुख खान कई सालों बाद रानी मुखर्जी, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ से रीयूनाइट करेंगे। सैफ अली खान की फिल्म कर्तव्य टेक्स ऑन नेटफ्लिक्स नंबर 1 इन इंडिया। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे बहुत जल्द, उनसे भी बातचीत होगी। फ्री सेमिनार सैटरडे आफ्टरनून होता है 12:30 to 3:30। डोंट फॉरगेट टू रिजर्व योर सीट, प्लीज डोंट वॉक इन। 9052061008 विन लाइफ टाइम याद रखें, विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग। एंड ओके, गीत संगीत का कारवां भी चलेगा, आपकी रिक्वेस्ट जो आ रही है वो भी हम प्ले करेंगे। डॉन वैली नॉर्थ हांडे दे रहे हैं फीफा की टिकट्स। इट्स अ बैलेट दैट विल बी ड्रॉन इन द मंथ ऑफ जून यानी अगले महीने। ऑफर एंड होती है 31 मई को। एंड इफ यू बाय एनी हांडे फ्रॉम देम, 2 names फॉर 2 tickets विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। विंटर टायर्स बाय करें विद स्टोरेज, 1 name फॉर 1 ticket। एंड एनी एक्सटेंडेड वारंटी परचेज, अगेन 1 name फॉर 1 ticket विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। 7537 वुडबाइन एवन्यू मार्कम, स्टील्स वुडबाइन वाला मेजर इंटरसेक्शन, डॉन वैली नॉर्थ हांडे। एक कॉलर है उन्हें लेते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
9: हाय सनी जी, फरजाना बात कर रही हूँ।
5: हाँ जी फरजाना जी, प्लीज गो अहेड।
9: ओके, کہ میں نیوز سن رہی تھی جو آپ بتا رہے تھے ساری چیزیں, تو مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ والسا میں جو ہے وہ لوگ قربانی نہیں کریں گے. رائٹ, آف کورس ان کے حالات ایسے نہیں ہیں
5: جی,
9: تو اگر کچھ لوگ اس بارے میں سوچیں اور اپنی قربانی کے پیسے وہاں بھیج دیں تاکہ وہ لوگ کھا سکیں. رائٹ,
5: بالکل بالکل. اور مجھے لگتا ہے اس میں خبر میں یہ بھی ہے کہ اسرائیلی جو ہیں فورسز انہیں پرمیشن نہیں دے رہے قربانی کرنے کے لیے. سو یس,
10: اوکے
5: ہاں جی,
10: تو اٹ مینز کہ اگر اگر بھیجیں گے بھی اگر ہم تو پھر نہیں کرنے دیں گے. رائٹ,
5: ویل کرنے تو دیں گے نہیں, بیکاز دیز پیپل آر بارڈ فرام حج, حج نہیں جا سکتے. اور یہ تیسرا عید الاضحیٰ ہے جو کہ بنا اینیمل سیکریفائز کے غزہ میں دیکھا جائے گا, obviously due to Israeli restrictions. So
10: چلے حج پہ تو نہیں جا سکتے, ظاہر ان کے حالات نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو کھانے کے لیے تو کچھ ملے. اینی ویز مجھے نہیں پتا کیا سچویشن ہے وہاں پہ, تو لیکن دکھ کی بات ہے.
5: بالکل بالکل
10: جی, میری جو ہے سسٹر اور ان کے بچے وہاں رہتے ہیں قطر میں نا
5: جی,
10: تو وہ مجھے کہہ رہی تھی جو میری نیس ہے کہ مجھے پہلی دفعہ فیل ہوا کہ وہ لوگ کیسا فیل کرتے ہوں گے, کیونکہ ان کا گھر امریکن بیس سے کافی کلوز تھا.
5: بالکل,
10: تو جب یہ حالات خراب تھے تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک بلاسٹ ہوتا تھا اور وہ لوگ ڈرتے تھے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو اس نے کہا مجھے پہلی دفعہ فیل ہوا کہ وہ کیسا فیل کرتے ہوں گے غزہ والے.
5: بالکل صحیح بات ہے, مجھے لگتا ہم صرف یہاں پہ میں نیوز دیتا ہوں, ہمارے لسنرز اپنے کامنٹس رکھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دو بجے شو ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے اٹس آلموسٹ لائک رات گئی بات گئی, اینڈ وی جسٹ فگیٹ اباؤٹ اٹ ویری انفارچونیٹلی کہ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی. جو گراؤنڈ لیول پہ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. اور ناٹ اونلی سچویشن نارمل کب ہوگی, بٹ دا پوائنٹ از نارمل ہونے کے بعد ان کی زندگی نارمل کب ہوگی, یہ تو صرف اوپر والا ہی جانتا ہے.
10: وہ نہیں ہوگی, آئی ڈونٹ تھنک وہ ہوگی. اگر آپ سوچیں تو وہ کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا غزہ میں, میرے خیال سے سالوں, بہت سال ہو گئے ہوں گے.
5: بالکل,
10: مجھے تو یاد بھی نہیں کتنے سال. ابھی جیسے آپ نے ایک نیوز سنائی وہ میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی انسٹرکٹرز کے گروپ میں, جو وین کرک میں کسی کی ڈیتھ ہوئی, وہ بھی اب ہم نے ایک ٹیمپرری سنی ہے نا کہ ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن اس کے بعد پھر دوسرے پل ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس کے گھر میں کیا بیت رہی ہوگی.
5: Absolutely.
10: پوری فیملی کتنی سیڈ ہوگی. تو کیوں, کیونکہ نہیں کیئر کرتے. ابھی یقین کریں میں لیسن کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں میں کرتی ہوں. ابھی میں دوسرے تیسرے لیسن میں جا رہی ہوں
5: جی.
10: میں ٹرن کر رہی تھی اورنڈا سے ڈکسی پہ
5: جی,
10: اور لائٹ ایمبر ہو چکی تھی, سامنے سے دو گاڑیاں آئی ہیں, اتنی تیز آئی ہیں کہ میں نے ہارڈلی بریک مارا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ نہیں رکے گا.
5: بالکل,
10: کیونکہ اس کو ریڈ لائٹ کا ویٹ نہیں کرنا. اب فرض کریں اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہوتا تو اس نے تو پینک ہونا تھا, میرے پاس ٹھیک ہے ایکسٹرا بریک ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں کرتے ہیں, پھر مجھے نہیں سمجھ آتی سارے لوگوں.
5: مجھے لگتا ہے ایک فرزانہ جی, انفارچونیٹلی جو میں انڈیا بھی جا کے آیا, اور میں صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق وہاں سے ہے, میں چنڈی گڑھ میں تھا, دلی میں تھا, پنجاب آل اوور ٹریول کیا, اتر پردیش میں ٹریول کیا, اور میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائٹ میں ہی دو یو نو لوگ نکل گئے گاڑی لے کے, آئی تھنک رکنے والا مطلب وہاں پر چکر ہے ہی نہیں. وہاں پر یہ ہے کہ بھائی نکل لو, نہیں تو پھر تین منٹ لائٹ پہ رکنا پڑے گا. آئی تھنک یہ جو ایک رویہ ہے دس از جسٹ مطلب ان کے سسٹم کے اندر وہ چیز گھسی ہوئی ہے, اینڈ اس میں ناٹ اونلی وہ خود لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے, باقیوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالیں گے. تو
10: بالکل صحیح تجزیہ کیا آپ نے, کیونکہ میرا جواب یہی ہوتا ہے ناٹ اونلی انڈین پیپل, پاکستانی پیپل, ہماری کمیونٹی, جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ تھوڑے سے لیسن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ کیسے لیتے ہیں, کس سے لیتے ہیں. تو اچھے ہیں ظاہر, سارے انسٹرکٹر محنت کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ اگر بیک ہوم سے آئے ہیں, اگر بیک ہوم سے نہیں بھی آئے تو ان کا بچپن گزرا ہے نا یہ سب دیکھتے ہوئے.
5: Exactly. And they are, it's very normal for them to just go through that.
10: Everyone. Yeah. ہر کمیونٹی کا یہی حال ہے. ہم صرف اپنی کمیونٹی کو نہیں بلیم کریں گے, سب کا یہی حال ہے. اور ناٹ اونلی برامپٹن, تو بس بدنام ہے. رائٹ
5: جی, بالکل بدنام ہے فار آل دا ریزنز دیٹ دے ہیو کریٹڈ دیمسیلوز. اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کے بارے میں ہمیں کھل کے بات کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی اور کمیونٹی ہمارے کمیونٹی کے بارے میں جب بات کرتی ہے تو پھر ہمیں تکلیف بہت ہوتی ہے. تو اپنے گریبان میں ہم خود جھانک لیں اور ایوری ڈے جھانکیں, ایوری مومنٹ جھانکیں. آئی تھنک اٹس بیٹر.
10: अभी कल ही हुआ है, सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ
5: जी।
10: मैंने पहले भी इंडिकेट किया था आपको ये बहुत पहले कि 2 साल पहले ना कोई गैंग था पीछे हमारे क्रीक में, वो लोग हम मेरे घर का एड्रेस यूज करते थे फेक फोन बेचने के लिए। तो कल मैं जब वापस आई हूँ तो पूरा हमारा घर का एरिया ब्लॉक था, 4-5 पुलिस वाले, एम्बुलेंस, एक लड़का बेचारा फिलिपिनी बच्चा था कोई, उसने मेरे ख्याल से उसको मार्केट प्लेस से मतलब कॉन्टेक्ट किया उस लड़के को और वो पीछे आया है, उसने उससे फोन लिया तो उसको फौरन एहसास हो गया कि नहीं ये फोन फेक है। ठीक है, उसने कहा मेरे पैसे वापस करो, तो उसने तो कोई चीज निकाली है और उसके पाँव पे उसको जख्मी कर दिया। तो पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो रहा है दुनिया में इस जगह।
5: जी बिल्कुल, थैंक यू फरजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ब्रिंगिंग ऑल दीज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ब्रिंगिंग ऑल दीज थिंग्स अप, बिकॉज जब तक हमारे ऑडियंस, जो हमारे लिसनर्स ऐसी चीज़ों को खुलकर डिस्कस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इट्स जस्ट स्वेप्ट अंडर द कार्पेट। अगले कॉलर को लेते हैं, आप ऑनर हैं, प्लीज गो अहेड।
11: हेलो,
5: हेलो जी, आप ऑनर हैं।
11: हाँ जी भाई साहब, ये जो आपने फीफा के बारे में जो बताया उसके बारे में बात करी थी
5: जी,
11: कि जो टोरंटो ने 1 बिलियन यूज किया है वो कहाँ से कैसे लाते हैं?
5: इट इज नॉट ओनली टोरंटो ने, मैं क्लैरिफाई यहाँ पे करना चाहूंगा, हम लोग कई बार जब न्यूज को पढ़ते हैं तो हम उसको जस्ट एज इज अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इट इज नॉट ओनली टोरंटो, इट्स टोरंटो, सुन लीजिए मेरी बात, इट्स नॉट ओनली टोरंटो, इट्स टोरंटो एंड वैंकूवर, और तीनों गवर्नमेंट्स जो हैं, मतलब म्यूनिसिपल, प्रोविंशियल एंड फेडरल, ऑल थ्री गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टोरंटो है इसमें इन्वॉल्व्ड है, इट विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस टू द सिटीज एज वेल।
11: या लेकिन क्या होगा नेक्स्ट ईयर, देखना ये प्रॉपर्टी टैक्स में 10% 12% का इंक्रीज कर दे, क्यों बोले वी लॉस्ट द मनी,
5: वो फीफा ना भी करे तो भी इन्होंने इंक्रीज कर ही देना है। You know what I mean?
11: Last time ऐसा ही हुआ था, पैरालंग गेम में, उसमें भी पैर से लॉस किए थे।
5: And I think that is just an excuse to say Pan Am Games hai ya FIFA hai. The point they want to go up. There is no reason. Pichle itne time se jo jab se Olivia Chow bhi aayi hai, the property tax has gone up. To reasoning to yehi hai ki bhai khazane khali hai, paisa public degi. So
11: problem jab paise dete lekin fir aap GTA mein ghumo, koi bhi street ya aisi nahi milegi aapko jiske road sahi honge. All over in Toronto, the streets are bad. They're not fixing anything, right?
5: I think
11: I don't know where the money is going.
5: No, I completely agree with you, and I think यहाँ पे councillors को भी, जिनको हम वोट देकर ऑफिस में भेजते हैं और आने वाले elections में वो आपके दरवाजे पे फिर से आ जाएंगे कि हेलो जी हम आप ही के हैं, हमें वोट दीजिए, तो इन लोगों को मुझे लगता अब वक्त है कि we should be asking questions and nothing wrong with that. खासकर जो नया बनना चाहता है उसे भी पूछे, जो existing है उन्हें भी। बहुत बहुत शुक्रिया, अगले कॉलर को लेते हैं। हफीज भाई आप ऑनर हैं, प्लीज गो अहेड।
12: सनी भाई गुड आफ्टरनून, कैसे हैं?
5: जी गुड आफ्टरनून ब्रदर, प्लीज गो अहेड।
12: जी सनी भाई, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ
5: जी
12: कि किसी दिन आप इसके ऊपर भी जो ना किसी किसी पॉलिटिशियन को बुला के बात करें सनी भाई, ये वाकई ट्रैफिक और रोड, यकीन माने इतनी ट्रैफिक, बाद वक्त लेफ्ट टर्न के लिए 15-15, 20-20 मिनट ठहरना पड़ता है। जब उनको पता है कि भाई पॉपुलेशन ये है, ट्रैफिक ऐसी हो रही है, तो ये हर सिग्नल को जो है ना लेफ्ट टर्न का सिग्नल डालते क्यों नहीं है?
5: जी जी,
12: ताकि काफी ट्रैफिक में जो है ना फर्क हो जाए। और गाड़ियां देखें आप, ब्रांड न्यू गाड़ी 4-6 महीने में गाड़ी में से सब जगह से आवाजें आ रही है।
5: बिल्कुल सही बात है,
12: रोडें इतनी तबाहकुन रोडें हैं कि बस कुछ, एक तो चलो गाड़ी फिर भी फिक्स करा ले, बंदे की कमर चले गई तो कैसे फिक्स कराएंगे?
5: जी जी, देखिए हफीज भाई, मेरी तो सिचुएशन पॉलिटिशियंस के साथ कुछ इस तरह से है, और मैं खुल के ये कहता हूं कि कुछ पॉलिटिशियंस मेरे शो पे आते ही नहीं है, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे शो का नाम और मेरा नाम सुन के शायद अवॉइड ही करते होंगे, क्योंकि
12: सामना नहीं कर सकते ना सर भाई।
5: हाँ मतलब आई हैव स्टॉप्ड एंटरटेनिंग द पीपल जो कि चुनिंदा हैं, जिन्हें हमने चुन के ऑफिस में यू नो भेजा है, एंड अगर वो लोग मेरे दरवाजे, घर के दरवाजे को आके नॉक करते हैं वोट के टाइम में, तो आई डोंट नो व्हाई, जस्ट लाइक अ रेगुलर कॉलर, व्हाई डोंट द पॉलिटिशियंस जस्ट कॉल? पॉलिटिशियंस भी तो रेडियो शो सुनते हैं, उनके लोग भी सुनते हैं और उनको अपडेट करते हैं कि भैया क्या हो रहा है, क्या ऐसे यहाँ पे ये बोला गया वहाँ पे, तो जस्ट आप भी आम जनता की तरह आइए, ऑन एयर आइए और अपने कमेंट्स दीजिए. इफ़ यू बिकम अ काउंसलर, रीजनल काउंसलर, एमपीपी, एमपी, तो आपको स्पेशल इनवाइट्स क्यों चाहिए शो पे आने के लिए? एंड देन फिर आप तोल मोल ये करते हैं, कई पॉलिटिशियंस ये तोल मोल भी करते हैं कि भाई किस शो में जाने का मुझे कितना फ़ायदा होगा या किस शो में किस तरह से ऑडियंस होगी. So I think, you know, I'm literally done with inviting, you know, people that jo tol mol karte hain. So I'm done with that. So
12: sach baat to ye hai Sunny bhai ki aapka samna karne ki himmat nahi hai inko.
5: Ji
12: inko aap sach jo hai na muh pe khari khari batate hain na ye.
5: Bilkul.
12: To ye inko pasand nahi, hazam nahi hota inko.
5: Bilkul. Ab jisko aana hai, main kehta hu ki jaise Hafiz bhai ne call kiya hai, jaise aur Farzana ji ne call kiya aur hamare itne hi hundreds and hundreds of listeners bindaas कॉल करते हैं, ये शब्द है मुंबई का, बिना सोचे कॉल करते हैं, जो उनके दिमाग में ख्याल आता है दे जस्ट कॉल एंड दे पुट इट ऑन एयर. उसी तरीके से पॉलिटिशियंस को भी करना चाहिए. मुझे याद है काफी साल पहले मुझे मैंने फेसबुक के जरिए एक पॉलिटिशियन को अप्रोच किया था एंड वो ही वॉज रेडी टू कम ऑन एयर, पर कहीं ना कहीं अचानक उसको ऐसा लगा कि भाई ये बंदा मुझे फेसबुक के जरिए क्यों कॉल कर रहा है, भाई आई नो अदर वे टू कॉन्टैक्ट द पर्सन एंड दिस इज थ्रू हाउ आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड देन ही सेड कि भाई फॉर्मली आपको मुझे ईमेल लिखनी चाहिए, फॉर्मली मुझे ये करना चाहिए. दैट्स हाउ इट इज, दे कैन डू यू नो, जिस शो पर वो जाना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम टू गो एंड से व्हाटएवर दे फील लाइक. आप ऑनर हैं, प्लीज गो अहेड.
13: कैसे हैं आप? ठीक है
5: जी, फर्स्ट क्लास. आप सुनाइए,
13: टॉपिक क्या चला रहे हैं आज आप?
5: जी कोई टॉपिक नहीं चल रहा है, आपने जो कमेंट करने करें प्लीज.
13: बात ये है कि जो सिलेक्शन का इस वक्त जो प्रोसीजर है ना पूरी दुनिया में
5: जी,
13: वो है ही गलत. ठीक है, एक तो ये है कि ये जो भी जिनको आप पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, ये पॉलिटिशियन नहीं है. पॉलिटिशियन वो लोग होते थे किसी वक्त, अभी नहीं है, जो आगे का सोच के अपने लोगों के लिए हल ढूंढते थे, सोल्यूशन ढूंढते थे, आसानियां ढूंढते थे. ये जो पॉलिटिशियन इनको आप कह रहे हैं ये वो है, वो कोई पार्टी के लीडर की चमचागिरी में है.
5: नहीं चलिए, मैं सबको एक
13: एक खत्म कर लूं,
5: मैं एक ब्रश से सबको पेंट नहीं करना चाहता. देयर कुड बी वेरी, एक मिनट सुनिए, देयर कुड बी वेरी हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियंस, बट आई डोंट हैव स्पेशल इनवाइट्स फॉर एनी ऑफ देम.
13: एक सेकंड, ना इनवाइट करे
5: जी.
13: आप जो हार्ड वर्किंग है ना, उनकी बहुत बड़ी अप्रिसिएशन यही होगी कि आप उनका नाम अनाउंस करेंगे, बड़े हार्ड वर्किंग है. वो नाम करें ना, ब्रश पेंट ना करें
5: जी. मैंने एक रीजनल काउंसलर का नाम एक बार लिया था क्योंकि उन्होंने, आई वॉज वॉकिंग और मैंने अच्छा खासा एक सिंक होल टाइप का देखा एंड आई कॉल्ड हिम, तीन दिन में वो ठीक हो गया. सो आई डिड मेंशन ऑन एयर कि भाई बंदे ने काम अच्छा किया.
13: हाँ, यानी ये है कि जो इसका जो काम है वो करे, लेकिन पब्लिक जो है, अभी मैं जाके अपने कम्युनिटी के आदमी को वोट दूंगा, मैं क्यों दूं? क्योंकि वो मुसलमान है या वो हिंदू है या
5: नहीं, वो तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल.
13: वो बातें यही हो जाती है ना शुरू, भाई साहब बात यही है. अभी वो अमेरिका में बंदा इलेक्शन में जीता है, मुस्लिम से इतना वो कर दिया कि पता नहीं क्या तमाशा हो गया. वो भाई काम देखो. और ये मैं एक कोटेशन मुस्लिम्स के ही बता देता हूँ, हजरत अली का ये कॉल है कि ये देखो कि क्या कर रहा है, ये नहीं देखो कि कौन कर रहा है.
5: ठीक है जी, बिल्कुल,
13: ये कोटेशन है.
5: थैंक यू.
13: मुस्लिम्स का भी ऐसा है और सब कम्युनिटी का यही हाल है. श्रीलंकन श्रीलंकन को वोट देता है, पंजाबी भाई पंजाबियों को देता है. और ब्रैम्पटन का जो हाल है, बदनाम बदनाम नहीं है भाई, जो काम करते हैं ये भी जो कह रहे थे कि वो बदनाम हो गए, वो भाई हरकत ऐसी करोगे तो बदनाम ही होंगे. प्राइज वहां ला के कोई रहने को नहीं चाहता है. ब्रैम्पटन जो बेचारे फंसे हुए फंसे हुए, आज उनकी प्रॉपर्टी की कीमत सही मिले वो भी भाग भुग जाएंगे वहां से.
5: बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए, फ्रस्ट्रेशन इज देयर और आई थिंक जब इस तरह के वक्त से गुजर रहे होते तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज्यादा भी होती है और फ्रस्ट्रेशन इज फॉर ऑल द राइट रीजंस. जो मुश्किलें हम सब देख रहे हैं उसकी वजह से ही है और ब्रैम्पटन की तो भाई हाथ जोड़ दिए. ब्रैम्पटन, मैं खुद ब्रैम्पटोनियन हूं और ब्रैम्पटन में रहता हूं. लव्ड द सिटी, स्टिल लव द सिटी. मुझे लगता है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन उस सिटी की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, बट लोग एक सिटी को बेहतरीन सिटी बनाते हैं और जो ड्राइवर्स हैं ब्रैम्पटन के, ओह माय गॉड, डोंट नो व्हाट टू से. चलिए हाल क्या है दिलों का ना पूछो, ये किशोर कुमार साहब कह रहे हैं, हाल बस बेहाल है, एंजॉय करें, आई विल बी बैक.

0: आज तो मैं।
1: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हमारे साथ रियल्टर जितेंद्र गंदम जी हैं। नंबर नोट करें 4162652222, और एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी मस्कोका में लेकर जितेंद्र जी पहुंच चुके हैं। एंड ये प्रॉपर्टी इज 3 बेडरूम 2.5 बाथ वाटर फ्रंट कॉटेज है, एंड बहुत ही ज़बरदस्त प्राइवेट 2 एकर प्रॉपर्टी है नियर हंसविल एंड एल्गोनक्विन पार्क। तो इसकी जानकारी लेकर जितेंद्र जी पहुंचे हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है।
2: हैलो, सत श्री जोशी पा जी, गुड आफ्टरनून। तो अज आप अपने स्रोतों लिए मस्कोका के कॉटेज लैके आए हैं। यह जी कॉटेज है 2 एकड़ के लॉट के बनी हुई है। 2 साल तो घट समा हो इस कॉटेज में बने हुए न। 3 बैडरूम ने, 3 वाशरूम ने, प्लस थोड़े को अनफिनिश बेसमेंट है जिद एक्सट्रा बैडरूम बना सकते हो। फुली अपग्रेडेड प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी एयरबीएनबी से चल रही है पिछले 1.5 साल तो। लास्ट ईयर 2025 के लगभग $1,00,000 के लग सके एयरबीएनबी का रेवन्यू से, प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं। जे तुम इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हो इदा की कॉटेज, तो सानू एक बार गलबात कर लियो। साडा नंबर 416-265-2222। रियल स्टेट की मार्केट के कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो या सैल करना चाहते हो, कॉल 416-265-2222। थैंक यू वेरी मच
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। 416-265-2222
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
4: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल, ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086. Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.
5: 10 meter. बस इन्ना को याद रखो, तुहानूं उपरों लंघदियां बिजली दियां पावर लाइनस तो घट्टो घट 3 मीटर दूर रहना चाहिदा है। ओंटारियो विच बिजली तो होण वाली मौतां दा इक प्रमुख कारण पावर लाइनस हन, अते बिना छुए भी तुहाडी मौत दा कारण बन सकदियां हन। जेकर तुसीं बाहर काम कर रहे हो तां उपरों लंघदियां पावर लाइनस वल ध्यान दिओ। अपने आप नूं अते अपने उपकरणां नूं इन्ना तों घट्टो घट 3 मीटर दूर रखो। इलैक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों सुनेहा esasafe.com/stop-look-live ते होर जाणो।
1: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि 2 location से आपको serve करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
6: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की Ultimate Saving Sale on May 24th. Inventory पर huge bonus offers. Deals इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. Sunday, May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markham. Doing business your way. Member of Wayne's Auto Group.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट पूजा हट.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।

0: earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. और याद रखें दोस्तों, द फ्री सेमिनार आपके लिए स्पेसिफिकली ये डिजाइन किया गया है संडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. आपने कॉल करके अपनी सीट जरूर रिजर्व करवा लेनी है. प्लीज डोंट वॉक इन. 905-206-1008. इस सेगमेंट को ध्यान से सुने. बाकी मोहम्मद साहब बताएंगे कि विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है. मोहम्मद साहब आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून जी. जी सनी जी, पिछले 18 साल से एक ही काम है हमारा कि अपनी कम्युनिटी को लिफ्ट अप करें एक ऐसे स्किल के लिए, कि एक ऐसे स्किल की तरफ जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव, फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू मेक मनी थ्रू इंटरनेट है. देखें, हर बंदा चाहता है कि वो इजी वे से पैसा कमाए, हर बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ चेंज हो. देखें, अब दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, हर चीज अब ऑनलाइन हो रही है. अब जितने भी दुनिया के आप डिपार्टमेंट्स उठा लें तो हर जगह पे एआई काम कर रहे हैं. आप जरा ये सोचिए और समझें कि अगर आप सख्त तरीके से, हार्ड वे से पैसा नहीं कमा सकते तो स्मार्ट वे सीखे ना जी, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जिसमें आपको कल की फिक्र ना हो. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि अपने टैलेंट को अपनी कमाई के लिए यूज करें और जो आपका टैलेंट है उसकी वर्थ का आपको आउटकम मिलना चाहिए, जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में. और हर बंदा चाहता है कि बहुत कम वक्त में उसको ज्यादा से ज्यादा कमाई हो. देखिए, हम लोगों ने ना एज अ कम्युनिटी बल्कि ये सीखा हुआ है कि जो तीन चीजें हैं ना वो हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है. और वो आज सब एग्री करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कंफर्ट जोन. और कंफर्ट जोन कहाँ के क्या है कि जहां पे लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो उसमें से निकलना नहीं चाहते एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ. और 80% लोग, याद रखिएगा, लिटरली वो रीजन ढूंढते हैं कि अपनी लाइफ ना चेंज करें. हम इवन के वहां पे चेंज सर्टन हो, इवन वो पॉजिटिव हो, उनके लिए बेनिफिशियल भी हो ना, तो सनी जी वो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसमें बड़े खुश होते हैं.
1: बिल्कुल.
2: सेकेंड जो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है वो है लर्न हेल्पलेसनेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग चेंज नहीं करना चाहते इसलिए कि हमने सीखा है कि हम कर ही नहीं सकते. ये इतनी बड़ी साइकोलॉजी है सनी जी कि ये लोगों को बहुत कम को समझ आती है. और लास्ट आता है कि जो लास्ट रेजिस्टेंस हमारे रास्ते में आती है कि हम हमेशा एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास ये रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा तो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है. देखें, एक हर दुनिया में जो काम है ना वो हार्ड वे से आता है और अपने फेलियर से बंदा सीखता है. और यहाँ पे जो लोगों को, जो मोस्टली लोगों को चीज स्टॉप करती है ना, वो है व्हाट आई वांट, व्हाट दे वांट. और याद रखिएगा, जिंदगी में देयर इज नो सच थिंग इज व्हाट आई वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू आर. देखें, आपने अपनी वर्थ का लेना है. आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो ना तो आपको फैक्ट्री वर्कर जैसा ही मिलेगा. आप वहां से निकलोगे, ऊपर जाओगे, सुपरवाइजर करते करते आप ऊपर जाते हो, आप जो हो उसका मिल रहा है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आए आके एक दफा हमारा सेमिनार अटेंड कर लें और आप बिलीव करें, आप सोचेंगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया. देखें, हमारे पास जो लोग आते हैं ना तो बड़ी दफा कहते हैं जी हमने बहुत जी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं लेकिन हमारी लाइफ नहीं चेंज हो रही. प्रॉब्लम बड़ा सोचने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर एक्शन नहीं लेते.
1: Exactly.
2: और सेकंड चीज क्या है कि सब लोग सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, उसी पे खुश हो जाते हैं. आज हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि घर पे बैठ के आप दुनिया, बल्कि घर आपका दुनिया में कहीं पे हो, आपको किसी का वो यानी डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपने कंप्यूटर के सामने 90 मिनट बैठना है एंड यू आर मेकिंग 1.5 आवर जो पैसा बना रहे हो, जो लोग वीक्स में बल्कि महीने में बनाते हैं. देखें, स्विमिंग सीखना चाहते हैं ना, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप पानी में नहीं उतरते ना, उस वक्त आप नहीं सीख सकते. तो आए आके हमारा सेमिनार अटेंड करें, माइंड ब्लोइंग. अभी लास्ट हमारा प्रेजेंटेशन हुई है, लोग बाहर बैठे हुए, यानी हमारा पूरा हॉल फुल था, वो बाहर बैठे हुए, और जब फिनिश हुआ तो कहते हैं यार हमने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए. तो अभी मैं सबसे कहूंगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कॉल करके अभी अपनी सीट बुक कर लें. यू विल गेट कि आपने जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. हमारा फोन नंबर है 905-206-1008 905-206-1008, या आप जाएं winlifetime.com पे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी.
1: एक्सलेंट दोस्तों, मोहम्मद साहब ने बड़े ब्रीफ तरीके से समझाया है व्हाट एंड हाउ, बाकी पहला कदम आपने उठाना है. और ये इन इस जिस अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज वो एक ही बात होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया. तो हम आमदनी को, इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने का आपको मौका मिलेगा. फ्री सेमिनार आपके लिए डिजाइन किया गया है, हर एक के लिए, हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 to 3:30. प्लीज प्लीज कॉल एंड रिजर्व योर सीट, टेक योर फ्रेंड्स अलोंग, टेक योर स्पाउस अलोंग, और जितने आपके क्वेश्चंस है उसका जवाब देंगे विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग पर मोहम्मद साहब और उनकी टीम. 905-206-1008 905-206-1008. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. 905-206-1008.
3: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.
3: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040।
4: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 locations ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577 4166710577 alldebtsolutions.ca।
5: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 6478661086। राज जोशी, नाम ही काफी है।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 13, एंड रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी, आपका स्वागत है।
6: जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिस्टर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
3: जी आपको भी।
6: सनी जी, आज मैं आपको 4 रीजंस देने वाला हूं जिसमें आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी फर्स्ट होम का एड्रेस बनाने की जरूरत है, और क्या उसके आपको बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले, मॉडर्न लेआउट्स डिजाइन फॉर टुडेज लिविंग, ओपन कॉन्सेप्ट स्पेसेस दैट फ्लो नेचुरली फ्रॉम रूम टू रूम। इसके साथ नेट जीरो रेडी होम्स हैं, एनर्जी इफिशियंट कंस्ट्रक्शन दैट लोअर्स फुटप्रिंट and reduces energy cost for years to come. साथ ही bungalows और two story homes हैं, जहां पर आप choose कर सकते हैं from a variety of thoughtfully designed floor plans, जिसमें layout जो best fit करेगा आपके lifestyle need और future plans को। साथ ही साथ personalization options हैं, making it yours with available finish and feature selections tailored to your lifestyle, और

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस May 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
3: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
2: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ. ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ AB ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
2: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
3: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ
2: 6547 7398710. License number M200003450.
4: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए.
5: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
6: This is the effects of famous Masala Chai by Navigator's Cafe.
5: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
7: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
8: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों?
9: नया इलाका और नया घर,
8: अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.
10: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना. इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे,
11: एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा.
10: ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप. अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी.
12: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
13: अच्छी, याद है, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
12: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
14: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca. कॉल 905-458-2448.
15: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
16: कहां पर बोलना है और कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं. कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं. कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं. कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं. ये कुर्सी मुल्क खा जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर रोटी की चोरी हो तो सारे बोल जाते हैं. नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं. नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं. मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं.
17: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे 1 से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और लोकल डेवलपर बिल्डर्स सदर ओंटारियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे सिंस 2000 द वन एंड ओनली अतीक खान साहब हमारे साथ हैं. कुछ आपके सवाल हैं अतीक भाई से पूछेंगे इन रिगार्ड्स टू दिस बिजनेस कॉन्सेप्ट जो अतीक भाई लेकर आए हैं और इतने अरसे से सक्सेसफुली इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के जरिए पीपल हैव मेड मनी, पीपल हैव इन्वेस्टेड एंड पीपल हैव बॉट लैंड डेवलप. जब वो डेवलप होती है फिर आपका नेम भी टाइटल पे होता है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ पीपल हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन. लेकिन उसके अलावा lots and lots of people जो हमारे listeners हैं सुनते हैं and have a lot of questions in regards to this entire business concept. तो अतीक भाई से ही पूछ लेते हैं. 416-666-2745 416-666-2745. अतीक भाई आपका स्वागत है.
18: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपको और आपके प्यारे प्यारे लिसनर्स को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल.
0: जी आपको भी गुड आफ्टरनून. एंड सबसे पहले हमारे लिसनर मनोहर जी का सवाल है आपके लिए कि भाई अतीक भाई, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच इज रिस्क एंड हाउ मच इज द रिवॉर्ड. ये तो एक्चुअली इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा भी सवाल है. ये हर एक का सवाल है.
18: चलो तो मनोहर जी, बेसिकली रिस्क और रिवॉर्ड, पहले रिस्क की बात करते हैं. सनी साहब, रिस्क जो है वो परसेंटेज अगर दो 1 to 10 के अंदर तो मैं कहूंगा 2 जो है वो रिस्क है और 8 जो है वो रिवॉर्ड है. यानी 80% रिवॉर्ड, 20% रिस्क है आपका.
0: वाओ.
18: और ये मैं बहुत खुल के ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं.
0: जी अगर इसी का, इससे पहले कि अगला सवाल मैं आपको पूछूं, इसी का काउंटर सवाल अगर होता है कि वो 2 जो रिस्क है वो क्यों है.
18: हाँ ओके, तो सनी साहब अच्छी न्यूज ये है कि इसमें रिस्क आपके पैसे का नहीं है. इसमें रिस्क है मेरी उस जुबान का जो मैंने आपको दी और ये बोला कि सनी साहब 18 महीने में हमारी ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, 2 साल में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, 5 साल में ये हो जाएगा. तो टोटल रिस्क अगर उसमें है तो वो टाइमिंग है जो समटाइम्स आपके कंट्रोल में नहीं होती फॉर वट एवर रीजन. समटाइम्स सिटी टाइम लगा रहा होता है, समटाइम्स रिपोर्ट्स आने में, स्टडीज आने में टाइम लग जाता है, कभी कभार आर्किटेक्ट टाइम दे रहा है, कभी सर्वेयर टाइम ले रहा है. तो रिस्क के नाम से अगर आप किसी चीज को बोलेंगे तो वो सिर्फ इतना है कि अगर मैंने आपको जुबान दी है कि 18 महीने में हम इतने टाइम पीरियड के अंदर ये अप्रूवल ले आएंगे, मे बी 1-2 महीने ऊपर हो जाए, बट 1-2 महीने, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, 1-2 महीने आप ऐड कर लें.
0: या विच इज समटाइम्स बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल. मतलब
18: 100% मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ये समझते हुए कि ये मुझसे कोई अगर पूछ रहा है और अगर मैं कहीं अपना पैसा लगा रहा होता तो मैं भी जाके यही पूछता कि भाई मेरा पैसा तो सेफ है और अगर टाइम में ऊंच नीच होगी तो क्या होगी.
0: ठीक है, नंबर अतीक भाई का है 416-666-2745. अतीक भाई, उमंग जी पूछते हैं, सो रिस्क क्या है अतीक भाई, क्या मेरे पैसे मतलब विल आई लूज मनी हियर एंड हाउ मच इज द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड आल्सो, सिमिलर टू द इनिशियल क्वेश्चन.
18: हाँ, पहला पार्ट तो मैंने वैसे ही दे दिया कि नहीं, रिस्क इसमें पैसे का कुछ नहीं है. तो आपको इसका रीजन बताता हूँ. ये पर्टिकुलर जो हम लोग लैंड्स वगैरह परचेस करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, ये नॉर्मल सेल से नहीं आ रही सनी साहब. मैं रिपीटेडली बता चुका हूं कि ये नॉर्मल सेल और परचेज नहीं है. आप समटाइम्स कॉरपोरेशन बाय कर लेते हैं जिसके अंडर में वो प्रॉपर्टी या लैंड होती है, समटाइम्स आप कोर्ट के थ्रू जाके मॉर्गेज बाय कर लेते हैं. डू यू नो यू कैन परचेज द मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अ लैंडर सो दैट यू ओन द प्रॉपर्टी इन द फ्यूचर. समटाइम्स कोर्ट के ऑर्डर होते हैं वो खुद रिसीवरशिप में होता है, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, किसी की डेथ हो गई, कोई डिवोर्स हो गई, तो जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती हैं ये उनसे हटके है और मार्केट से आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है. तो रिस्क पैसे का तो आपका रहा ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हुए हैं. दूसरा पार्ट आपका ये था कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ. ऑनेस्टली फ्रॉम 10% फिक्स रिटर्न से लेके 200% तक का आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है. 10% आप मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट कर सकते हैं और 200 के लिए आपको रफली 4-5 साल वेट करना पड़ता है. बट जो मेरा सबसे अच्छा फॉर्मूला चल रहा है जिसमें मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स मेरे जुड़े हुए हैं वो है 18 मंथ वाले प्लान में, कि जिसमें हम ड्राफ्ट प्लान या साइट प्लान अप्रूव करा के उस लैंड को रीसेल कर देते हैं और उसमें आपको 30-40% का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है. 18 महीने पे अगर आप 30-40% को ब्रेक डाउन करें तो वो कोई 26-28% पर ईयर बनता है एवरेज। सनी साहब, आज के दौर में सिक्योरिटी के साथ कि जब टाइटल पे आपका नाम भी हो, प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो, कोई डेट्स, कोई मॉर्गेज नहीं, और उस पर भी आपको 20-20% पर ईयर रिटर्न मिल रहा हो, नथिंग लाइक इट। सवाल मत करिए, फोन मिलाइए, एक मीटिंग सेट करें, बैठे मेरे साथ, देखिए कि मैं पैसे कैसे बना रहा हूं और आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आप कोर्सेज करेंगे ना यूनिवर्सिटीज में जा जाके, तो आप 25-30,000 डॉलर देंगे और वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। आप इधर आइए, लर्न एंड अर्न दोनों आपके साथ होंगे।
0: 416-666-2745। जब हमारे एक्सपर्ट हॉट सीट पर बैठे होते हैं तो हमारे लिसनर्स के सवालों के बौछार जो होती है वो भी बंद होने का नाम नहीं लेती। दिस क्वेश्चन आई थिंक जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये हमारे लिसनर कबीर जी का क्वेश्चन है, और कबीर साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है इससे शार्प क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं सुना जो वो आपको पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, अतीक भाई बी रेडी फॉर दिस वन, अतीक जी, कैन दिस बिजनेस अर्न मी इनफ टू रिटायर and rely on this income? Who would have thought aisa sawal pooch rahe hain, par kya wazan hai sawal mein?
18: Bilkul sahi hai. To Kabir sahab, aapke liye answer hai, I'm assuming aapne retirement ki baat ki, to aap bhi us age bracket mein honge. Aur main bada khul ke baat karta hoon, to meri baat ka bura na maniyega. Dekhiye, you never know, जब आप 65 के होंगे या 70 के होंगे, आने वाले 5-10-15 साल में कब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कह दे कि हम अपने प्लान्स चेंज कर रहे हैं, अब आपकी जो हम आपको जो फंड करते थे हर महीने जो आपकी रिटायरमेंट में जाता था वो अब आपको शॉर्ट पड़ने वाला है, दवाएं महंगी होने वाली हैं, हॉस्पिटल, अब हेल्थ केयर जो है वो आप इंश्योरेंस से लोगे जैसे यूएस में होता है। इन अनफॉर्चुनेट चीजों के लिए अगर आप नेडी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आपका रिटायरमेंट बड़ी सख्त होने वाली है कबीर भाई। बेहतर यही है कि आप जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपके पास दो चॉइस हैं, या तो हर 18 महीने बाद 30-40% का लमसम चेक आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिए, या हर महीने जो प्रॉपर्टीज से आपको रेंट आ रहा है वो भले प्लाजा हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, सीनियर होम हो, सीनियर होम डिमांड लगी हुई है, आजकल वेटिंग लिस्ट है लोगों की सीनियर होम के लिए, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक लगी बंदी इनकम आपको हर महीने मिलती रहेगी। बट जैसा मैंने कहा, सनी साहब ने इतना टाइम दिया है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा।
0: 416-666-2745 अतीक खान साहब का नंबर है, और इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हम एक सेगमेंट में समेट लें ये नामुमकिन है। इसको हमें समझ आ गया कि भाई है क्या चीज़, बट इसके अंदर बहुत डिटेलिंग है। उस डिटेलिंग के लिए दोस्तों एक बार अतीक खान साहब और इनकी टीम के साथ मुलाकात कर लीजिए। कल भी अतीक भाई ऑन एयर होंगे, वील शेयर सम मोर डिटेल्स, वील टेक सम मोर क्वेश्चंस जो कि हम डायरेक्टली पूछेंगे अतीक भाई से। बाकी अपॉइंटमेंट आपने बनानी है, इल टेक हाफ एन आवर टू एन आवर, एंड सारे सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। अतीक खान 416-666-2745। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
18: थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए।
0: थैंक यू ब्रदर। 416-666-2745 इज द नंबर, एंड गीत संगीत का कारवां भी चलेगा। अनु मलिक साहब कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, जीते हैं शान से वॉज द फिल्म, मिथुन चक्रवर्ती पर यह फिल्म आया है। इस फिल्म में संजय दत्त भी थे, गोविंदा भी थे, एंड मिथुन चक्रवर्ती का डबल रोल भी था, और गीत है जूली जूली, इंजॉय करें। आई विल बी बैक।
19: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
20: तो कौन मांगता?
19: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

0: मानता, हमको मैरी नहीं मानता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मानता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: तो कौन मांगता?
1: जानी जानी, चुने का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी।
2: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
3: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.
4: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best. McQueen Dental Care, Dr. Rajgil, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Dr. Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups, call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
5: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info। काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotral Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
7: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैंटन. 905-450-2828 इज द नंबर. ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM. ब्रैंटन अप्लायंसेस .com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख. सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: सुल्तान जी, सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें.
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही है, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही है, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं. और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी. तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा. $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी. इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे. पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ्री होम डिलीवरी होगी. आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन अप्लायंसेस .com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं. और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं. $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky कस्टमर कैन गेट इट. 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ 98 इंच सैमसंग टीवी $1999 का. 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: 905-450-2828, ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस. सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी. कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं.
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता. हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी. अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा. ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी. ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं. फ्री होम डिलीवरी होगी. 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे. स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है. टॉल टब की डिशवाशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवाशर ले सकेंगे स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ. फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी, तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा. वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है. हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को. ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी. 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: जी, 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markumper.
2: Doing business your way.
1: Member of Wayne's Auto Group.
3: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है. ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट. धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल. 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन. 9054586808.

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। होम लाइफ मेडिकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल सीपी चटवाल हमारे साथ है विद द रियल एस्टेट रियल रिपोर्ट, एंड देखते हैं क्या लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर आए हैं सीपी जी एंड सरबजीत जी। आप दोनों का स्वागत है। हेलो। हाँ जी, आप दोनों का स्वागत है।
3: थैंक यू सनी एंड ए वेरी हैप्पी थर्सडे आपको सभी सुनने वालों को।
2: जी, आप दोनों को भी। एंड सबसे पहले तो आपसे लेंगे क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए। व्हाट इज इट दैट दे नीड टू नो अबाउट रियल एस्टेट इन मिड 2026?
3: इस वक्त सेलर्स के लिए तो माय सजेशन इज दिस ओनली कि इफ यू हैविंग द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड You feeling a bit tight on to carry on, so advice yahi hai ki aap, you should sit with the realtor or review your mortgage with Sunny ji or anybody you like and take it from there. And but at the same time, buyers ke liye below 900,000 mein to is waqt aisi aisi opportunities hai ki bahut sare log aaye na ho ki wo kehte yaar is waqt mein extra money hoti, we would have been bought. We would have been bought two more PLS.
2: Ji. So buyers ke liye there's lots and lots of amazing opportunities under 900,000, but sellers ke liye aapka kehna hai ki seller agar is situation mein hai ki ab mortgage jo hai, obviously the rates are going up, renewals are coming up, to jin logon ne shayad 1.89 mein closing ki thi, ab ho sakta hai they are paying 4 point something, so un logon ko kya karna chahiye? Should they step down, downsize their living?
3: I think so. Agar wo, they feel the crunch of that mortgage, or while being working with the refi, kind of a remortgaging term, they should sit with a smart mortgage person.
2: Gee.
3: Who can do a bit of a thoughtfulness onto how the system can help them to support these extra costs.
2: जी, सरबजीत जी का नंबर 416-627-4737, 416-627-4737, एंड सीपी चटवाल 647-887-2707, होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर्स। एंड सीपी जी से भी यही सवाल पूछते हैं कि भाई बायर्स सेलर्स के लिए क्या सलाह रखते हैं सीपी जी, अगर इनकी सोच जो है सरबजीत जी से डिफरेंट है या सिमिलर है?
4: देखो सनी जी, मैंने कल किसी को ब्रांडफोर्ड में घर दिलाया है, वो बहुत बढ़िया सेमी डिटैच 640,000 ब्रांड न्यू
2: जी,
4: तो सिर्फ दो या तीन घर रह गए हैं, या जिन लोगों ने पहले 2021-22 में लिए थे वो क्लोजिंग नहीं करा पाए, तो वो घर अभी दोबारा रीसेल पे बिल्डर की हेल्प से हम बेच रहे हैं
2: जी।
4: तो बायर्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और ये वो बायर है जिनकी अभी मॉर्गेज रिन्यूअल आ रहा था, तो उनका मैंने कैम्ब्रिज में घर बेच के नया ही दिला दिया।
2: हम्म,
4: तो लोग डाउनसाइज भी कर रहे हैं
2: जी। हमारे सीपी जी, हमारे एक लिस्टनर हैं, रिक उनका नाम है, रिक, और रिक ये पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा सिनारियो हुआ है या क्या कभी ऐसा सिनारियो होगा कि जहां पर इंटरेस्ट रेट्स भी लो होंगे और घरों की कीमतें भी डिसेंट होंगी या लो होंगी, ऐसा आपने कभी देखा है सिनारियो, या आने वाले वक्त में ये सिनारियो कभी देखने को मिलेगा या कभी नहीं देखने को मिलेगा?
4: अभी तो अभी तो प्राइसेस भी कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रीजनेबल ही है.
2: आई थिंक रीजनेबल है, बट जहां पर पीपल गॉट यूज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अंडर 2%, 1.5%, कहीं ना कहीं शायद 4.5% बहुत लगता है.
4: That time will not come again.
2: That okay, the interest rate time will not come again. But Rick जी का जो सवाल है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप?
4: First time buyer के जो इस वक्त नीड है वो 6 लाख से लेके 8.5 लाख के अंदर है, उसमें प्रॉपर्टीज मिल रही है, अच्छे घर मिल रहे हैं
2: जी.
4: डिपेंड करता है उनकी क्या चॉइस है. तो जितने भी 10% डाउन पेमेंट डालने वाले लोग हैं, अभी मैंने विटवी में किसी को बैंक लोन लेके दिया है, $1,500 उसमें रेंट आ जाना है
2: जी.
4: और अभी वीकेंड में उनकी इंस्पेक्शन है, मॉर्गेज हो गई है, हस्बैंड वाइफ दोनों दे आर मेकिंग गुड हैंडसम मनी
2: जी जी.
4: मिनिमम डाउन पेमेंट वो घर ले रहे हैं. तो ये सारी चीजें हैं, बायर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है
2: जी. एंड यही सवाल जो रिक पूछ रहे हैं, इसका अगर सरबजीत जी भी किसी एंगल से जवाब देते हैं या उनका सिमिलर होता है टू सीपीजी, कि क्या ऐसा वक्त आएगा सरबजीत जी जहां पर हमारे लिसनर पूछते हैं कि द मॉर्गेज रेट एंड द प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो दोनों ही कम होंगे या बेहतर होंगे? प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गुड एज इट इज फ्रॉम व्हाट इट वाज 2 years अगो.
3: देखिए, जो रिक साहब की जो दिली इच्छा वो 50% तो आप कह ही नहीं कि दैट इज बीइंग डन, कि जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो कम है
2: बिल्कुल.
3: एंड जो सेकंड हाफ उनका जो क्वेश्चन है, अब उसमें वो रेफरेंस अगर वो 2020 का इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं नीचे, तो इट विल बी अ बिट ऑफ अ डिफिकल्टीज कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आपको बहुत जल्दी कुछ नजर आएंगे. हाँ, जैसे गवर्नमेंट ने एंड ऑफ द मार्च में जिसको HST और GST के जो रिबेट्स अनाउंस हुए हैं और इम्प्लीमेंट हुए हैं 1 अप्रैल से, अब आने वाले टाइम में कुछ वैसी सी और क्रिएटिविटी आती है डिफरेंटली, वो गवर्नमेंट ही बताएगी
2: जी.
3: क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी मच लुकिंग ऑन टू एवरीथिंग दैट हाउ टू मूव दिस मार्केट इन ए रीजनेबल वे
2: जी. मैं चाहूंगा मैं नंबर दे दूं यहाँ पे सीपी चटवाल सरबजीत गिल का, 4167 6478872707. ऑब्वियसली सीपीजी से लिस्टिंग्स भी लेंगे इस वीकेंड वाली. और सीपीजी एक सवाल ये भी है कि किसी रियल्टर को किस आधार पे चुनना चाहिए फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स. मुझे लगता है वी ऑल हैव द आंसर, बट वी रादर हियर इट फ्रॉम यू गाइस.
4: नॉलेज, इंफॉर्मेशन, देयर टेस्टिमोनियल और एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें तो आप देख के काम करेंगे ना. राइट
2: बिल्कुल जी.
4: तो ये तो मिलके ही बात हो सकती है
2: बिल्कुल.
3: बट सनी, जो ये टेस्टिमोनी जो है वो टेस्टिमोनियल तो सनी से हमें ज्यादा अच्छे से मिल सकती है
2: बिल्कुल.
3: बीइंग इन ऑल वेदर ऑफ अप एंड डाउन एंड हाई टू हाई एंड लो टू लो
2: जी,
3: इन ऑल काइंड ऑफ ए सीजन ऑफ रियल एस्टेट, प्रॉबली हम लोगों ने कोई शायद वीक मिस नहीं किया.
2: बिल्कुल सही बात है. एंड ये एक्सपीरियंस ही है, 2 decade का लंबा एक्सपीरियंस जो कि सरबजीत गिल सीपी चटवाल रखते हैं. एंड एक पूरे साल में 365 दिन होते हैं, ये वो 2 realtors हैं जो कि 366 दिन काम करते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ डेडिकेशन दे हैव टुवर्ड्स व्हाट दे डू. सीपी जी कुछ लिस्टिंग्स भी हो जाए.
4: सनी जी, ब्रैंडफोर्ड पेरिस में अगर आप टाउन, सेमी और डिटैच लेना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव डील्स हैं बिल्डर की तरफ से, क्योंकि जिन्होंने बहुत हाई प्राइस पे बुक किए थे वो सम पीपल आर नॉट डूइंग द क्लोजिंग. अभी एडजस्टेड रेट के साथ बहुत अच्छी प्राइसेस मिल रही है
2: जी जी.
4: उसके लिए प्लीज हमको कॉल कीजिए एंड वी विल सेंड यू द डिटेल्स
2: जी.
4: और
2: जी.
4: अगर और एक और अपने जेल आसन ब्रैम्पटन के एरिया में एक डिटैच घर लिस्ट किया हुआ है 799,000 फिनिश बेसमेंट सेपरेट एंट्रेंस के साथ
2: जी.
4: तो प्लीज कॉल कीजिए एंड बहुत अच्छी अच्छी डील्स हैं हमारे पास.
2: बिल्कुल. एंड सीपी चटवाल सरबजीत गिल से बिल्कुल एक अपॉइंटमेंट जरूर बनाएं 6478872707 या 416-627-4737 416-627-4737. सरबजीत जी, जाने से पहले यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप?
3: मेरी तरह से एक जस्ट शेयरिंग है बिकॉज वी हैड ए कपल ऑफ मीटिंग्स विद ए पर्सन वांट टू सेल द होम
2: जी
3: हैड देम टू और थ्री इयर्स बैक टू बट समहाउ दे रिमेम्बर अस कोई भी अगर आप घर ले रहे हैं एनी बायर और हुज हैविंग देयर होम राइट नाउ आप उसको पेड अप करने का ओरिएंटेशन जरूर रखें
2: जी
3: ये मत सोचें कि सब लोग जो है वो 25 साल में पे करते हैं कुछ लोग 15 साल में भी पे करते हैं कुछ लोग 4 साल में भी पे करते हैं
2: जी
3: कुछ लोग 10 इयर्स में भी घर को पेड अप कर देते हैं
2: जी
3: तो लुक इनटू इट कि जब हम हर 10 सेंट गैस बचाने के लिए वी लुक फॉर ए ट्यूजडे या लुक फॉर ए गैस स्टेशन देन ये हजारों जो डॉलर आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं Why not you look for these dollars, how to you can save it?
2: Bilkul.
3: And how to pay your mortgage faster. If we can be any help to you, you can call us for any tip or trick or thoughtfulness.
2: Bilkul. Sarabjeet Gill, CP Chatwal, Home Life Miracle Kiss, Superstar Realtors, 647-887-2707-416-627-4737. Gentlemen, बहुत बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात. थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एंड आप दोनों की तरफ से एक आखिरी गीत लाइन अप कर दिया है यहाँ पे मैं भी इजाजत लेता हूँ टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन
5: एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफटाइम केयर वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर आज ही विजिट करें waynesautogroup.com
6: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
7: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो होम लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040 दैट इज 6476280040
6: यहाँ कल क्या हो किसने जाना
1: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते Sunday मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी उर्दू पंजाबी और तमिल में विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com Woodbine Ave or Denison Street,
8: Markham Park. Doing business your way.
1: Proud member of Wayne's Auto Group.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
4: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
3: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया.
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3. म्यूजिक, मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरा हुआ आपका फेवरेट शो. आज का मूड दोस्तों सिंपल है, स्टे हैप्पी स्टे ट्यून्ड. शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शायरी से. मुस्कुराते रहो तो सफर आसान हो जाता है, हर दिन फिर एक नया अरमान हो जाता है. जो दिल से जीना सीख ले उसका हर पल खास हो जाता है. तो दोस्तों इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं, जहां होगा बॉलीवुड कैलेंडर, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, थोड़ी सी फिल्मी गॉसिप्स, मेहमानों का साथ और आपसे हमारी दिल से बातचीत, यानी एक और एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट पैक्ड शो जस्ट फॉर यू. तो सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी शाम के 4 बजे तक ऑन सीएमआर एफएम 101.3. गुड आफ्टरनून.

0: ஷான் எக்ஸ்பிரஸ் மஸ்தி கி ரேல்காரி ஸ்டேஷன் CMR 101.3 FM பர் ஆ சுகி ஹே. Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
0: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और

0: commercial projects.
1: Best quality, stylish designs or great pricing. Chahe sunroom ho ya ho custom canopy. Sab kuch milega yahan.
0: Free quotation ke liye abhi call kare 416-831-4790. That's 416-831-4790. Ya pahuncho 24 Regan Road, Brampton.
1: California awning and canopy. Banaye aapki space sundar aur functional. वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20.26. 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600. दैट्स 905-789-6600.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Is season shandar Canadian road trip mein drivers aur unki Toyotas ka hoga the great white north ke anjaan raston se aamna samna. Saath dene aayenge snacks, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स, पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वॉप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश। This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20.26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.

0: आपका अगर दिल खो गया है दोस्तों, तो दिल को वापस ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके पास दिल खो गया है. तो उससे जरा रिक्वेस्ट करें कि दिल वापस आपको दे दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार. ऑन CMRFM 101.3, अ वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी दोस्तों को. शालिनी की तरफ से इट्स 2:17 राइट नाउ, थर्सडे May 21st आज की तारीख है. और बाहर का तापमान क्या कहता है? प्लेजेंट डे, ब्यूटीफुल डे. आई थिंक हम लोग सब जो है ना +30 के ऊपर ज़्यादा हमारे लिए ओवरडू हो जाता है. तो हम, मेरे ख्याल से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम +15, 16, 20, 25 तक ही खुश रहते हैं. वैसे बाय द वे अभी है +12 degrees centigrade, फील्स लाइक 10 degrees, सनशाइन सारा दिन भर. आज का हाईएस्ट जा सकता है टेम्परेचर 5 बजे 15 degrees centigrade एंड लोएस्ट रात के 11 बजे 9 degrees centigrade. और बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं शाम के 7 बजे के बाद, विच इज यूजुअल. सो वेल, वी हैव अनदर डे टू फील हैप्पी अबाउट, वी हैव अनदर डे टू ब्रिंग स्माइल टू समबडीज फेस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपने खुद के चेहरे पर स्माइल लेकर आइए दोस्तों. अपना फेस सल्कन ना बनाइए, क्योंकि अगर आप अपना फेस बड़ा सैड बना लेते हैं तो सामने वाला अपने आप सैड हो जाता है. वेल, यू विल बी वेरी हैप्पी अगर आप अपने घर में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स लगवाते हैं या अपने ऑफिसेज में. और सबसे अच्छी बात है, यश विंडोज एंड डोर्स पर अगर आप जाते हैं तो आपको स्टाइल अच्छा मिलता है, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, इतना सब कुछ होने के बाद प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है. खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है, स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ. और अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, दे हैव फ्रेंचाइज ऑप्शंस अवेलेबल. कॉल कीजिएगा यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600. और इन समर वेकेशंस में या स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ कहीं बाहर जाना चाहते हैं आप, तो देओल ट्रैवल से ज़रूर बात कर लें. बेस्ट ऑफर्स हैं दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक, राउंड ट्रिप $1,320, लिमिटेड सीट्स हैं. नाउ दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर से नवंबर वन वे 830, टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सेप्टेम्बर से अक्टूबर राउंड ट्रिप लगा है $1,650 दो बैग्स के साथ. और बहुत सारी और डील्स भी हैं. इटोबिको एंड ब्रैम्पटन दोनों लोकेशन से सर्व करते हैं देओल ट्रैवल. 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200. आप है मस्ती की रेलगाड़ी पे सवार शालिनी के साथ CMRFM 101.3 पर. एक अच्छा सा आज भी हम टॉपिक लेकर आएंगे और आप लोगों से कुछ आप लोगों के व्यूज़ लेंगे और उस टॉपिक के हवाले से आप क्या सोचते हैं वो भी आपसे पूछेंगे. और इसके साथ साथ आप शायद जीत सकते हैं $100 का गिफ्ट आज मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3. हमारे साथ बने रहें ड्यूरिंग और आफ्टर द शो. हमारा डायरेक्ट नंबर 416-569-7812, 416-569-7812. गुड आफ्टरनून, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
0: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। Kanda Optical, the name you can trust.
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Sean Express kare aapko unwind. Leave your problems behind.
3: जी दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम को बिहाइंड करने ही तो मस्ती की रेलगाड़ी आती है सीएमआर एफएम 101.3 पर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड व्हाट अ वंडरफुल डे, प्लेजेंट डे इट इज। सनशाइन बाहर बरकरार है और हमारा आपका साथ है। आप अपने चाहने वाले के साथ इस वक्त गाड़ी में हैं। कुछ लोग दफ्तरों में इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी वर्क प्लेस पर इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग घर पर इंजॉय कर रहे हैं। सो वेल, आपकी चॉइस है, आपकी जिंदगी है, जहां भी इंजॉय करना चाहे कर लें। बैठे बैठे रेलगाड़ी चलती रहती है। वेल, आज का बर्थडे बॉय कौन है ये आपको बता दें। बॉलीवुड कैलेंडर का पहला पन्ना खोलते हैं और आज बात एक ऐसे फिल्म मेकर की जो खुद कैमरे के सामने कम आते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स और उनके जो फिल्म्स हैं वो दिलों में बस जाती है। एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के रोमांस को एक नया नाम दिया। अब बात करेंगे हम एक विजनरी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की, जो लेजेंडरी फिल्म मेकर यश चोपड़ा के बेटे हैं और उन्होंने आगे बढ़ाई है यश राज फिल्म्स की लेगेसी। बहुत कम उम्र में उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा और पहली फिल्म से हिस्ट्री बना दी। फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और डीडीएलजे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अपनी तरह का इमोशन बन गई। और राज और सिमरन का प्यार आज भी लोग उसकी मिसालें देते हैं। काजोल और शाहरुख खान की जो जोड़ी बनी वो अब तक कायम है। और डायरेक्शन के साथ साथ आदित्य चोपड़ा इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर एज वेल। बहुत सारी ब्लॉकबस्टर इन्होंने फिल्में दी हैं और अनोन फैक्ट है कि इनके बारे में कि ही इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन, रियल मीडिया में बहुत कम नजर आते हैं। और सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने डीडीएलजे को डायरेक्ट किया था और इतनी यंग एज में इतना बड़ा सक्सेस प्राप्त करना इज नॉट ईजी। मॉडर्न रोमांस का एक नया ट्रेंड इन्होंने बॉलीवुड में सेट किया। एनआरआई लव स्टोरीज का जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है उसकी नींव रखी आदित्य चोपड़ा ने और यशराज स्टूडियोज आज भी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियोज में एक शामिल हैं। एक कंप्लीट फिल्म मेकिंग हब है और ये क्रिएटिव डिसीजंस जो हैं खुद क्लोजली सुपरवाइज करते हैं और परफेक्शन का जो इनका इंतहा है वो एक अलग ही है। फिलहाल एंजॉय करते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म से लिया गया प्यारा सा गाना जो आपको बगैर पिए झूमने को मजबूर कर देगा। मस्ती की रेलगाड़ी पर एंजॉय।

0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157.
1: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में क्रिकेट कनाडा के नए प्रेसिडेंट अरविंदर खोसा के घर पर फायरिंग की गई। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। पुलवामा में 2020 में हुए ग्रेनेड हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमिलनाडु में विजय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो गया विवाद। कांग्रेसी विधायक राजेश कुमार ने कामराज अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे और जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। एयर इंडिया की दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। और इंदौर में आया एक अनोखा मामला, 13 साल की बच्ची की शादी जबरन 42 साल के नौजवान से करा दी गई।
0: और अब डालते हैं नजर टॉप लोकल खबरों की तरफ। एक कोर्ट डिसीजन आया है जिसमें 18 साल पुराना टिकट केस पलटा। टोरंटो के एक ड्राइवर को बड़ी लीगल जीत मिली है। नेवली ग्रीन को 2007 में रेड लाइट वायलेशन का टिकट मिला था। 2008 में उन्हें गिल्टी ठहराया गया था लेकिन अब ऑन्टेरियो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रायल था ये फेयर नहीं था। प्रीवियस जज की कमेंट्स अनबिकमिंग थी। ग्रीन का कहना है कि उस वक्त कंस्ट्रक्शन के कारण ट्रैफिक फ्लो प्रभावित था। अब 18 साल बाद उन्हें फाइनली जस्टिस मिला है। और फ्राइडे को गैस रिलीफ मिलने की पूरी उम्मीद है। जीटीए ड्राइवर्स के लिए राहत की खबर है। एनर्जी एनालिस्ट के अनुसार गैस प्राइसेस 9 सेंट्स प्रति लीटर तक गिर सकते हैं। एवरेज प्राइस करीब 1.82 डॉलर प्रति लीटर तक आ सकता है। डीजल में भी समान गिरावट की उम्मीद है। ये ड्रॉप नॉर्थ अमेरिका में फ्यूल स्टोरेज ड्रॉ की वजह से हो रहा है। एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है स्कूल बस कोलिजन का। कैलेडन के बोल्टन में एक बड़ा हादसा हुआ है। ऑन्टेरियो प्रोविंशियल पुलिस के मुताबिक एक स्कूल बस ने आज सुबह करीबन 8 बजे दो महिलाओं को टक्कर मारी। एक की हालत लाइफ थ्रेटनिंग बताई जा रही है। 12 बच्चे बस में थे लेकिन कोई और बच्चा इंजर नहीं हुआ है। किंग स्ट्रीट ईस्ट एरिया में रोड्स कई घंटों तक बंद रहने के आसार हैं। उधर एक कंज्यूमर इश्यू से जुड़ी खबर। ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा एक शॉकिंग मामला सामने आया है। स्टोनी क्रीक के रेसिडेंट्स डेविड क्रोरी और नील थॉमसन ने कहा है कि अमेजॉन डिलीवरी वैन उनके ड्राइववे को मिस करके लॉन पर चढ़ गई, व्हीकल फंस गई और पूरे यार्ड को डैमेज कर दिया। ये इंसिडेंट दिखाता है कि डिलीवरी मिसहैप्स भी काफी कॉस्टली हो सकते हैं। एक कम्युनिटी कंसर्न है। फीफा वर्ल्ड कप से पहले टोरंटो में ट्रैफिक प्रेशर की चिंता लोगों के जहन में है। ऊबर ड्राइवर्स ने वर्किंग कंडीशंस पर सवाल उठाए हैं। करीबन 650,000 विजिटर्स के आने की संभावना है। ड्राइवर्स का कहना है कि हैवी ट्रैफिक से पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन ड्राइवर्स पर निकालते हैं। यूनियन लीडर्स ने ऊबर से कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने की बात कही है। अब दे दें आखिर में वेदर अपडेट। आज का दिन रहेगा ब्राइट एंड प्लेजेंट। आज मौसम रहेगा शानदार विद द क्लियर स्काई, हाई ऑफ 15 डिग्री।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
3: भाई, चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
4: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
3: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
4: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810। 10 मिड्डा फर्नीचर।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 9057896600, दैट्स 9057896600। आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
2: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आप लोगों का फिर से शालिनी वेलकम करती है ऑन CMRFM 101.3। इट इज अ ब्यूटीफुल डे डेफिनेटली, एंड देयर इज अनदर बॉलीवुड सेलिब्रिटी हु सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे। तो अब हम जो है दूसरा पन्ना खोलते हैं आज के कैलेंडर का, और बता दें कि ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, विच इज द लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर कैनेडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग अगर आपको चाहिए तो कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी में जरूर संपर्क करें। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है आपको। यस, यू हर्ड मी राइट, फ्री बारबेक्यू विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल। टॉप क्वालिटी मटेरियल्स, मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग, हर एक सोल्यूशन मिलता है प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ। आउटडोर स्पेस को और भी ज्यादा सेफ, फंक्शनल, ब्यूटिफुल बना सकते हैं आप बाय विजिटिंग दैम, 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। स्टाइल भी, परफेक्शन भी। नंबर नोट करें 4168314790, 4168314790। और आज का जो क्विज है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, और आपको दिया जा रहा है $100 का गिफ्ट, विनर को दिया जाएगा। और विनर हम बिफोर एंड ऑफ द शो हम विनर का नाम डेफिनेटली अनाउंस करेंगे। बाय द वे, कल का विनर का नाम था ब्रैडी। ब्रैडी जी, इफ यू आर लिसनिंग टू बी राइट नाउ, प्लीज गिव मी अ कॉल। यू आर द विनर ऑफ यस्टरडेज कॉन्टेस्ट दैट वी डिड स्पॉन्सर्ड बाय स्पेक्स एक्सप्रेस। आपको मिले हैं स्केचर्स के पोलराइड सन ग्लासेस का एक पेयर। तो ब्रैडी जी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, सेंड मी योर मैसेज एट 4165697812, 4165697812। वेल, अब क्विज के लिए मैं बता दूं आप लोगों को आज का सवाल। आज का सवाल क्या कहता है? आज का सवाल ये कहता है कि कभी कभी हम कई लोगों के साथ मिलते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ लोग हमें पसंद आ जाते हैं, कुछ लोग हमें नापसंद भी आते हैं, कुछ लोग हमें भी नापसंद कर देते हैं, कुछ लोग हमें भी पसंद करते हैं। दिस इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन कभी कभी हमें लगता है पसंद आना और नापसंद आना ये एक बात है, लेकिन कभी कभी हमें समझ नहीं आते लोग कि ये ऐसा क्यों करते हैं। हमें लगता है आप ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ये इंसान ऐसा कैसे कर देता है। जैसे कभी कभी यू नो सम पीपल आर वेरी ड्राई टेक्स्टर्स, जैसे किसी का टेक्स्ट मैसेज आता है एंड यू गेट रियली पुट ऑफ कि कोई इस तरह के मैसेज कैसे लिख सकता है, इतने ड्राई मैसेज कोई कैसे लिख सकता है विदाउट एनी इमोशंस। या आप कभी किसी से मिलते हैं, दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी ड्राई, आपको लगता है ये इंसान है कि कौन है, इतना कोई ड्राई इंसान कैसे हो सकता है। इसके बाद कभी कभी लोग फेक होते हैं, डेफिनेटली फेक होते हैं, और कुछ लोग फेक होते हैं और वो छुपा जाते हैं, लेकिन कई बार फेक चीज़ जो है वो पता होते हुए इतना ओपनली फेक हो जाते हैं लोग, तो समझ नहीं आता ये कोई कैसे फेक हो गया। या वो जो पब्लिक में बैठकर स्पीकर पे फ़ोन पे बात करते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि सबके सामने बैठे हैं और स्पीकर पे बात करें, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों उस आदमी की प्राइवेसी के साथ आप खेल रहे हैं जो आपको पूरी तरह से आप में विश्वास रखकर आपको कॉल कर रहा है या आपसे बात कर रहा है? सो दीज आर द थिंग्स विच आई एम ऑनेस्टली अनेबल टू अंडरस्टैंड इन सो मेनी पीपल. आप बताइए कि आपको किस तरह के लोग समझ नहीं आते, कौन सी ऐसी हैबिट वाले लोग पसंद समझ नहीं आते आपको, पसंद नहीं कहूंगी. चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. एंड द फर्स्ट कॉलर फॉर टुडेज टॉपिक इज ऑन एयर नाउ. गुड आफ्टरनून. हेलो.
3: हेलो.
2: हां जी, गुड आफ्टरनून.
3: मैंने आई जस्ट पुट द यू नो द रेडियो ऑन. आई डिडंट लिसन द क्वेश्चन.
2: यू डिडंट लिसन द क्वेश्चन. ओके, योर नेम इज राजेंद्र.
3: यस प्लीज.
2: जी राजेंद्र जी, तो क्वेश्चन आज का है कि किस तरह के लोग आप समझ नहीं पाते. You know, sometimes we meet some people, we are unable to understand some people. Ki ye jo inki habits hain, why are they doing such a thing? For example, talking in public, on speaker, right? Ya being very, very fake, openly telling lies, openly doing stuff, being very, very dry, having no emotions. Is tarah ki habits wale hum log dekhte hain, hume lagta hai, I'm unable to understand this person. तो आप
3: आई विल टेक परमिशन, लिटिल बिट परमिशन फ्रॉम यू.
2: अच्छा.
3: एंड आई विल अगेन पुट द यू नो रेडियो ऑन, आई विल कॉल यू बैक.
2: डेफिनेटली नो प्रॉब्लम. आप जरूर सुनकर और फिर कॉल बैक कीजिएगा और आप डेफिनेटली अपने व्यूज दे सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस. तो वेल दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और इस टॉपिक के बारे में आप डेफिनेटली अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं. वेल अब खोलते हैं हम आज के बॉलीवुड कैलेंडर का अगला चैप्टर. और अगर आपको मिस्ट्री, सस्पेंस या ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद है, जो मुझे बड़ी पसंद है, तो एक नाम है जो आपको बार बार सरप्राइज करता है, कैसे फिल्म मेकर जिनकी फिल्में शुरू होती हैं अपने आप, मतलब शुरू हो जाती हैं और एंड तक आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, मास्टर स्टोरी टेलर जिनका नाम है सुजॉय घोष. इट्स हिज बर्थडे टुडे. इन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई एक बड़े यूनिक जॉनर के साथ जिसका नाम है थ्रिलर. बाकी फिल्में जहां पर प्रिडिक्टेबल होती हैं, वहां पर इनकी जो फिल्में हैं फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स होती हैं, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स भी होती हैं, कई बार समझ नहीं आती फिल्म खत्म हो गई कि अभी और चलेगी. एक फिल्म है जिसने इनको बॉलीवुड में नई पहचान दी, उस फिल्म का नाम था कहानी. हर मोमेंट उसका सस्पेंस से भरा था, एज ऑफ द सीट एंटरटेनमेंट थी ये. और फिल्म आई बदला, इसमें तो ऑडियंस को उन्होंने एंड तक गेस करने को मजबूर कर दिया, एकदम माइंड गेम लोगों के साथ खेला. और ओरिजिनली ये इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने जो पढ़ाई की वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करी. उसके बाद बॉलीवुड में इन्होंने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली, पहले एड्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया और फिर उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली. तो चलिए स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स इनको देख इनकी फिल्मों में नजर आते हैं. तो इतनी स्ट्रांग फिल्म थी कहानी, और इस कहानी से लिया गया ये गाना, 2012 की फिल्म थी और इससे लिया गया एक बहुत प्यारा सा गाना है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में. इनको हम डेडिकेट करते हैं, इस गाने के साथ ट्रिब्यूट देते हैं इतने बढ़िया फिल्म मेकर को. मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3, स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. गुड आफ्टरनून.

0: जी दोस्तों, एक बहुत प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी कहानी आपकी नजर की। आज तो जॉय घोष का बर्थडे है और कई सारे और गानों की फरमाइश आई है इन दोनों बर्थडे बॉयज के हवाले से, और एक और बर्थडे है उनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मिडा फर्नीचर की सैर करने चलते हैं। पवन मिड्डा जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीकेंड के स्पेशल स्पेशल ऑफर्स के साथ। पवन जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
0: थैंक यू।
1: हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज की कनक से ही आपको पता लग गया होगा कि आज एक्साइटेड हैं।
0: yes.
1: और जो जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई।
0: okay.
1: तो ग्रैंड ओपनिंग डिसाइड हो गई है लंदन के लिए, जो अगले सैटरडे जो है ग्रैंड ओपनिंग करेंगे।
0: क्या बात है।
1: कल से जो बहन भाई लंदन में रहते हैं उनको VIP ट्रीटमेंट भी देने, सॉफ्ट ओपनिंग जिसे कहते हैं, कि जो अर्ली बर्ड है आप स्टोर पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। और एक नई चीज पहली बार करने जा रहे हैं, आपको हर परचेज के साथ ग्रैंड ओपनिंग पे फ्लायर भी आपको मिलेगा, दिखने को भी देखेंगे, गिफ्ट देने जा रहे हैं। तो शालिनी जी, जो गिफ्ट जो है ना, हमने भी सुने हैं गिफ्ट में गिमिक्स बहुत होता है।
0: हाँ।
1: कि आए आपको हर पर मतलब फिर वो मैंने कहता ना, जैसे भी बच्चे को ट्रॉफी पकड़ाने वाली बात कर देते हैं कि ये छोटा सा कोई दे दिया $10-15-20 का, बोलने में तो कहते हैं आईपैड ले जाओ, पता लगता है चाइना वाला कोई जो लिक्विडेशन स्टोर पे 10.99 का मिल रहा है।
0: That's right.
1: पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने फर्स्ट फ्लायर पे, मैं आज आपको वो बता रहा हूँ, अभी वेबसाइट पे आएगा, आपको फ्री गिफ्ट लिखे हैं, चॉइस दे रहे हैं आपको, चॉइस देंगे कि तीन एशले की, और ब्रांड नेम देंगे कि अगर जो परचेज है हमने बनाई कि इतनी परचेज अगर आपको रग देंगे वो भी एशले फर्नीचर, रग तो फ्ली मार्केट में भी मिल जाती है $30 की, लेकिन जो 299 की मिलती है ना बाजार में वो देंगे। तो तीन रगों की चॉइस भी देंगे कि तीन रग है, तीन मॉडल है, ताकि जो आपके डेकोर के साथ जाती हो, वॉल आर्ट पिक्चर देंगे वो भी एशले की, जिसका मॉडल नंबर आप डाल के गूगल पर डाल के रियल प्राइस देख सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे बहन भाई हैं, तो चाहे आप मेरे घर आए या मेरे घर आए, कोई ना बहन मांग रही होती है गिफ्ट ना भाई मांग रहा होता है, वो टोकन ऑफ लव हम लाते हैं रिस्पेक्ट के लिए। तो हम भी आपको ग्रैंड ओपनिंग की खुशी में रिस्पेक्ट वजह से दे रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये हमारा मानना है कि ये जो हमारा जो भी ये पांचवी लोकेशन आपकी आशीर्वाद से हो रही है, ये चेन वाइड जो है आपकी, ये हम सेल कर रहे हैं, चारों लोकेशन वो पार्टिसिपेट करेंगी, लंदन स्टोर पार्टिसिपेट करेगा।
0: क्या बात है।
1: और मैट्रेसेस की बात है, नेक्स्टर कंपनी है, मैंने पिछले लिंक में आपने पिछले अभी का आपको बोला था, नेक्स्टर कंपनी बहुत ऐड आ रही है यूट्यूब पे, आप आ रही है, यूएसए की कंपनी है। 365 डेज 6 मॉडल है हमारे पास।
0: अच्छा?
1: 365 डेज आपको मैट्रेस फ्री ट्रायल है।
0: ओ, वाओ।
1: अगर 1 साल में आपको लगे कि ये मैट्रेस तो हमसे गलती हो गई, हार्ड लेनी चाहिए थी या सॉफ्ट लेनी चाहिए थी, यू कैन एक्सचेंज जो दूसरा कंफर्ट है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कोई डिडक्शन, और गारंटी जो है फॉर एवर है, 10 साल की नहीं, फॉर एवर है। 10 साल के बाद आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अगर आपने 10 साल बाद बेच दी तो यू कैन ट्रांसफर टू समवन दैट वारंटी एज वेल। तो ये मिड्डा फर्नीचर ने करके दिखाया, बहुत बड़े बड़े स्टोरों पे होता है लेकिन वो प्राइस भी बहुत मांगते हैं। आप तो हमें, हम बहन भाई हैं, हम रीजनेबल प्रॉफिट पे आपको देंगे, तो मिड्डा फर्नीचर पे आपको आना पड़ेगा। इस वीक के हम बहुत सारे स्पेशल्स हैं, डाइनिंग टेबल्स हमारे बहुत सारी नई आई हैं हमारे पास, और वो कहते हैं ना, आप एक बार आए तो सही, अजमाए तो सही, अपना बनाए तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा मिड्डा फर्नीचर पे आकर। इसके अलावा मैं हर बार कहता हूँ बहन भाई के नाते, जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे को एक बार अजमाए, हमारे से एक बार प्राइस कंपेयर कर लें, हमें एक बार से बातचीत कर लें, हम किसी से माफी मांगते हुए कि आपको प्राइस किसी भी एडवर्टीज प्राइस को 10% को बीच करके दे देते हैं, 10% प्राइस कम करके दे देते हैं, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, तो आपको अपने आना है अपने स्टोर पे। मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 416-901-2810 और जाने से पहले लिंक तो लंबा हो रहा है,
0: नो प्रॉब्लम,
1: देने जा रहा हूँ आपको कैनेडियन मेड, आ जाए, हमने वो बना के रखा हुआ है 1199 का, हम 6099 का बेचते हैं, 6099 में 500 कम भी कर लेते हैं लेकिन 5099 से कम नहीं बेचते, कॉस्ट पे कनेडियन मेड कलर चॉइस के साथ ग्रैंड ओपनिंग डील, एक जो है आज ही आज से देना शुरू कर देते हैं 1199 का, 599 की बोलते हैं, पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उलाना देगा ना, अगर $500 आपको बचना होगी हो तो आए, अजमाए और अपना बनाए, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 416-901-2810 थैंक यू वेरी मच जी,
0: थैंक यू सो मच पवन जी। थोड़ी देर में फिर आपसे बातचीत करते हैं, कुछ और डील्स लेते हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नॉट ओनली यू बट ऑल ऑफ अस फॉर द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ लोकेशन ऑफ मिडा फर्नीचर। ऑल द बेस्ट, विल टॉक टू यू सून।
1: थैंक यू जी,
0: यू मोस्ट वेलकम। वेल दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर आपका स्वागत है ऑन सीएमआर एफएम 101.3। इट्स 2:53 राइट नाउ। बस आज की ताज़ा खबरों की तरफ बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और अब बता दें कि आज के दिन में क्या खास होने जा रहा है, व्हाट इज सो स्पेशल इन टुडेज डे। एंड बिफोर दैट, आज का टॉपिक मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप लोगों को किस तरह के लोग समझ नहीं आते। पसंद और नापसंद होने की बात नहीं कह रही मैं, बात कर रही हूँ किस तरह के लोग आपको पसंद नहीं आते। सच सच बताइएगा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश करो तो खुद का दिमाग हैंग हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो ऑन माय वे बोल देते हैं लेकिन उसके बाद घर से निकलते हैं, पहले कहते हैं ऑन माय वे और मैसेज पढ़ लेते हैं और 3 बिजनेस डेज बाद उनका रिप्लाई आता है। कभी कभी ऐसी गलतियां वैसे मुझसे भी हो जाती हैं, तो शायद मुझे भी लोग कहते होंगे समझ नहीं पाए, लेकिन वो ऑनेस्ट मिस्टेक होती है तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि आपका आ गया था मैसेज, मैं जवाब नहीं दे सकी। कभी कभी कुछ लोग बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उन्हें पता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है, बेटर है कि ना दी जाए इन्फॉर्मेशन रादर देन गिविंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग ये कर देते हैं और लोग जो हैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि लोग गूगल को भी डाउट करने लगते हैं कि गूगल शायद गलत बता रहा है क्योंकि ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंसान कम और पजल ज़्यादा होते हैं। आपको किस टाइप के लोग बिल्कुल समझ नहीं आते, ये मेरा आपसे सवाल है। लेट आने वाले लोग समझ नहीं आते, ड्राई टेक्स्टर्स समझ नहीं आते, फेक एटीट्यूड वाले समझ नहीं आते, या जैसे मैंने पहले कहा लाउड स्पीकर पे जो है पब्लिक में बैठ के बात करते हैं अपने फ़ोन पर। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में। गुड आफ्टरनून,
2: हाय फ्रॉम मॉन्ट्रियल, दिस इज गगन चोपड़ा।
0: हाय गगन जी, हाउ आर यू?
2: बस बहुत बढ़िया। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो नेगेटिव रहते हैं।
0: अच्छा।
2: जो उदास रहते हैं, जो आप तो हंसो तो हंसते नहीं है, हमेशा रोते रहते हैं और किसी ना किसी बात पर लेके उनको मतलब दुखी हो रहते हैं हमेशा।
0: आप
2: मिलो शाम को किसी को, यार कोई हंसने की बात करो, कोई मस्ती की बात करो, कोई और मैं बताओ कैसे ठीक करें इन लोगों को।
0: बिल्कुल समझ आ गया आपकी बात।
2: आपके पास वीकेंड आया है, आपके पास शाम वक्त आया है, कोई अच्छा दोस्त मिला है आपको, तो कोई अच्छी बात करो, कोई अच्छा जोक सुनाओ, कोई अच्छा गाना सुनाओ, कोई मतलब
0: कुछ तो करो, एंटरटेनमेंट करो।
2: हाँ हाँ,
0: पता है आपको कभी ऐसा लगा है गगन जी, आप किसी के साथ बैठे हैं और आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनके चेहरे पर स्माइल लाने की, जैसे मान लिया आपको किसी ने घर बुलाया है और वो आदमी एकदम ही क्वाइट बैठा है और आपको लगता है कि शायद गलती मैंने कुछ कर दी है। मैं कुछ नहीं कर रहा, इतनी डेड एयर कैसे हो गई भाई यहाँ पर, कोई कुछ बोलो।
2: कैनेडा में तो हमारे पास चॉइस है भाई, वीकेंड पे किसको मिलना है।
0: हाँ,
2: तो बड़ा जरूरी है अपनी कंपनी अच्छी रखो।
0: यस,
2: और जो ऐसे लोग हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते।
0: यस, That's right.
2: बड़ा बड़े लोग ऐसे हैं जिनको मैं बताओ क्या करें, उनको कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का। और आपको मौका मिला है, अच्छा खाना पकाओ, अच्छा खाना खाओ, किसी के साथ बैठो, एक आधी ड्रिंक लो, एक आधा कहीं वॉक करने जाओ, कहीं मस्ती करो।
0: That's right. आपने बिल्कुल ठीक कहा, थैंक यू सो मच गगन जी, आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। आई केम अक्रॉस,
2: आप जो सारा दिन कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, सबको एंटरटेन करते हो आप। और आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी सुन के बड़ा मजा आया था।
0: थैंक यू गगन जी, अप्रिशिएट योर कॉल, थैंक्स अ लॉट, यू मेड माय डे, थैंक यू,
2: बाय बाय,
0: यू टू। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए देखते हैं कि उनको किस तरह के लोग समझ नहीं आते। गुड आफ्टरनून विक्टर जी, कैसे हैं?
3: थैंक यू वेरी मच। कन्वर्सेशन में तो सब लोग अच्छे होते हैं।
0: अच्छा।
3: लेकिन सारी दुनिया मतलब की है। सो आई शुड बी केयरफुल मेकिंग फ्रेंड्स।
0: ओके।
3: या
0: जी बिल्कुल, हम फ्रेंड्स जब बनाते हैं अपने क्लोज सर्कल के अंदर, जब किसी को फिट करते हैं ना, चक्रव्यूह के अंदर जब होता है ना क्लोज सर्किट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब वो आ तो जाए बाहर ना निकल पाए, इतने अच्छे दोस्त बनाने हो तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, वहां तक पहुंचाना इज नॉट इजी. आई टोटली अंडरस्टैंड.
3: थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक्स अ लॉट फॉर योर कॉल. आई अप्रिशिएट योर टाइम. वेल दोस्तों, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ CMRFM 101.3 पर मस्ती की रेलगाड़ी पर. और कई सारे कॉलर्स इस वक्त कॉल कर रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा. डेफिनेटली सेकंड आवर में हम कॉल्स लेंगे. बहुत जल्दी हम खबरों की तरफ चलेंगे. डायरेक्ट नंबर टू रीच अस बाय द वे, आई जस्ट गॉट अ मैसेज और मैं नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगी. कहते हैं आई कांट अंडरस्टैंड माय वाइफ, आपका मैसेज आया. और एक वॉइसमेल भी मेरे पास आया कि आपको फेक लोग पसंद नहीं आते. तो अप्रिशिएट आपने जो मैसेज किया है. कभी कभी हम इस तरह से हस्बैंड वाइफ के बीच में, पार्टनर्स के बीच में जोक्स चलते रहते हैं, वो हम कभी भी नहीं समझ सकते क्या आपस में मजाक भी चलता है. एनीवेज एक का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चलते हैं सीधे आज की ताज़ा खबरों की तरफ. हमारे साथ बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड.
4: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
5: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है? तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है. आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं. बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से. 437-829-6023. इट्स 437-829-6023. मास्टर धनिक महाराज.
4: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
0: This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा. लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com. मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26. एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर. कॉल 647-766-4335, 647-766-4335.
6: वक्त का काफिला आता है गुजर जाता है, आदमी अपनी ही मंजिल में ठहर जाता है. एक बिगड़ी हुई किस्मत में ना हंसना ऐ दोस्त, जाने किस वक्त ये इंसान संवर जाता है. इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का. और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में क्रिकेट कनाडा के नए प्रेसिडेंट अरविंदर खोसा के घर पर बुधवार सुबह फायरिंग की गई. अरविंदर खोसा ने CBC न्यूज से पुष्टि की कि उनके घर को निशाना बनाया गया, हालांकि उन्होंने घटना पर ज्यादा जानकारी नहीं दी. रिपोर्ट के मुताबिक घर के दरवाजे, खिड़कियों और बाहरी हिस्से में कम से कम 5 गोलियों के निशान मिले हैं. पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 4:40 पर उन्हें घटना की सूचना मिली थी और उस समय घर के अंदर लोग मौजूद थे. ईरान युद्ध को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप फिलहाल बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक फोन पर बातचीत हो चुकी है। अमरीकी अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकना गलती है और कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। पुलवामा में 2020 में हुए ग्रेनेड हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एम्स कॉलेज के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उन पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भारत ने 2022 में हमजा बुरहान को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था। वो अबू दुजाना, अबू कासिम, बुरहान वानी और जाकिर मूसा का करीबी था। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
4: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: winlifetime.com यानी जीतो जिंदगी भर .com। दोस्तों, जिंदगी में जीतना सब पसंद करते हैं। ख्याली पुलाव बनाना बड़ा आसान है, लेकिन असल मायने में सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो ख्यालों के पीछे थोड़ा बहुत काम भी करते हैं। और यहाँ तो आपको काम भी कम करना है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने रेडी है। आपके सामने प्लान रेडी है, आपके सामने सॉफ्टवेयर रेडी है, ऑफिस रेडी है, मेंटर्स रेडी हैं। देर सिर्फ एक छोटे से स्टेप को लेने की है। तो बहुत हजारों लाखों लोग तो ले चुके हैं, अगला नंबर आपका है। लिए चलते हैं आपको विन लाइफ टाइम की खूबसूरत सी जीतने वाली दुनिया की तरफ। और हमारे साथ जुड़ेंगे यहां से रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी। राफी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक जी। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स ग्लोबली, बिकॉज आज हम आपसे बात कर रहे हैं वैंकूवर से। शाखे दुनिया में जहां मर्जी से हम, हमारा सॉफ्टवेयर चलता है।
1: क्या बात है। और आई एम श्योर आज भी आपने बहुत सारी सक्सेसफुल ट्रेड्स ली होंगी राफी जी, जैसा आपने कल बताया था।
2: जी एब्सोल्युटली। थोड़ी सी हमें जरा मुश्किल लग रही है, सुबह अर्ली उठना पड़ रहा है, मार्केट का टाइम इस तरह 3 घंटे पीछे हैं। लेकिन हमारी पूरी टीम है, रणबीर चौहान साहब हैं, हैप्पी जी हैं, जतिन भल्ला साहब हैं, सारे इस वक्त होटल से निकलने से पहले पहले अपने अकाउंट ग्रीन करके आए थे।
1: वंडरफुल। तो अब ग्रीन जो है करने की बारी हमारे लिसनर्स की है, कि उनकी भी जिंदगी में खूब सारी ग्रीनरी आ जाए। ग्रीनरी ऐसे भी अच्छी है, ग्रीनरी वैसे भी अच्छी है, पॉकेट्स में भी अच्छी है और पॉकेट्स के बाहर भी अच्छी है। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू कि कैसे इस काम की शुरुआत की जाए और कैसे अपनी जिंदगी पॉजिटिव की जाए।
2: इस सैटरडे टोरंटो में तो सिर्फ एक ऑफिस में सेमिनार होगा, क्योंकि मैं कैलगरी और वैंकूवर का ट्रिप हूँ। तो मिस्टर डैनियल सेमिनार करेंगे, आप आए सैटरडे को 1 PM। सारे सॉफ्टवेयर की नो हो आपसे को मिल जाएगी, ताकि आपको नो ऑब्लिगेशन है, नो कॉस्ट है, ताकि इन्फॉर्मेशन सेशन होता है।
1: वंडरफुल, क्या बात है। तो ये सेशन राफी जी बिल्कुल फ्री होता है, विद नो ऑब्लिगेशन, और कोई भी इसको अटेंड कर सकता है, मैं राइट?
2: जी एब्सोल्युटली, नो कॉस्ट है। सिर्फ सीट बुक करें, क्योंकि फायर कोड की वजह से लिमिटेड सीट्स होती हैं। कई दफा तो मैं कहता हूँ गाड़ी में पिकनिक चेयर रख लें, ताकि उसी के काम आ जाएगी। तो आए, सेमिनार सुने, 1 PM होता है, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं।
1: वंडरफुल। अब जब शुरू कर लिया राफी जी, तो उसके बाद इस काम में सक्सेस लेने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए और कितना वक्त होना चाहिए, क्योंकि वक्त ही बड़ा मुश्किल है आजकल।
2: ठीक है, 23 घंटे मार्केट खुली है, किसी भी वक्त करें, हम आपको सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं। तो ये वक्त तो आपके पास 23 घंटे में तो वक्त निकल ही आता है। टाइम कितना सीखने के लगेगा, कुछ लोग 2 हफ्ते में सीख लेते हैं, मैक्सिमम विद इन अ मंथ हमारे ऑफिस में सहेंगे, आपकी पल्स चलती है, आप 18 से ओवर हैं, आप इसको सीख जाएंगे।
1: वंडरफुल।
2: और तीसरा ये है कि मोस्ट लोग घबराते हैं ट्रेडिंग में, इस वजह से कि जी पैसों का नुकसान हो जाएगा। अब ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अपना पैसा लगाने नहीं देती, हमारे पास फंडेड कंपनीज की अपॉर्चुनिटी से यहाँ पाए सुने, तो आपका रिस्क भी नहीं है। सो इट्स अ विन विन केस फॉर एवरीबॉडी।
1: जी, वेरी नाइस। तो दोस्तों, आप तो कन्विंस हो गए होंगे इस बात से जल्द आप कॉल करें इस नंबर पे। ये मैजिकल 10 नंबर के फासलों पर है आपके सामने जीती जागती अपॉर्चुनिटी, जो आपको जिंदगी भर जिता सकती है। winlifetime.com सबसे पहले वेबसाइट, फिर नंबर इज 9052061008 9052061008। राफी जी, एंजॉय योर ट्रिप एंड आई विल टॉक टू यू सून। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू जी, टेक केयर,
1: बाय। Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.

0: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। तमिलनाडु में विजय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में गुरुवार को फिर विवाद हो गया। कांग्रेसी विधायक राजेश कुमार ने शपथ के दौरान कामराज अमर रहें, राजीव गांधी अमर रहें और जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद कहा। इस पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने टोक दिया। गवर्नर ने कहा, यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरा विवाद तमिल गीत बजाने को लेकर भी हुआ। समारोह में तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वाइथू सबसे आखिर में बजाया गया। पिछली सरकारों में ये हमेशा पहले बजाया जाता था। एयर इंडिया की दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट गुरुवार को कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गई। फ्लाइट का पिछला हिस्सा जमीन से टच हो गया। घटना को एविएशन भाषा में टेल स्ट्राइक कहा जाता है। फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया। फ्लाइट में 181 यात्री सवार थे। घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर के घायल होने की सूचना नहीं है। फ्लाइट को हुए नुकसान को लेकर भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। भारत में 25 मई से नौतपा शुरू हो रहे हैं, यानी वो दिन जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन इससे पहले ही तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के बांदा में रिकॉर्ड हुआ। तापमान के लिहाज से आज के दिन को, 20 मई की तारीख को, बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बन गया। बांदा से ज़्यादा तापमान केवल मिस्र के असवान में है, 49.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और सऊदी अरब के अराफात में 48 डिग्री के आसपास। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तापमान वाले टॉप फाइव जो शहर हैं, उनमें खजुराहो जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, ज़िला है, वो चौथे नंबर पर रहा। इधर बलरामपुर में भीषण गर्मी के कारण पढ़ाई के दौरान एक आवासीय विद्यालय में 8 छात्राएं बेहोश हो गईं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र के 16 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान 46 डिग्री से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश 19 मई को जारी किया गया। जानकारी आज सामने आई। सरकार के आदेश के मुताबिक ये नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इंदौर के रंगवासा क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया। यहां पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने और सामाजिक दबाव के चलते एक 13 साल की बच्ची की शादी जबरन 42 साल के युवक से करा दी गई। पुलिस के मुताबिक दूल्हे, उसके परिजन और बच्ची के दादा दादी समेत 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। किसी तरह बच्ची को बचाया गया। ये पूरा मामला एक शर्त और पारिवारिक दबाव के कारण हुआ। बुजुर्ग दादा को अपने 19 साल के पोते के लिए बहू लानी थी। पोते की पत्नी यानी बच्ची की भाभी ने शर्त रखी थी कि वो इस घर में शादी तभी करेगी जब उसकी ननंद की शादी उसके सगे चाचा से, जो कि 42 वर्ष के हैं, उनसे कराई जाएगी। पोते के घर बसाने की इस शर्त को पूरा करने के लिए दादा दादी ने अपनी ही मासूम पोती का सौदा कर दिया। और अब खबर बॉलीवुड से। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का अनकट वर्जन धुरंधर रॉ एंड अनदेखा कल यानी 22 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रहा है। नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। धुरंधर रॉ एंड अनदेखा वर्जन हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये फिल्म पिछले साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उसके बाद 30 जनवरी को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के दूसरे पार्ट में सेना की गोपनीय जानकारियां दिखाने के आरोप पर केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से जांच करने को कहा है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.
2: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232.
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
5: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ.
6: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ.
7: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263. ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ.
8: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
9: वेल दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हम मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3. और व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज़. और क्या आप नहीं चाहेंगे कि इतना खूबसूरत दिन है और आप अपनी बॉडी की, अपनी हेल्थ की चिंता किए बगैर अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें. कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ. जब हेल्थ अच्छी नहीं रहती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ज़िंदगी में. और अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है और बार बार डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ ऐसा लेना है जो आपके सिम्टम्स को सबसाइड ना करे, पूरी तरह से आपको अंदर से ठीक कर दे, जिससे आपको कभी दवा लेने की जरूरत ही ना पड़े, और आपको लगता है ये सुपरफिशियल है, देन नो, इट इज रियल, इट इज अवेलेबल एंड इट इज अवेलेबल राइट हियर राइट नाउ. क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं रिनाउंड नेम ऑफ दिस फील्ड, आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, जो 9 पीढ़ियों के अनुभव के साथ आप तक पहुंचाते हैं जड़ी बूटियों के पीछे का रहस्य. और वो जो जड़ी बूटियां हैं वो आपको पूरी जड़ से ठीक कर देती हैं. गुरुजी नमस्कार एंड वेलकम.
10: नमस्ते नमस्ते बहन जी, बहुत कैसा है बहन जी? मैं
9: बिल्कुल ठीक. गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हूं और अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर. आपका हैप्पी एंड स्माइलिंग अंदाज हमें बड़ा पसंद आता है, क्योंकि आप इतने लोगों को क्योर करते हैं, तो अमेजिंग.
10: सारा सारा भगवान को आशीर्वाद बहन जी.
9: जी
10: जी होता है बहन जी, हम काम करता हूँ दिल से करता हूँ, भगवान को आशीर्वाद से ये काम करता हूँ. ये मेरे को दे दिया था, मेरे को बड़ा लोगों को, मेरे को यंगस्टर को आशीर्वाद है.
9: जी जी.
10: सो इसलिए हमारा कोई भी दवा देता है, ये दवा में दवा होता है, भगवान को आशीर्वाद भी रहता है.
9: क्या बात?
10: कोई भी भगवान है, हम किसको प्रार्थना कर रहा है, ये सारा भगवान को आशीर्वाद हमको चाहिए.
9: सही बात है.
10: समझता बहन जी? वैसा
9: बहुत अच्छी बात आपने करी है गुरुजी.
10: सारा लोगों को क्या होता है, जॉइंट में दर्द हो जाता है और कमर में दर्द हो जाता है, नर्वस को पेन होता है, एसिडिटी हो जाता है, सिर में दर्द होता है, वैसा बहुत बहुत बहुत बीमार, सारा बीमार हम निकल सकता हूँ हेरबल से. ये हेरबल सारा मैं आयुर्वेदिक के वो हेरबल सारा हिमालय से लेकर आके लोगों को इलाज करता हूँ. हमारा शो सुन के बहुत लोग आ गया जी, ये सारा लोग भी ठीक हो गया.
9: ऊपर वेरी गुड गुरुजी. और एक चीज, सबसे पहले आपका नंबर बता दूं दोस्तों. मैजिकल 10 नंबर हैं गुरुजी के, जिनको आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं. 437-438-3399 गुरु जी, लोगों को लगता था कि ये जो आयुर्वेदिक इलाज होते हैं इसमें वक्त लगता है ठीक होने में, लेकिन मुझे तो कई लिसनर्स ने ये भी बताया है कि दैट इट वर्क्स फास्टर देन एलोपैथिक मेडिसिंस. इतनी जल्दी आपका बड़ा फास्ट होता है रिएक्शन, विच इज गुड.
10: यस यस यस, ये क्या होता है, ये सारा हर्बल से बनाता है, हिमालयन हर्बल्स सारा स्पेशलाइज हर्बल से बनाता है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा से जल्दी से काम करता है.
9: अच्छा,
10: लेट नहीं होता है, अच्छा से काम करेगा, जल्दी जल्दी इसको रिजल्ट मिलता है, विद इन वीक में मिलता है.
9: वेरी गुड, क्या बात है गुरु जी. तो कहाँ मुलाकात हो सकती है, कहाँ पर आकर आपसे मिल सकते हैं हमारे लिसनर्स?
10: यस यस यस जी, यस जी, मेरे को दो लोकेशन है, वीकली 3 दिन वो में रहता है, 4 दिन ब्रैम्पटन में रहता है.
9: अच्छा.
10: मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कार्बर में रहता है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन में इधर ब्रैम्पटन साइड में रहता है जी. सो ये सारा लोगों कभी भी आने के पहले एक बार फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आए तो सारा अच्छा हो जाता है, ठीक करता हूँ जी. मेरे को कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, ओनली मेडिसिन को क्या होता है वो भी लेता, ज्यादा नहीं लेता, नॉर्मल रहता है. हम ये सेवा भावन से काम कर रहा है,
9: इसके
10: लिए नहीं है.
9: वेरी गुड. तो दोस्तों, आप स्कार्बरो में हैं या ब्रैम्पटन में हैं, गुरु जी से कहीं भी मिल सकते हैं. व्हेन यू गो, आई एम श्योर यू विल हैव स्ट्रेस ऑन योर फेस, बट वंस यू आर डन यू विल कम बैक अ हैप्पी एंड स्माइलिंग एटीट्यूड के साथ. तो गुरु जी में ये करिश्मा है, आप जाकर जरूर मिलिएगा. 437-438-3399, दैट्स 437-438-3399, आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी. गुरु जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नमस्कार.

0: One-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan
2: दोस्तों, डोंट वरी, मुकेश चौहान हैं और आज मुकेश चौहान जी हमारे साथ इन स्टूडियो हैं और आप हमें लाइव भी देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर. और सबसे पहले मुकेश जी, आपका वेलकम है. हाउ आर यू?
3: ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच शालिनी जी. फाइनली आपने बुला ही लिया हमें. दावत दे दी आपने और हम दावत हमने एक्सेप्ट की. और इट्स रियली प्लेजर टू कम हियर एंड टू सी लाइव.
2: प्लेजर इज ऑल आवर्स मुकेश जी. बड़ा मजा आ रहा है, आपसे भी बात भी हो रही थी. तो मैं सबसे पहले नए लिसनर्स के लिए आपका पूरा इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि हमारे जो नए लोग एवरी मोमेंट एवरी लम्हा हमारे साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को पता हो जाए कि मुकेश चौहान कौन है और कितने हैवी पोर्टफोलियो के साथ आ रहे हैं आपकी रीफाइनेंसिंग करने के लिए, आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट करने के लिए, आपके होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट करने के लिए. आपको नया घर चाहिए, रीसेल में कुछ चाहिए, या आप 55 या ज्यादा आपकी उम्र है, रिवर्स मॉर्गेज आपको चाहिए, आपको डेट कंसोलिडेशन की मदद चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो मुकेश जी वुड बी एबल टू हेल्प यू विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मॉर्गेज, लाइन ऑफ क्रेडिट, पावर ऑफ सेल में आप फंसे हुए हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स आप मिस कर रहे हैं, आपका क्रेडिट खराब है, क्रेडिट पर सवालिया निशान है, डू नॉट वरी, हेल्प इज अवेलेबल. एंड इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, तो आपके लिए अप टू $1 million की वर्किंग कैपिटल का भी इंतजाम हो सकता है. मुकेश चौहान जी, रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट, सालों के एक्सपीरियंस के साथ आए हैं, आप तक पहुंचे हैं अपनी एक्सेप्शनली गुड सर्विसेज लेकर. सबसे पहले नंबर बहुत आसान सा, सीधा सा, 647-512-7000, 647-512-7000. मुकेश जी, आज के सवाल होंगे थोड़े ज्यादा टफ, क्योंकि आप हैं इन पर्सन हमारे साथ.
3: बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन.
2: यू वेलकम, थैंक यू सो मच मुकेश जी. अच्छा, तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर कोई मॉर्गेज पेमेंट्स को मिस कर रहा है मुकेश जी, सो हाउ डू यू हेल्प द होम ओनर और एट द सेम टाइम कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी अगर किसी की हो गई है, और अगर वो पर्सन अपनी मॉर्गेज आपसे लेना चाहे, तो इस कॉम्प्लिकेटेड केस को आप कैसे अनकॉम्प्लिकेट करेंगे?
3: देखिए, पहले तो मैं बहुत ताजुब नहीं हुआ हूँ, बट आई एम रियली सरप्राइज एट द सेम टाइम, राइट? दोनों के एक ही मीनिंग है. सो द थिंग इज दिस, ये सब कोई, हर कोई HST के बारे में बात कर रहा है, बिल्डर रिबेट के बारे में बात कर रहा है, बट आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये टॉपिक छेड़ा. And I am really excited to answer. Yes, you are right. कि जिन लोगों ने पेमेंट मिस करी उनकी मॉर्गेज कैसे होगी, वो अप टू डेट कैसे होंगे, रेगुलर कैसे होंगे. देखिए, सबसे बड़ा पैनिक ही आता है जब भी आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, तो ये मिस पेमेंट है, राइट? बट आप मॉर्गेज मिस करते हैं, इज काइंड ऑफ क्राइम, राइट? तो एग्जैक्टली, तो मैं इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे. आपकी पेमेंट दो पेमेंट मिस है या तीन पेमेंट मिस है, इट इज बिकम वेरी टफ टू बिकम रेगुलर योर मॉर्गेज. आपको कभी कभार बैंक से लेटर भी आ जाता है, नोटिस आ जाता है, इवेंचुअली इट गोज टू पावर ऑफ सेल. इस सिचुएशन से कैसे निकले? देखिए, फॉरन आपके माइंड में आता है कि आपको सेकेंड फाइनेंसिंग चाहिए, पैसे चाहिए. रखें, हर किसी के अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, दिस इज द रीजन ये सिचुएशन आती है. आप इस सूरत में पैसे आपको चाहिए, फंड चाहिए, तो यस, सेकेंड फाइनेंसिंग टफ हो जाती है. बट यस, आई हैव अ सोल्यूशन शालिनी जी इसके लिए. अगर किसी भी होम ओनर ने दो पेमेंट, तीन पेमेंट, चार पेमेंट मिस करी है, आई विल मेक श्योर कि आपको वो मॉर्गेज आपकी अप टू डेट हो जाए.
2: Wow.
3: और साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फंडिंग मिल जाए, 40, 50, 100 grand, अप टू 80% फाइनेंसिंग ऑफ योर प्रॉपर्टी.
2: आई लव इट.
3: सही है, पीरियड. तो पहली बात है, सिचुएशन से बाहर निकलें, ज्यादा मत सोचें. yes. अगर ऑलरेडी मिस कर चुके हैं एक पेमेंट भी, सेकंड चांस मत दे. आई नो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, घर में हेल्थ इश्यूज हैं, बिजनेस स्लो डाउन है आपका, कोई ना कोई एक एप्लीकेंट की जॉब नहीं रही. तो ये सिचुएशन हो सकती है. गिव मी अ कॉल, गिव मी अ शॉट, आई एम हियर टू हेल्प यू. और कंज्यूमर प्रपोजल बैंक्रप्सी बात करी, तो यस, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि number has been increased during last 6 months, 1 year. As we all know, that during the tough time, all the financial crisis has come, especially to the homeowner, Shalini.
2: That's right.
3: So, yes, you have a consumer proposal or bankruptcy already done. You have to get out of it. Mm-hmm. Mortgage refinancing through your consumer proposal bhi pay ho sakti hai, bankruptcy bhi pay ho sakti
2: hai,
3: credit card debts pay ho sakte hai, property tax bill pay ho sakte hai.
2: Mm-hmm.
3: Sare kaam dham aapke possible hai, mortgage refinancing.
2: Oh, wow.
3: Give me a call, give me a shout so I can help you to guide. Every file is different. I am here in Mississauga. मैं अभी Etobicoke में आया हूँ, मगर मैं Mississauga में हूँ और मिल सकता हूँ. Give me a call. Thank you so much.
2: Wonderful. 6475127000 and a big hello once again to our social media fans. अगर आपने अभी हमें join किया है, हमारे साथ in studio हैं mortgage diligence से mortgage broker Mukesh Chauhan जी. और आपसे मेरा दूसरा सवाल है Mukesh जी. Home valuation के बारे में, appraisals के बारे में, आप mortgage refinancing में किस तरह की सपोर्ट दे सकते हैं दोनों चीजों के हवाले से?
3: बिल्कुल, देखें होम वैल्यूएशन के बारे में यही बोलूंगा, अप्रेजल्स के बारे में बोलूंगा. काफी लोगों के घरों की वैल्यू कम आ रही है, राइट? जब कम आती है तो हर होम ओनर पैनिक में आ जाता है कि मुझे, मैं पैसे तो पे कर दूंगा अप्रेजल में, व्हाट इफ द वैल्यू डजंट कम,
2: राइट?
3: अगर शालिनी जी मैं ऐसा बोलूं कि नहीं, आप पहले पेमेंट नहीं कर रहे, आई विल चेक द वैल्यू फॉर यू गाइस.
2: ओह, आई वुड से यस राइट अवे.
3: पहले वैल्यू चेक करें, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है. वंस यू नो व्हाट्स योर होम वैल्यू, देन वी

0: आज मुकेश जी से बात कीजिए और आज पता चल ही जाए कि कितने पानी में हैं आप लोग सब और हम सभी, राइट? 6475127000. अब तीसरा सवाल आपसे, क्योंकि हॉट सीट पे आज आप हैं मुकेश जी. तीसरा सवाल है कि मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग या होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, ये हम होम ओनर्स के लिए, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है होम रेनोवेशन के लिए? आई वुड लव टू मेक
1: डेफिनेटली. इसको बहुत ही आसान बनाते हैं.
0: अच्छा,
1: अगर देखें रिन्यूअल अगले 3 से 6 महीने में आ रहा है, इट्स मीन नो पेनल्टी.
0: अच्छा,
1: तो रीफाइनेंसिंग कीजिए, क्योंकि रीफाइनेंसिंग में आप अगर एक्स्ट्रा फंडिंग में लेते हैं, घर से एक्विटी निकालते हैं, तो वो मॉर्गेज रेट पे आपको वो एक्विटी की जो मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी, विच इज 4-4.5% और बिलो 5%. और अगर आपकी रिन्यूअल नेक्स्ट ईयर है या 2 साल के बाद है और आपकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है, तो आप साइड में लाइन ऑफ क्रेडिट अप्लाई करें, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट. होम एक्विटी अपने बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं, मगर आपके लो इनकम है, लो क्रेडिट है, आपकी लिमिटेड इनकम है, तो मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें. आई विल मेक श्योर कि आप बेस्ड ऑन योर इनकम एंड क्रेडिट और बेस्ड ऑन योर एक्विटी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगी. इसके लिए आपका ब्रूस क्रेडिट है, लो क्रेडिट है, या लो इनकम है, या आपकी जॉब जा चुकी है, या लेड ऑफ है, इनकम इश्यूज हैं, फिर भी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दिलाने में हेल्प करूंगा. बैंक इज नॉट ओनली द ऑप्शन, बैंक के अलावा भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बेस्ड ऑन द एक्विटी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल सकती है. तो रीफाइनेंसिंग एक अलग चीज है और आपको होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट अलग चीज है. फिर भी समझ नहीं आए तो गिव मी अ कॉल.
0: ग्रेट. 6475127000. और अब मुकेश जी, अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सो व्हाट्स योर एडवाइस? किसी के पास ऑलरेडी बिजनेस है, देन व्हाट्स योर एडवाइस? एंड देन अगर चलते हुए बिजनेस में थोड़ी सी फ्यूल की कमी आ गई है, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है, फंड्स की कमी है, वर्किंग कैपिटल की कमी है, सो हाउ कैन यू हेल्प?
1: बिल्कुल, 3 सवाल, 3 जवाब बहुत ही मैं दूंगा आराम से और बहुत आपको एक अल्फाज में दूंगा. मॉर्गेज आपका नया है, नहीं समझ में आ रहा, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कितनी डाउन पेमेंट करनी, ये बहुत क्वेश्चन आता है शामी जी.
0: जी, जी,
1: तो
0: जी.
1: आपको रेंटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करनी, 35% डाउन पेमेंट चाहिए. ऑनर ऑक्यूपाइड करनी है तो आपको एनीथिंग फ्रॉम 10% to 20% डाउन पेमेंट, पहली बात. दूसरी बात है, अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए चाहिए, यस, आपको एक लोन कहलाता है CSBF, कैनेडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग लॉ, इज बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा. $500,000 आपको मिल सकता है, मगर आप रियल स्टेट के साथ हैं, रियल स्टेट प्रॉपर्टी बाई की है, जमीन बाई की है आपने, तो आपको लोन ज्यादा मिल सकता है, $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000. सो गिव मी अ कॉल. आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस की कोई इंक्वायरी है, अगेन वंस अगेन आई मीन मिसेस आगा, मगर कॉल टेक्स्ट पे मैं कहीं पर भी आपको आंसर कर सकता हूँ. एनी टाइम विद इन 2 आवर्स आई विल गेट बैक टू यू गाइस. शालिनी जी, मैं तो सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ. आपने मुझे बुलाया, इज रियली एक्साइटिंग. आपकी टीम बहुत बढ़िया है, अमेजिंग टू सी गाइस, आई एम वेरी सपोर्टिव.
0: थैंक यू.
1: एंड वंस अगेन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम अगेन.
0: एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम मुकेश जी. एंड बस आपसे बातचीत करके तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, और बड़ा मजा आ रहा है बात करके. दिल करता है बात करते जाए, लेकिन ये कमबख्त जो सुई है वो आगे बढ़ती रहती है, कभी कभी वक्त इजाजत भी नहीं देता, लेकिन जितना भी वक्त आप देते हैं वो अपने आप में पूरी तरह से फ्रूटफुल होता है.
1: एंड
0: वी सिंपली एंजॉयड इट. आपका नंबर फिर से बता दूं, 6475127000, 6475127000. मुकेश शाहन. मुकेश जी, मेनी थैंक्स टू यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट.
1: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू जी. एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं, और टॉपिक आज का वही है फिर से कि किस तरह के लोग और किस तरह के हैबिट्स आपको समझ नहीं आते. पसंद ना आना और ना पसंद करना ये बात नहीं, और पसंद करना क्या समझ नहीं आता, ये आपसे सवाल है. $100 का गिफ्ट आज निकालेंगे बिफोर एंड ऑफ द शो. आप सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3 पर. स्टे ट्यून्ड.
2: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
3: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी.
4: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है.
3: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड.
4: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
3: दोस्तों वेलकम करते हैं एक बार फिर से और अब मस्ती की रेलगाड़ी को लिए चलते हैं. स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं कुछ अमेजिंग डील्स. हमारे साथ राजन जी जुड़े हैं. आज थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा है उनकी आवाज में क्योंकि मौसम इतना आज तरोताजा है, इतना ब्राइट एंड शाइनी है. लेट्स हियर इट व्हाट राजन जी हैज फॉर अस. राजन जी गुड आफ्टरनून.
4: गुड आफ्टरनून शानू जी, थैंक यू सो मच. और मस्ती की रेलगाड़ी के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून.
3: जी थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए राजन जी. तो आपकी किटी में कौन कौन से स्पेशल ऑफर्स हैं क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो आई थिंक आप उसको ज्यादा वार्म अप कर देते हैं ऑफर्स को, तो बताइए.
4: बिल्कुल जी बिल्कुल. सबसे पहले सभी लिसनर्स को शाली जी एक बार फिर से, आज थर्सडे है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट होने चाहिए.
3: अच्छा ठीक है.
4: विदाउट परचेजी हम अपने लिसनर्स को गिफ्ट देंगे पहले दो लिसनर्स को. तो जो भी हमारी डील्स ध्यान से सुने, क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर करेंगे जी, पहले दो लिसनर्स को एक बढ़िया से स्केचर्स के पोलराइज सनग्लासेस गिफ्ट मिलेंगे विदाउट एनी परचेज.
3: अरे वाह. तो चलिए मैं फिर बता देती हूँ दोस्तों, शुरू हो जाइए अपने फोन्स लेकर और कॉल तब कीजिएगा जब आपको आंसर पता हो. अब राजन जी की बात ध्यान से सुनिए, इसी में छुपा होगा सवाल का जवाब. और फिर जैसे राजन जी की बात खत्म होगी हम आपसे सवाल पूछेंगे. लाइन्स आर ओपन नाउ 416-593-0055. जी राजन जी.
4: सबसे पहले मैं बताते चले कि शालिनी जी गर्मी बहुत आ गई है, हीट आ चुकी है, सन बहुत ब्राइट है, अपनी आईज को प्रोटेक्ट करें सनग्लासेस के साथ. तो सभी ही ब्रांडेड सनग्लासेस हमने सेल के ऊपर लगाई हैं. आपको गुची के चाहिए, पराडा के चाहिए, डॉल्ची कबाना के, टिफनी के, टॉम फोर्ड के या फिर ब्लेंसियागा के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस और ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर आपको दोस्तों आज फ्लैट 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे ही जिनको रेबन के फ्रेम चाहिए, अरमानी के या फिर कोच के, माइकल कोच के, केज स्पेड के या फिर मार्क जेकब के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स के ऊपर आपको आज दोस्तों फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है. और अगर किसी ने ब्रांडेड सनग्लासेस लेनी है तो अरमानी के, माइकल कोच के, कोच के, केज स्पेड के, मार्क जेकब के, ये सनग्लासेस भी आपको आज दोस्तों फ्लैट 50% ऑफ दिए जा रहे हैं जी.
3: क्या बात है.
4: और सबसे बढ़िया डील, आपको टॉम हिल फिगर के फ्रेम्स या सनग्लासेस ले लें आप, या फिर कैल्विन क्लाइन के फ्रेम या सनग्लासेस, या फिर सैंडी के फ्रेम, या फिर वैलेंटिनो के फ्रेम्स, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स एंड सनग्लासेस आपको आज फ्लैट 75% ऑफ दिए जा रहे हैं.
3: नाइस.
4: तो दिस इज द बिगेस्ट डील.
3: ब्यूटीफुल.
4: और साथ के साथ जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है जी, डॉक्टर हमारे पास आज हमारी दोनों लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल हैं. आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं 905-460-8888, 905-460-8888. और शालिनी जी एक हमारा वैल्यू पैकेज है जी. ये वैल्यू पैकेज हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे लिसनर्स होते हैं जिनके पास या तो बेनिफिट्स होते नहीं है या बहुत कम बेनिफिट्स होते हैं, जैसे 150. तो उनको होता है कि यार 150 में कहां पे ग्लासेस बनेंगे, तो वो उनके बेनिफिट्स वेस्ट हो जाते हैं. तो उनके लिए स्पेशली ये वैल्यू पैकेज है. तो दोस्तों वैल्यू पैकेज में सबसे पहले बता दूं कि फ्रेम्स की कमी नहीं, कोई 10-20-50 फ्रेम नहीं, 800 फ्रेम डिस्प्ले के ऊपर लगे हुए हैं. आप इनमें से कोई भी फ्रेम चूज करें और ये ब्रांडेड फ्रेम है. इसमें रूट्स के, लिवाइस के, रैंगलर के, वैन हिल्सन के, एडी बावर के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स शामिल है जी.
3: अच्छा.
4: आप कोई भी फ्रेम चूज कर लें, $300 की कीमत था एक तो फ्रेम इसमें एडेड है जी वैली पैकेज में, और $100 के आपके सिंगल विजन लेंसेज ये भी एडेड है. सो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज है जो कि हम अपने लेसन्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं जी.
3: ओह नाइस, क्या बात है.
4: और इतना ही नहीं, आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड कराएं, सभी के सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ दी जा रही हैं जी.
3: ब्यूटीफुल.
4: और अगर किसी ने दो पैर बनवाने की एक घर पे हो और एक ऑफिस में, तो पहले पैर के ऊपर कोटिंग 50% ऑफ है जी, और दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री है।
3: ओह वाओ, लुक एट दैट।
4: तो ये ऐसे अगर किसी ने प्रोग्रेसिव ग्लासेस भी लेने हैं तो एसयूएल कंपनी के डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं जी, $300 की कीमत के लेंसेज और 300 का फ्रेम, जैसे पहले बताया था 600 का पैकेज सिर्फ $258 में जी। और अगेन इसमें भी आप कोटिंग डलवाएं, पहले पैर के ऊपर कोटिंग 50% ऑफ और दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री है।
3: अरे वाह।
4: तो दोस्तों ये डील्स लेनी है तो पहुंच जाएं जी स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव बेंटन में, 410 एंड स्टील्स का लें, या कैनेडी एंड स्टील्स के इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा, और नंबर हमारा है जी 905-460-8888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स है बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस।
3: ठीक है,
4: तो एक ही नंबर 905-460-8888, 905-460-8888। और अब बारी है जी गिफ्ट की।
3: बिल्कुल, और स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, लाइन्स आर ओपन नाउ। जो लोग अभी कॉल कर रहे थे आप लोग वापस कॉल कर सकते हैं नाउ, द लाइन्स आर ओपन अगेन, और आप लोगों से करेंगे बातचीत और देखते हैं आपका सही जवाब है कि नहीं। राजन जी इज गोइंग टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, 416-593-0055। जी राजन जी,
4: तो बताने आपने कि जो टॉमी हिल फिगर के फ्रेम्स एंड सनग्लासेस है उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मैंने अनाउंस किया जी?
3: क्या बात है। तो अभी राजन जी ने जो अनाउंस किया है टॉमी हिल फिगर के फ्रेम्स, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट अनाउंस किया है, ये है आप लोगों के लिए सवाल। और लाइन्स ओपन है दोस्तों, बिल्कुल फ्री आपको स्केचेस के पोलोराइड सनग्लासेस दिए जाएंगे। हमारे जी दोबारा करिएगा कॉल जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं एंड लाइन 2, गो अहेड प्लीज, वेलकम जी, वेलकम, आप ऑन एयर हैं, बताइए जी, एंड आपका स्वागत है, लास्ट 4 डिजिट्स 8389, गो अहेड प्लीज।
5: बड़ी इम्पोर्टेंट, एक बड़ी मजेदार न्यूज है
3: जी, बताइए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं 8912, लास्ट 4 डिजिट्स 8912, बताइए, वेलकम, लास्ट 4 डिजिट्स 8912, आप ऑन एयर हैं।
6: यस यस,
3: बताइए।
6: ओके, इट्स 50% ऑफ।
3: अच्छा, आपका नाम?
6: दीप्ति।
3: दीप्ति,
6: हाँ जी
3: जी, लास्ट 4 डिजिट्स 8912, और आपने कहा 50% ऑफ। ठीक है दीप्ति, वी विल टेल यू इफ यू आर द विनर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम मूव ऑन करते हैं जी अगले कॉलर की तरफ। एंड नबीला आप दोबारा कॉल कीजिएगा, आपका कॉल ड्रॉप हो गया है, और नेक्स्ट कॉलर पे चलते हैं। 1509, यू आर ऑन एयर, गो अहेड प्लीज।
6: आपने कहा 50%
3: जी, अब रेडियो बंद कर दें प्लीज,
6: यू आर द विनर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
3: 1509 रेडियो बंद करें प्लीज, गो अहेड
6: की तरफ। एंड
3: आपका फोन हम दोबारा, आप जब रेडियो बंद करेंगे फिर यू कैन गो ऑन एयर। और मोहसिन रजा साहब आप ऑन एयर जा रहे हैं, आप नेक्स्ट कॉलर, गो अहेड प्लीज।
7: जी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
3: गुड आफ्टरनून,
7: 75% बोला था इन्होंने।
3: आपने 75%, ठीक है, ओके जी मोहसिन जी, थैंक यू सो मच, विल टेल यू इफ यू आर द विनर। नेक्स्ट कॉलर लकी हमारे सामने नाम आ रहा है स्क्रीन पर, लकी यू आर ऑन एयर, गो अहेड प्लीज।
8: हाय हाउ आर यू टुडे?
3: गुड, हाउ आर यू?
8: गुड गुड, इट्स 70%।
3: 70% lucky, we'll see if you are the lucky one or not. Thank you so much for joining us. And the next caller on air, 8389, go ahead please.
9: It's a 75% off.
3: And what's your name?
9: Hello,
3: aapka naam?
9: Anshul.
3: Anshul, and you said 75% off, all right.
9: Yes.
3: And we'll take the last caller, thank you so much Anshul. Last caller for today, वक्त ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। 1509 आप ऑन एयर हैं, गो अहेड प्लीज।
10: हेलो शालिनी जी, कैसे हो? इट्स 75% ऑफ ऑन टॉमीज ग्लासेस।
3: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कौन बात कर रहे हैं?
10: राजेश ब्रह्मभट्ट।
3: राजेश जी, जी राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर joining us. और बस अब हम विनर्स के नाम अनाउंस करते हैं. जी राजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पेक्स एक्सप्रेस से, और 905-460-8888 है नंबर स्पेक्स एक्सप्रेस का. जो भी विनर्स हैं इस नंबर पे कॉल कीजिएगा अपने यू नो गिफ्ट लेने के लिए, 905-460-8888. राजन जी अब बताइए सही जवाब क्या है.
4: सही जवाब है जी 75%. तो मेरे ख्याल से तीन जनों ने, राजेश जी और एक अंजुल जी और एक मोहम्मद जी, तीन जनों ने जी मौसिन सही जवाब दी. मौसिन जी, हाँ जी.
3: तो मोहसिन रजा जी आपने कहा 75, अंशुल जी ने कहा 75, राजेश जी ने कहा 75. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल थ्री ऑफ यू आर द विनर, एम आई राइट?
4: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, यही तीन विनर.
3: तो आप तीनों कॉल कर सकते हैं स्पेक्स एक्सप्रेस में, राजन जी से बात कीजिए एंड क्लेम योर गिफ्ट्स. 905-460-8888. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड राजन जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे.
4: थैंक यू सो मच शाली जी. आप इनके नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे?
3: जरूर, डेफिनेटली.
4: थैंक यू सो मच.
3: जरूर, थैंक यू सो मच. आप जुड़े रहिएगा शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3. चलते हैं सुपर डुपर हिट गाने की तरफ. आवाज है उषा उत्तप की.

0: रंबा हो करते हुए चलते हैं अब मिडा फर्नीचर गैलरी की तरफ। पवन मिड्ढा जी तैयार हैं आज के दूसरे सेट ऑफ स्पेशल्स के साथ। पवन जी वेलकम बैक।
1: थैंक यू वेरी मच जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिडा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर। चार लोकेशन आज तो सॉरी पांच लोकेशन हो गई जी, अब तो लंदन वाली जी। थैंक यू। उसकी तो आपने लंदन में जो बहन भाई इधर सुन रहे हैं या उनके कोई यार दोस्त मित्र सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी जो भी कोई बंदा इधर रहता है उनको बताएं कि कल से वो हमारे स्टोर को विजिट कर सकते हैं। जो कहते हैं ना स्नीक पीक, जो है अगर वो पहले आके देख सकते हैं क्या क्या नया सामान लग रहा है। ग्रैंड ओपनिंग तो हम 30 मई की डेट आज डिसाइड हो गई है, तो 30 मई को ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। मैंने पिछले लिंक में बताया था हर ग्रैंड ओपनिंग 3 वाइड करेंगे, चार पांचों लोकेशन पे होगी और प्राइसेस भी कम होंगी। हर परचेज के साथ गिफ्ट दिया जाएगा, गिफ्ट भी दिल से तोहफा दिया जा रहा है। एशले फर्नीचर की रग होगी, मतलब जो कारपेट होगा 5x8 का, एशले फर्नीचर की पिक्चर होगी कम से कम जो 4x2.5 फीट लंबी बड़े वाली पिक्चर होगी, और एशले फर्नीचर की ही आपको जो जो लैंप होगा, जो भी हमने रखा है और दिल से आपको तोहफा देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जो आपके छोटों के स्नेह से, बड़ों के प्यार और आशीर्वाद से ही तो हमें ये सारा बिजनेस आप देते हैं, तभी ये लोकेशन से 5 पे पहुंचे हैं। रही बात इस वीक की, तो आपको वही वाली जो ग्रैंड ओपन, क्योंकि वो तो बुरा लगेगा ना कि अगर एक हफ्ते बाद कोई चीज और सस्ती कर देंगे, तो जब आप स्टोर पे आएंगे तो आपको ग्रैंड ओपनिंग डील आज से ही दी जाएंगी, ताकि फर्स्ट कम, कई बार क्या होता है क्वांटिटी बहुत कम होती है तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मिड टू हाई एंड फर्नीचर जो है मैट्रेस की पहली बार जो है आपको, वैसे जो मैट्रेस हाई एंड मैट्रेस बड़े स्टोर बेचते हैं वो देते हैं, वो दे रहे थे, लेकिन साउथ एशियन कम्युनिटी का पहला स्टोर होगा और जो आपको 120 दिन की मैट्रेस ट्रायल गारंटी देगा।
0: अच्छा।
1: 120 दिन कोई मैट्रेस भी, 120 दिन की ट्रायल गारंटी। लेकिन एक नेक्टर कंपनी है यूएस से, आई थिंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो मैट्रेस बेचती है, 365 डेज ट्रायल आपको देने जा रहे हैं। अगर आपको मैट्रेस लगता है कि वो आपको पसंद नहीं आई, तो यू कैन एक्सचेंज विद आपके कंफर्ट के हिसाब से जो आप ले सकते हैं। वो मेमोरी फोम भी लाते हैं, लेटेक्स फोम भी लाते हैं, हाइब्रिड वाली जो पॉकेट कॉयल और लेटेक्स फोम आते हैं, बहुत कुछ नया नया है।
0: वेरी नाइस।
1: सारे बेडरूम सेट हमारे पास नए आए हैं और कैनेडियन मेड सेक्शनल जो सबसे बड़ा जो धमाका है, 120x80 का कलर च्वाइस के साथ आपको 1199 का गिफ्ट भी उसके साथ, चाहे आप रग चूज कर लें या वॉल आर्ट चूज कर लें या लैंप चूज कर लें, वो भी वर्थ ऑफ 299 का, उसकी रिटेल प्राइस 250 से 299 की वर्थ होगी। तो ये आपको मिलेगा मिड्डा फर्नीचर पे, तो आप एक बार आए तो सही, अजमाएं तो सही, अपना बनाएं तो सही, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आना है मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 थैंक यू वेरी मच जी।
0: 416-901-2810 दैट्स 416-901-2810 पर दोस्तों राइट अवे कॉल कर लीजिए टू गेट दीज स्पेशल स्पेशल ऑफर्स। थैंक यू सो मच पवन जी फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
1: थैंक यू जी।
0: जी दोस्तों आप हैं CMRFM 101.3 पर, एक प्यारा सा गीत आपकी नजर करते हैं और अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बहुत जल्दी, स्टे ट्यून्ड।

0: वेल दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, हमारे साथ अब यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक से जुड़ने जा रहे हैं नागपाल जी। बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। आपको पढ़ने के लिए जो सरकार है आपके स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही है, साथ ही रहने के लिए हर साल लगभग 30,000 से 100,000 तक की फंडिंग दे रही है। बड़ा हिस्सा नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स का होता है। PR, सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन, न्यू कमर है, फैमिली इनकम 70,000 से कम है, तो घर बैठे आराम से आसान से कोर्सेज कर सकते हैं, फंडिंग का भी फायदा उठा सकते हैं। और कॉल कीजिएगा 437-264-3175। नागपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं नागपाल जी?
1: थैंक यू वेरी मच, सभी ठीक है जी, आप बताइए।
0: ऑल वेल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो
1: जी,
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी नागपाल जी कि यूनी ग्लोबल एडवाइजरी को ये गवर्नमेंट फंडेड कोर्सेज और लिविंग एक्सपेंसेस ग्रांट की एजुकेशन कंसल्टिंग का जो ये काम है, इसमें कितना वक्त हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं?
1: हमें 7 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं जी।
0: वाओ,
1: जब काम शुरू करा था बाल काले थे, आज सफेद हो गए करते करते
0: इतनी जल्दी?
1: हाँ, जल्दी सफेद हो गए क्योंकि खपाई ज्यादा है ना दिमाग की। आज अभी हमने पानी का ऑर्डर करा है, पानी के बॉटल्स का।
0: हाँ,
1: हमारे 3 क्रेट 2 हफ्ते में खत्म हो गए पानी वाले।
0: अच्छा,
1: अभी 3 और आए हैं।
0: तो हमें
1: वहीं पर से इतने लोगों से मिलना पड़ता है एवरीडे।
0: जी जी।
1: एंड देन जो हमने ये भी नोटिस करा है कि 88% स्ट्राइक रेट है हमारा।
0: क्या बात।
1: अगर 100 क्लाइंट ऑफिस आ रहे हैं, 88 डेटे में जाते हैं जी।
0: इंटरेस्टिंग।
1: तो गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स करें, 30,000 से 100,000 की फंडिंग को हासिल करें अपने अकाउंट में। गवर्नमेंट से आसान से कोर्सेज है जी, अकाउंटिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन है, कितने क्लाइंट्स घर के कंफर्ट से कर रहे हैं
0: जी।
1: 7 ईयर से बिजनेस में बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, सब फंडिंग हासिल कर चुके हैं। पिछले हफ्ते भी 30 से 35 लोगों ने फंडिंग हासिल कर ली है अपने अकाउंट में ट्रेड गवर्नमेंट।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और फंडिंग की कोई रेंज आप बता सकते हैं विद एग्जाम्पल?
1: हाँ जी, आप अगर फैमिली ऑफ 5 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं इस केस के अंदर, आसान से कोर्स करते हैं फुली ऑनलाइन वाले, तो उनको अप टू 100,000 की फंडिंग बनती है, जिसमें से मजे की बात क्या है, $50,000 तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है, जो रेस्ट 50,000 है वो ऑप्शनल लोन है 0% पे, एक साल तक 0% है।
0: अच्छा।
1: और अपने उसके 6 महीने बाद, मतलब आज से 1.5 साल बाद पे करना स्टार्ट करना है, तब इंटरेस्ट रेट क्या है, 2.5% पूरे साल का, मतलब 50,000 का ब्याज महीने का सिर्फ $45 बनेगा 10 साल के लिए ब्याज। मतलब ऐसा लोन बिना क्रेडिट चेक के, नो एज लिमिट, 40, 50, 60, 70 साल आपकी उम्र है, पेंशन पे है, एलिजिबल है, क्रेडिट चेक इसमें होता नहीं है, सारी फंडिंग कोलैटरल सिक्योरिटी फ्री होती है जी। ये नहीं आप बोलोगे हमारा घर होना चाहिए, भाई घर क्यों चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। जितनी कम इनकम है, सही कह रहा हूँ मैं, झूठी बोल रहा हूँ, जितनी कम इनकम है उतनी ज्यादा फंडिंग आती थी। कागज का हैंकी पैंकी कोई कारीगरी है ही नहीं।
0: इंटरेस्टिंग। तो नागपाल जी, इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि मतलब, और ये भी बता दें कि किन किन लोगों के लिए सूटेबल है ये?
1: हाँ जी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड, और मतलब अगर आपका ऐसा प्रोफाइल है, सिंगल मदर, आपको अच्छा बेनिफिट है इसका। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं, मेरी फुल टाइम जॉब है $50,000 की, बेगम की भी इतनी $50,000, तो वो सूट नहीं करेगा ये। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट कम है 2024 का कह रहा हूँ मैं, क्यों? अभी एकेडमिक सेशन चल रहा है 25-26, 24 का नोटिस ऑफ असेसमेंट में देखा जाता है NOA, तो आप इसके एलिजिबल हैं। कॉल करें, ऑफिस आए, स्किल हासिल करें, फंडिंग हासिल करें, मेरे नहीं अपने अकाउंट में।
0: बिल्कुल। और अब ये बताएं नागपाल जी, जिन लोगों को डाउट होता है कि सरकार ये फंडिंग क्यों दे रही है एजुकेशन के लिए, कोई कैच तो नहीं है, देन व्हाट वुड यू से अबाउट इट?
1: बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब गवर्नमेंट $965 मिलियन लगा देती है जेंडर इक्वालिटी के प्रोजेक्ट्स में आउटसाइड कनाडा, इनसाइड की बात नहीं करूंगा मैं, आउटसाइड, अफगान में एक यूनिवर्सिटी है अफगानिस्तान में, एशियन यूनिवर्सिटी, उसको $5 मिलियन दे दिया, जब वहां पे बैठे बैठे $965 मिलियन लग जाता है, कनाडा में $965 मिलियन से भी कम का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, उतना नहीं लग सकता। रिफ्यूजी से $1 बिलियन हेल्थ केयर में लग जाता है, एजुकेशन में नहीं लग सकता, कोई कैच नहीं है जी, कोई नंबर की हेरा फेरी भी नहीं है, सिंपल सा गवर्नमेंट का कैलकुलेटर है, कॉल करें, असेसमेंट कराए, सूट करें तो ऑफिस आए, क्योंकि सिर्फ 3 बैच रह गए हैं, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 1 अगस्त के बाद लोन वर्ड यूज होगा मेरे से, फिर से आऊंगा आपको मैसेज दे रहे कि लोन, अभी ग्रांट्स नॉन रिफंडेबल, तो अभी इनरोल करें, इतने लोग ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और भी बेनिफिट लें
0: जी। और लास्ट में बता दें क्विकली नागपाल जी, फीस कितनी है और कैसे पूरा प्रोसेस काम करेगा?
1: हाँ जी, आपने आज एनरोल करा, विद इन 30 to 90 days आपके अकाउंट में फंडिंग आ जाती है. डॉक्यूमेंट्स पे क्या लगते हैं? एनयूए, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों की, क्योंकि फैमिली साइज पर फंडिंग डिपेंड करती है. बच्चे ज्यादा है तो हुकूमत आपको तालीम हासिल करने के लिए, आपको बच्चों को नहीं, आपको हासिल करने की तालीम के लिए ज्यादा फंडिंग आपके अकाउंट में देती है. अगर आपकी इनकम कम है तो और ज्यादा फंडिंग आती है. और इसमें हमारी फीस काम होने के बाद आपके अकाउंट फंड, आपके अकाउंट में फंडिंग जब गवर्नमेंट से सीधे आ जाती है, तब हमारी फीस का बात आती है. 199 या 499, दो फीस होती है हमारी डिपेंडिंग ऑन कोर्स, एक इजी और एक बहुत इजी है. तो इसमें काम होने के बाद फीस देनी, हमने कुछ कैच रखा ही नहीं एंड टू एंड. हम तो कह रहे हैं हमारा नुकसान हो जाए, आपका ना हो, अब फीस हमने बाद में देनी है. और लोग वो भी कभी कभी हमारी फीस मर जाती है कभी कभी, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें बड़ी चीज देखना है, छोटा चीजें देखने हमने. तो आप हमें कॉल करें, असेसमेंट कराएं, कोई हमने कैच एंड टू एंड रखा ही नहीं, बहुत तो हेल्प कर चुके हैं.
0: 437, मैं बता दूं आपका नंबर फिर से, 437-264-3175, 437-264-3175, 218 एक्सपोर्ट बुलेवार्ड मिसिसागा में है लोकेटेड. थैंक यू सो मच नागपाल जी, फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.
1: थैंक
0: यू. चलिए दोस्तों, इसी के साथ शालिनी इजाजत मांगती है, कल होगी फिर से मुलाकात 2 से 4, और शो के बाद नंबर 416-569-7812, 416-569-7812. नमस्कार.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के साथ
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम आपके दोस्त जतीन। मित्र भाइयों, कभी कभी लोग पूछते हैं मेरी खुशी का राज क्या है। मैं बस मुस्कुराकर कह देता हूँ कि उदास रहने की अब मेरी उम्र नहीं रही। हाँ जी मित्र भाइयों, गमों की धूप में ठंडी सी एक फुहार है खुशी, बिना मौसम के जो आए वही बहार है खुशी। ढूंढते हैं लोग इसे मंदिर और मस्जिदों में, मगर दोस्तों के साथ बैठो तो बेशुमार है खुशी। हाँ जी मित्र भाइयों, जहां से भी खुशियां मिले बस लेते जाइए और दूसरों को खुशियां देते जाइए। ये हिड वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: वक्त जो है वो बदल चुका था. रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था. ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं. और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया. एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545.
7: बिनर भाइयों, टोरंटो में हर किसी की नजर वेदर नेटवर्क और गैस प्राइस पर रहती है. और लीजिए, गैस प्राइस फ्राइडे 8 सेंट कम होने वाली है. खुश हो गए ना? हाँ जी, जश्न की तैयारी करो. टोरंटो में सबकी लॉटरी लगने वाली है. जो गैस प्राइस फिल करवाने जाएगा, फ्राइडे 8 सेंट्स कम देने पड़ेंगे. वाह, कनाडा तो ऐसी खुशियों के लिए ही तो हम आए थे. आप सोचेंगे खुशखबरी है, यानी कि टैक्स माफ कर दिया गया. क्या पीआर सभी को दे दिया? क्या सभी की वर्क परमिट एक्सटेंड कर दी? अरे नहीं भाई, नहीं. बस खुशखबरी यही है कि पीआर हो या ना हो, सिटीजन हो या ना हो, सभी को गैस प्राइस एक जैसी मिलेगी. यानी कि फ्राइडे 8 सेंट कम होने वाली है गैस प्राइस. सीधे 181.82 सेंट प्रति लीटर गैस प्राइस हो जाएगी. खुशियों से झूम उठिए, पिज्जा ऑर्डर करे, टीम होटल से कॉफी मंगवा ले. बिंद्र भाइयों, अब तो गैस प्राइस भी इस तरह से ऊपर नीचे होती है जैसा हमारा ब्रीदिंग पैटर्न. हमारी सांस भी ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए गैस प्राइस भी शायद सांसों की तरह अब काम करने लगी है. आपको बता दे कि 50 लीटर का फुल टैंक करवाएंगे तो सीधा $4 बच जाएगा. यानी कि पिज्जा की एक स्लाइस तो जरूर आ जाएगी. बिंद्र भाइयों, ऐतिहासिक गिरावट की खुशी में नौकरी मत छोड़ देना, क्योंकि गैस प्राइस 2 दिन के बाद फिर ऊपर जा सकती है. पिछले हफ्ते जब 10 सेंट तक गैस प्राइस बढ़ी, तब तो ऐसे लोग रो रहे थे जैसे गैस स्टेशन वाले हमारी किडनी मांग रहे हो. लेकिन रात 10 बजे के बाद इतनी लंबी कतारें देखी गई गैस स्टेशन पर, इतनी लंबी कतारें कि लगता था कि ये कतार सीधी एयरपोर्ट तक पहुंचेगी. बिंद्र भाइयों, कतार जहां पर लगती है वहां पर एक खुमचा लगा दिया पानीपुरी का, तो पानीपुरी बेस्ट सेलर में आ सकती है. हाँ जी, गैस प्राइस नीचे जा रही है, ये ही बहुत बड़ी बात है बिंद्र भाइयों. लेकिन एक बात सोचिए कि गैस भरवाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़े. तो इस देश में आकर हमने किया तो क्या किया? जो भी किया, महंगाई ने किया है ना. ये वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन. दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर.

0: டாக்டர் நீல் கஜ்ஜர் அசோசியேட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ் ஃபேமிலி டென்டிஸ்ட் கேரிங் ஃபார் ஆல் யோர் டென்டல் நீட்ஸ் எக்ஸெப்ட் கர் ரே ஹே பேஷன்ஸ் ஜின் கே பாஸ் CDCP யானி கி கனேடியன் டென்டல் கேர் பிளான் ஹே அகர் ஆப்னே யே பிளான் ரிசீவ் நஹி கியா ஹே ஆர் ஆப் எலிஜிபிள் ஹே தோ இஸ் பிளான் மே என்ரோல் ஹோனே கே லியே விசிட் கரே CDCP வெப்சைட் CDCP கி வெப்சைட் விசிட் கர்கே என்ரோல் ஹோ ஜாயியே और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का. बेंद्र भाइयों आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आपके फैमिली डेंटिस्ट.
1: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare Mumbai. MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
5: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232
6: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
7: Ye time hai for expert service at your local Toyota dealer.
6: One easy stop for oil changes, brake checks and tire swaps. Book your appointment today. Kyunki ye safar hone wala hai toofani.
8: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई और ले जाना है तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस.
9: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. आइए करते हैं सेहत की बात. मित्र भाइयों, कई लोग सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं. नींबू पानी को अक्सर हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक माना जाता है. वेट कम करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए और स्किन ग्लो जैसे फायदों के कारण लोग इसे खाली पेट पीने लगे हैं. इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं. लेकिन कुछ रिसर्च और एक्सपर्ट्स की माने तो रोजाना खाली पेट नींबू पानी पीना नुकसानदायक भी हो सकता है. दरअसल नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसका पीएच लेवल काफी कम होता है. ये अल्कलाइन प्रकृति वाला है जो लंबे समय तक सेवन करने पर शरीर के पीएच बैलेंस, दांत और हमारे पाचन तंत्र पर असर कर सकता है. इसलिए नींबू पानी पीना अच्छा है लेकिन सोच समझ कर साइंटिफिकली पीना चाहिए. रोजाना खाली पेट नींबू पानी पीने से सबसे पहले असर आपके दांतों पर दिखता है. नींबू में मौजूदा एसिड दांतों की एनमल को धीरे धीरे घिस देता है जिससे दांतों में पीलापन, सेंसिटिविटी और दर्द महसूस हो सकता है. तो सवाल ये उठता है कि नींबू पानी पीने का सही तरीका क्या है.
0: बेंदर भाइयों, रिसर्च कहती है कि हफ्ते में 2 या 3 बार नींबू पानी पीना पर्याप्त है, लेकिन खाली पेट नहीं, साथ ही इसे हमेशा डाइल्यूट करके ही पीना चाहिए। 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास पानी में मिलाकर पिए। अगर आप इसे सुबह लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि नाश्ते के बाद या मिड मॉर्निंग में ले। यह आदत आपके पेट और दांतों को सुरक्षा देगी। इसलिए रिसर्च कहती है कि नींबू पानी को हमेशा अच्छे से डाइल्यूट करके पिए। पीने के बाद प्लेन पानी से कुल्ला जरूर करें। खाली पेट न पिए, नाश्ते के बाद या मिड मॉर्निंग में पिए। दांतों की सेहत खराब हो रही हो तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दे। गैस, एसिडिटी या अल्सर हो तो डॉक्टर की सलाह ले और स्ट्रॉ का इस्तेमाल करे ताकि नींबू का एसिड सीधे दांतों से संपर्क में न आए। ये थी नींबू पानी की साइंटिफिक बात। सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। हेल्थ की खबरों के लिए weeklyvoice.com, ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर। एडवर्टाइजिंग, इंटरव्यूज, टॉक शोज, इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। ये है जोक्स विद जतीन। हस्बैंड ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट किया पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही धनिया ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल बचने न दूंगी तुम्हारे चमन में। एक महिला अपनी सहेली से, कल दिन भर नेट नहीं चला, तो सहेली ने पूछा, अच्छा तो तूने फिर क्या किया? उसने कहा, कुछ नहीं, पूरे दिन पति से बात की, अच्छा आदमी लगा। और दोस्तों, फैन तो हमारे बहुत ही है, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते, क्या करें।

हाँ जी मेरे भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आज अय्याज भांजी जी के साथ चर्चा नहीं हो सकेगी, मॉर्गेज मंत्रा आज नहीं हो सकेगा, लेकिन

0: तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
3: घर कहीं भी ले

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे एफएम रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।

0: सच है क्या जिंदगी।
1: बंदर भाइयों, ये द वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बंदर भाइयों, हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरे दिन का असर पॉजिटिवली हमारी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए सुबह जागते ही हथेलियां देखने की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई है। लेकिन आज सुबह उठते ही हमारी हथेली में सेलफोन होता है, मोबाइल फोन होता है, आईपैड होता है और सुबह उठते ही हम आईपैड या फिर मोबाइल पर नजर कर लेते हैं। पुराने समय से ही कर यानी कि हथेली दर्शन करने की परंपरा चली आ रही है। जो लोग हथेलियों के दर्शन करके दिन की शुरुआत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की कृपा से सुख शांति और सफलता मिल सकती है ऐसा माना जाता है। बिंद्र भाइयों, कर यानी हमारी हथेलियों के आगे वाले भाग पर देवी लक्ष्मी जी वास करती है। कर मध्य यानी हथेली के बीच में देवी सरस्वती और कर मूले यानी हथेली के मूल भाग में भगवान विष्णु वास करते हैं। प्रभाते कर दर्शनम यानी सुबह हथेलियों के दर्शन करके हम लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। माना जाता है कि रोज सुबह देवी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और भगवान विष्णु जी का ध्यान करने से हमारे विचारों में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बढ़ती है। दिन की शुरुआत भगवान के ध्यान के साथ करने से दिन भर शुभ असर हमारी हर प्रवृत्ति पर रहता है। सुबह जागने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने दोनों हथेलियों आपस में जोड़े, आंखें बंद करें। इसके बाद कर दर्शन मंत्र का जाप करें और हथेलियों के दर्शन करें। मंत्र बोलने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और अपने चेहरे पर लगाए। इस परंपरा के पीछे गहरा संदेश भी है। हम हाथों से ही कर्म करते हैं और कर्म करने से ही हमें सफलता मिलती है, हमारा भाग्य बनता है। काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति और सफलता मिलेगी। हाथों का महत्व समझाने के लिए ही ऋषि मुनियों ने हाथ के दर्शन करने की योजना बनाई यानी कि एक परंपरा बनाई। बंदर भाइयों, अपने हाथों पर यानी खुद पर भरोसा करना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। और जीवन का लक्ष्य होता है सत्य, प्रेम और करुणा। आपको आपका लक्ष्य हासिल हो ऐसी हम दिल से प्रार्थना करते हैं। यह द वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: हाँ जी मित्र भाइयों, एक कम्युनिटी अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। ईद उल अदा प्रेयर वेनसडे May 27th, 2026 फर्स्ट प्रेयर होगी 8 AM, सेकंड प्रेयर 10 AM, सेपरेट अरेंजमेंट फॉर लेडीज, फ्री पार्किंग, फ्री बलून एंड चॉकलेट फॉर चिल्ड्रन, मिराज बैंकेट हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर, 1917 अल्बियन रोड, इटोबिको। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 416-744-2099, 416-744-2099। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक जी, 416-671-0577, 671-0577। वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ikracenter.ca। ये हेड वॉइस, ये थी आज की कम्युनिटी अनाउंसमेंट।

0: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा, मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10, वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देन के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी
5: प्रतिष्ठा परंपरा और अनुशासन इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर एडवर्टाइजिंग इंटरव्यूज टॉक शोज इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
6: हाँ जी मित्र भाइयों, ये डी वॉइस और हम यहाँ पे दोस्त यतीन। अजीब दास्ता है बॉलीवुड की। हाँ जी, आज अजीब दास्ता में हॉरर फिल्म की बात। हॉरर फिल्म यानी रामसे ब्रदर्स। आपको याद होगा 20 साल बाद गुमनाम और भूत बंगला जैसी हॉरर मूवीज अच्छी जा रही थी और उस वक्त लेकर आए थे रामसे ब्रदर्स हॉरर फिल्मों का एक सिलसिला। रामसे ब्रदर्स लेकर आए थे पुराना मंदिर, वीराना, दरवाजा, कई फिल्में उन्होंने बनाई और लो बजट में बनी हुई ये फिल्में जबरदस्त बिजनेस करती थी। मित्र भाइयों, दरवाजा फिल्म हॉरर फिल्म थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म सुपरहिट हो जाए इसलिए एक पब्लिसिटी दाव लगाया गया था और दाव सफल हो गया था। रामसे परिवार की तीसरी पीढ़ी दीपक रामसे और अमित रामसे ने बातचीत करते हुए एक सोर्स को कहा कि उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर ने अनाउंस किया था कि जो कोई भी थिएटर में हॉरर फिल्म दरवाजा अकेला देखेगा उसे 10,000 कैश मिलेंगे। यानी कि आप थिएटर पर पहुंचे और कहे कि थिएटर में बैठकर आप अकेले दरवाजा फिल्म देखेंगे तो पूरा थिएटर आपके हवाले, और अगर आप थिएटर से पूरी फिल्म देखकर बाहर आए तो 10,000 रुपये। बंदर भाइयों, इतना ही नहीं, थिएटर के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी रखी थी। फिल्म इतनी पॉपुलर थी लेकिन किसी ने इसे अकेले देखने की हिम्मत नहीं की। लोग सोचने लगे कि इतनी हॉरर फिल्म है तो अकेले क्यों जाए, साथियों को, दोस्तों को, फैमिली को साथ में लेकर जाए, और इस तरह फिल्म सुपरहिट हो गई, थिएटर हाउस फुल होने लगे। दरवाजा ऐसे नहीं खुलता था, इतना डरावना था कि लोग थिएटर में अकेले जाकर फिल्म देखने की कोशिश भी नहीं करते थे, है ना बेंदर भाइयों। रामसे ब्रदर्स ने साबित किया था कि फिल्मों में सिर्फ ग्लैमर ही नहीं बिकता है, लोगों को एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। हॉरर एक्सपीरियंस रामसे ब्रदर्स ने दिया, है ना बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की अजीब दास्तां। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

And here we meet again on the day जहां ताना ही आज का नारा है कि एक चुस्की चाय की कीमत तुम क्या जानो टी टोटलर बाबू। नुक्कड़पना रोज शाम मिलने वाले दोस्तों के गुट में सबसे जरूरी दोस्त होती है ये चाय रे। ऑफिस से लौटे थके हारे दिमाग को संजीवनी सी लगती है ये। इसके बिना किसी की सुबह सुबह सी नहीं होती तो किसी की क्रिएटिविटी उसके दिमाग में कौनती ही नहीं, नहीं चमकती। वो पकौड़े समोसे वो अधूरे अधूरे, बारिश बेरंग अखबार की सुर्खियां लगती कुछ कम, और वो गॉसिप और चर्चा की गर्मी वो लगती कुछ नर्म। सो ऑन दिस इंटरनेशनल टी डे टुडे, दिस इज स्वाति एंड रुद्राक्ष ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर, रिमाइंडिंग टू ऑल टी एंड नॉन टी लवर्स कि प्रधानमंत्री बनाने तक का होना रखती है भैया।

0: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: Quick reminder, आज 6 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव मनोजा जी विद द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है, और एक कहानी भी सुनाएंगे हमेशा की तरह. तो आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, और स्टूडियो का नंबर रहेगा 4165930055. दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय माय रियल को, द रियल स्टेट कंपनी.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी,
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टर। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें Specs Express के साथ, जहां है world class quality designer sunglasses, eyeglass frames and large selection of contact lenses.
5: Get selected frame, regular single vision lenses for just $129. 35 Resolution Drive, Brampton in Walmart Plaza. Call 905-460-8888. That's 905-460-8888.
4: Serving from two locations. Best service, best price, Specs Express के साथ.
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99%. For up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jai 5362. Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: All right, filmy nukar, CMR 101.3 FM पर you are with Swati and Payaswini. इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है वो जिनसे कल मैंने कुछ लोगों की बात कराई थी, पर अगर कल आप चूक गए और इसीलिए आप एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन से चूक गए हैं, तो मैंने सोचा आज फिर उनसे बात करवा दी जाए. नंबर है उनका 416-456-3815. निकी गांधी की मैं बात कर रही हूँ. इतना अच्छा सा एक प्रोजेक्ट आ रहा है ब्रैम्पटन मिसिसागा के बॉर्डर पे, समझ लें मेविस का और रे लॉसन का एरिया है वो. हम सबको पता है कितनी प्राइम लोकेशन है, पर क्या प्रोजेक्ट है, क्या उसकी डिटेल्स हैं, कब लॉन्च हो रहा है और क्यों उसमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसकी डिटेल्स निकी से पूछ लेते हैं. निकी वेलकम.
2: हेलो. हाँ जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर पुटिंग मी ऑन एयर और सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग. हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं ब्रैम्पटन के एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में, रोलिंग वुड्स टाउन. जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट हो रहा सिर्फ 600,000 से विथ अर्ली 2028 की क्लोजिंग है. एक्सटेंडेड डिपोजिट स्ट्रक्चर है एंड सबसे एक्साइटिंग बात है ये प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है मेविस एंड रेलोसन बुलेवर्ड के प्राइम लोकेशन पे, मतलब ब्रैम्पटन और मिसिसागा के बिल्कुल नजदीक. सो मेक श्योर ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा बॉर्डर टाउन हाउसेज आ रहे हैं 600,000 से. और ये ब्यूटीफुल टाउन हाउसेज है जो आजकल के मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड पे है. और उस बात ही हम हमेशा बोलते हैं ना कि रियल एस्टेट में कहा जाता है कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन.
1: जी
2: एक्चुअली ना ये टैगलाइन बनी ही रोलिंगवुड के लिए है, मुझे तो लगता है, बिकॉज ये जो टैगलाइन है वो इस रोलिंगवुड पे इतनी ज्यादा फिट बैठती है ना. अगर हम लोकेशन की बात करें, मेजर हाईवे जैसे कि 401, 407, स्कूल, शॉपिंग, ट्रांजिट, हमारी डेली एमिनिटीज की जितनी भी जगह है वो सब कुछ यहाँ से बहुत ही नजदीक है. शेरिडन कॉलेज की बात करें तो सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है. हार्टलैंड टाउन सेंटर, शॉपर्स वर्ल्ड, कॉस्को, वॉलमार्ट, ग्रोसरी स्टोर्स, एवरीथिंग इज रियली कन्वीनियंट लोकेशन. फैमिलीज हो, आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आपने खुद मूव होना है, अगर आप इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये जगह बहुत ही स्ट्रांग लोकेशन मानी जाती है. एट द सेम टाइम एक और बात है इस लोकेशन में खास कि ये जो पॉकेट है ना उसके 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में काफी लंबे टाइम से कोई न्यू प्रोजेक्ट आया ही नहीं है. सो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिनको ब्रैम्पटन में रहना है, इस जगह पे बाय करना है और ब्रांड न्यू लोकेशन, ब्रांड न्यू घर में जाना है. सो गाइस डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत 3 से लेके 5 बेडरूम तक के ऑप्शंस रहने वाले हैं. 1300 से लेके 1900 स्क्वायर फीटेज तक के टाउन हाउसेज हमारे पास अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है. सो आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहना चाहते हो, या फिर आप इन्वेस्टर हो, सभी को सूट हो ऐसा फ्लोर प्लान हमारे पास कुछ ना कुछ मौजूद है. इसके साथ साथ आजकल एक और चीज है कि गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी एचएसटी रिबेट के बेनिफिट दे रहा है, जिसमें एलिजिबल बायर्स जो है वो अप टू 130,000 तक का बेनिफिट ले सकता है. इस वजह से बायर्स जो है उनको एक प्री कंस्ट्रक्शन में बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और मार्केट जो है अब धीरे धीरे ना ओपन अप होनी स्टार्ट हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है, बायर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो वापस आने लगा है. सो जो लोग वेट कर रहे थे कि नहीं अब खरीदे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइमिंग एंड बहुत ही बढ़िया लोकेशन है. और एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि हम जो है होमलेस मिरेकल, वी आर दी लिस्टिंग एजेंट विद दी ब्रोकरेज. सो मेरे सारे रियल्टर्स भाइयों बहनों, अगर आपको भी इसमें एक्सेस चाहिए, फील फ्री टू कॉल मी एट 4563815। अब एक ब्रोकर लॉन्च होने जा रहा है June 1st को, अगर आपको उसके बारे में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सभी रियल्टर्स फील फ्री टू कॉल मी एट 4164563815। अगर आप अपने लिए कुछ बाय करना चाहते हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बाय करना चाहते हो, कुछ इन्वेस्ट मैं करना चाहते हो, रोलिंगवुड टाउन्स इज डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। सारी प्राइसिंग, फ्लोर प्लान, इंसेंटिव्स, कंप्लीट डिटेल के लिए अभी मुझे कॉल कर लीजिए 4164563815। आई रिपीट, इट्स 4164563815। बैक टू यू स्वाति जी।
1: थैंक यू निकी। ये निकी गांधी जी का नंबर है 4164563815। रोलिंग वुड्स फ्री होल्ड टाउन होम्स की हमने बात करी है जो लॉन्च हो रहे हैं June 1st को। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 600 से है। प्री कंस्ट्रक्शन में आजकल रिबेट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको फटाफट निकी गांधी जी को कॉल कर लेना है और इस प्रोजेक्ट के बारे में फटाफट पता कर लें, और अगर अच्छा लगे तो डिसीजन लें और आगे बढ़ें। पर नंबर अगेन 4164563815। मैं फिर से याद दिला दूं, इसकी लोकेशन बहुत ऑसम है, प्राइसिंग टू गुड है और ऑप्शंस इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके लिए। इट कैन बी अ वेरी गुड पिक इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट या अपने लिए कुछ लेना है। 4164563815। थैंक यू निकी, फिर कनेक्ट करते हैं।
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी। ओके जी, बाय।

0: टॉन वैली नॉर्थ हंडे आपको दे रहा है मौका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Fresh Breeze, new release. On CMR at 5 p.m. CMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी. एंड यस, इट्स टाइम फॉर अ फ्रेश ब्रीज न्यू रिलीज. तो भाई चले, एक ताजा तरीन गाने से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ. एंड इट्स अ बेहतरीन सॉन्ग, ट्रस्ट मी. इंडी पॉप कैटेगरी का है, नॉन फिल्म सॉन्ग है, जो रिलीज होते ही वायरल भी हो गया. पूछो क्यों भाई, दम रखता है यू. ओल्ड स्कूल ब्लैक एंड व्हाइट एरा वाली यू नो रोमांस की फुल ऑन फील देता गाना है. तो नॉस्टैल्जिया इसमें मिलेगा, बट यस एक फ्रेश अपील भी है, सूदिंग भी है, सीरीन भी है, वो प्यारी वाली सॉफ्टनेस लिए रोमांटिक फील भी है. इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई ताबड़तोड़ वाला जोर इन्होंने डाला नहीं है, और जो भी कंपोजिशन है ना, वो क्लिक करने वाली है. अकूस्टिक गिटार, सॉफ्ट किक्स, दिल में उतरते वोकल्स, एंड यस रिलेटेबल से लिरिक्स. ओवरऑल इट्स अ मस्ट लिसन. मतलब मैंने तो जब से सुना है ना, गुनगुनाई जा रही हूं मैं तो ये गाना. Somehow, के ना जबान पे चढ़ जाती है, कुछ धुने दिल में उतर जाती है. वैसे ही डुएट है ये बाय शिखर एंड याशिका सिक्का, दोनों ने बहुत सुंदर गाया है. जहां पे शिखर ने कंपोज भी किया है और उन्होंने ही लिखा भी है. इट्स कॉल्ड इधर जरा तुम देख लो. फिलहाल इधर जरा तुम सुन ही लो. एंड यस, बिफोर आप ये गाना सुनते हो, मैं आपको शिखर की एक शॉर्ट ऑडियो बाइट की तरफ लेके चलती हूँ. देखिए मिस्टर टैलेंटेड हम सबसे, फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर से क्या कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में. एंड देन गाना तो आपको सुनवाना ही है मुझे. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस. इट्स कॉल्ड इधर जरा तुम देख लो.
2: हेलो गाइस, माय नेम इज शिखर, आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर. एंड मैंने अभी अभी एक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है इधर जरा सा देख लो. द सॉन्ग इज अबाउट, इट्स बेसिकली कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, जहाँ पे लड़का अपनी फीलिंग्स लड़की को बताता है एंड लड़की थोड़ी हेसिटेंट है, बट इवेंचुअली वो मान जाती है एंड शी ऑल्सो अग्रीज दैट या शी इज़ इन लव टू. सो यस, इट्स अ क्यूट रोमांटिक सॉन्ग. बाकी आप लोग सुनो और बताओ कैसा लगा आपको. एंड थैंक यू फिल्मी नुक्कड़ फॉर प्रीमियरिंग माय सॉन्ग, एंड थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी ऑन द शो.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: ये वो time of the year है जिसका आप wait कर रहे थे. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
5: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
4: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो, ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
5: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
6: अहा, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: वेल यमला पगला दीवाना, ऐसे ना बने, आप थोड़े सयाने बने, और सयाने बनेंगे अगर तो आपका भी फायदा होगा, आपके अपनों का भी फायदा होगा। और उसकी लिस्ट में आता है जानकारी सही होना, सही समय पे उस जानकारी का फायदा उठा लेना। तो ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं अब आपके सामने लेके आई हूँ कि अगर इस वीकेंड पे आप उसका फायदा उठाते हैं तो बचत तो सारी बहुत सारी होगी ही, पर यू नो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, एज गिफ्ट आप समझ लें तो दिल भी मूड भी सब अच्छा कर लेंगे, और परिवार वालों से भी दुआएं मिलेंगी। बच्चे हैं आपके तो वो कहेंगे, बीवी है तो वो कहेगी, बहन है तो वो खुश होगी, मम्मी पापा हैं तो वो खुश होंगे, और खुद के लिए ले रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए ले रहे हैं, किसी के लिए भी ले रहे हैं, दोस्त के लिए ले रहे हैं, आप बहुत खुश होने वाले। अब ले क्या रहे हैं, पहले इस पे आते हैं। तो चलें स्पेक्स एक्सप्रेस पे आपको लेके चलती हूँ, वहाँ पे कुछ एक्सप्रेस सी इन्फॉर्मेशन है, क्या है वो राजन जी से बात करवाती हूँ। राजन जी वेलकम।
1: थैंक यू सो मच स्वाति जी, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे लिसनर सभी जो भी यहाँ पर आ रहे हैं जी, बहुत बहुत सेविंग कर रहे हैं, प्लस बहुत सारी चीजें उनको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो दोस्तों क्या मिल रहा है वीकेंड के ऊपर वो बताता चलूं। सबसे पहले जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर हमारे पास जी आज थर्सडे और परसों सैटरडे दोनों दिन अवेलेबल हैं जी। सो जिन्होंने भी अपना कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जाम करवाना है वो कॉल कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं 905-460-8888। और अपॉइंटमेंट के बता दूं चलूं कि जब भी आप एग्जाम करवाते हो तो आपकी विजन तो चेक होती होती है, साथ में आपकी आंखों की हेल्थ को चेक करने के लिए हमने लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट मंगवा कर रखे हुए हैं, जिसमें ओसीटी है जो आंख का रेटिना है उसको स्कैन करती है, और साथ के साथ अगर आपने बच्चों का एग्जाम करवाना है तो हमने स्पेशली टोपोग्राफी मशीन लेके आए हैं जी जो बच्चों की एक्सेल लेंथ मेजर करती है। तो अपना डिटेल्ड एग्जाम अगर आप अपना या अपनी फैमिली का करवाना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं 905-460-8888। और अब बात करते हैं जी ग्लासेस की। बहुत सारे डिसेस होते हैं क्योंकि जैसे आपने देखा कि आज वेदर कितना अच्छा है, सनलाइट कितनी ब्राइट है, तो दोस्तों हमने सनलाइट को तो एंजॉय करना है पर साथ के साथ अपनी आंखों को जरूर प्रोटेक्ट करना है ताकि ये ना हो कि आपकी आंखें डैमेज हो जाएं। तो जो भी हमारे लिसनर्स चाहते हैं कि बढ़िया ब्रांडेड सनग्लासेस उनके पास हो तो गुची के, प्राडा के, डॉल्ची गबाना के, टॉम फोर्ड के, टिफनी के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस दोस्तों आपको आज फ्लैट 30% डिस्काउंट के ऊपर दिए जा रहे हैं जी। ऐसे ही स्वाति जी जिनको रेबन के फ्रेम चाहिए, अरमानी के, माइकल कोर्स के, कोच के, केज स्पेड के, मार्क शेकअप के, तो ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स आपको आज दोस्तों फ्लैट 50% ऑफ दिए जा रहे हैं जी। और अगर ब्रांडेड सनग्लासेस की बात करें तो अरमानी के, कोच के, केज स्पेड के, मार्क चेकअप के, ये ब्रांडेड सनग्लासेस ये भी आपको आज फ्लैट 50% ऑफ दिए जा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी डील, अगर आपको आज टॉमी हिलफिगर के फ्रेम या सनग्लासेस चाहिए, या फिर कैल्विन क्लाइन के चाहिए, या फिर फैंडी के, या फिर वैलेंटिनो के, तो ये आपको मिलेंगे जी आज फ्लैट 75% ऑफ। तो ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स है जी जो हमारे लिसनर्स ले सकते हैं। और साथ के साथ जिन्होंने वैल्यू पैकेज लेना है, स्वाति जी ये वैल्यू पैकेज जो है ना, इसके बारे में लोग दूर दूर से कॉल करके जानकारी लेते हैं, तो
0: बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है। कहाँ, मतलब आप देखें ना, $400 के पैकेजेस या 129 में आप दे रहे हैं, तो प्राइस ही इतनी अच्छी है।
1: बिल्कुल जी, और ये भी साथ के बताता चलूं कि ये इसमें जो हम फ्रेम दे रहे हैं ना, ये कोई लोकल रेगुलर फ्रेम नहीं है, ये ब्रांडेड फ्रेम है। लंडन फॉग बड़ा अच्छा ब्रांड है जी, लिवाइस बहुत अच्छा ब्रांड है, रूट्स, एडी बावर, वैन ह्यूसन, ये सब के सब अच्छे ब्रांड्स हैं। तो $300 की कीमत का फ्रेम है जी, एंड $100 की कीमत के लेंसेज, $400 का पैकेज है जो सिर्फ और सिर्फ $129 में जी। ये अमेजिंग डील है क्योंकि ये डील हम ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। ऐसे ही जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए, एसएलओआर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस है जी, $300 की कीमत के लेंसेज और $300 का फ्रेम, $600 का पैकेज सिर्फ $258 में दिया जा रहा है जी। और स्वाति जी इतना नहीं, जब हम ग्लासेस बनवाते हैं तो हमें कोटिंग्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर आप रात को ड्राइव करते हो तो आपको एंटी ग्लेयर चाहिए, अगर आप सन में जाते हो तो आपको यूवी प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आप सेलफोन या कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग चाहिए। आप जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, सभी की सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ। और अगर आपको दो पेयर चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि एक पेयर आपके घर पे हो और एक ऑफिस में, तो पहले पेयर पे ऊपर कोटिंग 50% ऑफ है और दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री। सो दोस्तों मिस मत करें, क्योंकि ये डील ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। पहुंचना कहाँ पर ये डील लेने के लिए? स्पेक्स एक्सप्रेस 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड सील्स कैले या कैनेडी एंड सील्स के इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा, और फोन नंबर है हमारा 905-460-8888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं, बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो दोस्तों अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो भी कॉल कर लें ताकि आपका टाइम सेव हो सके। 905-460-8888, 905-460-8888। और जाते जाते स्वाति जी एक स्पेशल डील फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए,
0: बताएं
1: स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि आज सनलाइट बहुत ब्राइट है, सनग्लासेस की आपको जरूरत है
0: जी।
1: तो जो भी पहले 5 कॉलर्स कॉल करेंगे उनको हम टॉम फोर्ड के सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ देंगे। सो अगर आपको टॉम फोर्ड के सनग्लासेस चाहिए 50% ऑफ, तो भी फोन उठाएं, नंबर घुमाएं और अपना नाम लिखवाएं 905-460-8888, 905-460-8888।
0: मैं ये समझ पाई हूँ कि वहाँ पे बचत ही बचत है स्पेक्स एक्सप्रेस पर। ये तो किसी भी ब्रांड के आप ग्लासेस लेते हैं, सनग्लासेस लेते हैं, तो 30% फ्लैट भी है, 50 भी है, 75 भी है, प्लस वैल्यू पैकेज तो बहुत हिट है ही स्पेक्स एक्सप्रेस का, जहाँ पे $400 का सामान आपको 129 में मिलता है, वो भी ब्रांडेड। प्रोग्रेसिव ग्लासेस जो हैं सनग्लासेस, वो आपको $600 का आपको 258 में मिल जाता है। आई एग्जाम वहाँ पे हो जाते हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी वाले भी होते हैं, टोपोग्राफी लेंस जो होते हैं। एंड देन अगर कोटिंग चाहिए तो वो भी आपको फ्लैट 50% में हो जाती है। सेकंड पेयर तो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा अगर दो करवाने हैं, और अक्सर घरों में हम एक साथ दो चार कई चश्मे होते हैं, हमें पता है कराने के लिए। एंड आप सबके लिए खास, फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए ही एक खास है कि आप फटाफट कॉल करते हैं अगर, तो पहले 5 कॉलर्स को राजन जी टॉम फोर्ड के सनग्लासेस पे फ्लैट 50% ऑफ भी देंगे। तो इसका तो फायदा जरूर से उठाएं, कॉल उन्हें फटाफट कर लें। नंबर टू कॉल एम एस 905-460-8888। थैंक यू राजन जी, फिर करते हैं आपसे बात। गुड लक।
1: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।

टुडे इज द बर्थडे ऑफ दैट फिल्मी टैलेंट. अच्छी फिल्में बनाना जिनके डीएनए में ही है परंपरा को मेंटेन किया है उन्होंने. वो जिन्होंने विश्वास दिलाया भाई कि दिल वाले दुल्हनियां ले ही जाते हैं. वो जिन्होंने यकीन दिलाया कि परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन से बड़ी होती है मोहब्बतें. धूम मचाते इन्होंने कभी बंटी और बबली से मिलवाया तो कभी चक दे इंडिया का नारा लगवाया. तशन से भी जारा से मिलवाया तो कभी हम तुम के बीच थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक भी चलाया. रॉकेट सिंह को सेल्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिलवाया तो बैंड बाजा बारात के साथ शुद्ध देसी रोमांस भी कराया. कभी दावते इश्क दी तो कभी इशकजादों से मिलवाया. कभी वो एकता टाइगर की कहानी सुनाई तो कभी बेफिक्र अंदाज में गुंडे से मिलवाया. कभी सुल्तान कभी ठंग्स ऑफ हिंदुस्तान कभी मेरी प्यारी बिंदु कभी मर्दानी से मिलवाया तो कभी दम लगा के हईशा किया और दिल बोड़े हड़िप्पा के साथ आजा नच लेकर आया. वेल लिस्ट ऑफ हिज फिल्म्स इज लॉन्ग. ऑल वी विश आदित्य चोपड़ा वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे एंड सक्सेसफुल आने वाले सारे साल. बनाए फिल्में और जोरदार बनाए. नॉट लाइक जयेश भाई जोरदार फिल्में हो जोरदार.

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Nave और Denison Street, Markampur.
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: जी हाँ, दैट्स द नंबर आयशा मुनव्वर जी को कॉल करने के लिए 416-428-2165. इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपकी कर्ज से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं फटाफट फुर हो जाएंगी. वेल, कॉल करें, पर जब तक आप करते हैं कॉल, एक क्विक सी मुलाकात मैं करा देती हूँ यहीं पर विद आयशा मुनव्वर. आयशा जी, वेलकम एंड ओवर टू यू.
5: Thank you very much for having me on air. I'm Aisha Munawwar. I'm offering debt solutions since last 25 years to our community. और बेताशा हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अब डेट फ्री हो चुके हुए हैं और हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ और अपने बिजनेसेस जो हैं उसको रन कर रहे हैं. तो हम कंज्यूमर प्रपोजल्स की सर्विसेज ऑफर करते हैं, बैंक्रप्सीज की भी सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसके अलावा क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, लमसम प्रपोजल्स. अगर किसी का प्रपोजल्स टूट गए हैं तो उसके लिए भी आप एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं. सो वी कैन एडवाइस यू कि क्या आपकी ऑप्शंस हैं. आपके एसेट्स जो हैं हम कोशिश करते हैं प्रोटेक्टेड रहें, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स बन जाएं और लीगल एक्शन और कलेक्शन जो हैं वो रुक जाएं. All information is being kept confidential because हम आप ही की कम्युनिटी से हैं और मैं फुली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट्स नॉट ईजी टू डिस्कस विद एवरीबडी. और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप हर एक से ये इन्फॉर्मेशन लें और गलत किस्म की एडवाइस जो है वो ले लें और बाद में उसका नुकसान हो आपको. तो ऑलवेज यू नो कंसल्ट द प्रोफेशनल्स. सो वी आर प्रोफेशनल्स और उसमें यह है कि आपको राइट एडवाइस प्रोवाइड की जाती है दैट सूट्स यू द बेस्ट. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने आपके एक फ्रेंड को कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसी सर्विस को हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे या वो आपको सूट करती है. फर्स्ट वी हैव टू रिव्यू एंड सी आपके लिए क्या बेस्ट है, आपने किस तरह से इसमें से निकलना है, आपने फ्यूचर में किस तरह से दोबारा एस्टैब्लिश होना है और किस तरह से दोबारा क्रेडिट आपने जो है वो एस्टैब्लिश करना है, किस तरह एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फर्स्ट कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं. आई टोटली एक्नॉलेज एंड ऑनर दिस थिंग दैट ऑल आवर क्लाइंट्स जो हमें कॉल करते हैं किसी भी सोर्स से हमें कॉल कर रहे हों, चाहे वो दोस्तों ने रेफर की हों, चाहे एडवर्टीजमेंट रेडियो की हो, न्यूज़पेपर की हो, जहाँ से भी वो कॉल करते हैं, दे प्रेफर टू टॉक टू मी पर्सनली एंड आई हैव टू लेट यू नो कि हमारे ऑफिस से कोई मेरा ऑफिस कलीग मेरे बिहाफ पे अपॉइंटमेंट मेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता. मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स की टेक केयर करती हूँ. तो अगर आप मुझे सेल नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें, अगर आप देखते हैं कि फ़ोन मेरा बिजी आ रहा है तो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड वी विल स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ताकि आराम से कम्फर्टेबली टाइम दे के हम आपकी सिचुएशन को डिस्कस करें और सोल्यूशंस को वर्कआउट करें. एंड वन कॉल विल मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ, दैट आई गारंटी. सो माई फोन नंबर इज 416-428-2165. अगेन इट्स 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
4: थैंक यू आयशा जी, थैंक यू सो मच. वेल, ये थी आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ. 416-428-2165 उनका नंबर है. एज आई सेड, अगर अपनी जिंदगी में कर्जे में आप डूबते चले जा रहे हैं या लग रहा है कि शायद आ जाएं, तो भाई फटाफट टाइमली एक्शन लें और उस समस्या से बाहर निकल जाएं. उनको कॉल कर लें, लंबा अनुभव है और अपनी जिंदगी के लिए खुशियों का रीसेट बटन आप दबा सकते हैं. वंस यू कॉल हर 416-428-2165.

0: करना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना? अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 6474535353.
4: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Wayne's Auto Group.
5: Retro in Metro. Nukkad Classics.

0: It's Toyota Red Tag Days at Martville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Martville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Martville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: हर घर कुछ कहता है।
2: घर की बात संजीव मनोचा के साथ।
1: Brought to you by My Realco, the real estate company. Every Thursday, 6 p.m. Only on Filmi Nukkad.
3: जी हाँ, हर घर कुछ कहता है, ये बात हम हमेशा बताते हैं, हम हमेशा महसूस भी करते हैं, पर कई बार हम समझ नहीं पाते कि जिस घर में हम जा रहे हैं, जिस घर को हम देख रहे हैं, वो घर हमसे कह क्या रहा है। और वही काम आती है एक एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज। रियल स्टेट एक्सपर्ट जो हैं हमारे साथ, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोचा जी हैं फ्रॉम माई रियल को। ये वो भाषा सुन लेते हैं घरों की, जो दीवारों की, पेंट की, जो हम आप नहीं सुन पाते। एक वाइब उस घर में, जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, आपको वो क्यों घर लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, इफ़ यू आर बाइंग या सेल करते वक्त उसमें क्या ऐसा अच्छा करा जाए कि वो सेल करने में आसानी हो, वो कुछ अच्छी बातें कहें बायर से, वो सारी चीज़ों के लिए उनकी एक्सपर्टीज आपके काम आ सकती हैं। तो संजीव जी को आप कॉल कर सकते हैं उनके नंबर पर 416-843-7600, 416-843-7600। बट टिल यू कॉल, आज की मुलाकात में हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, हम वो भी करेंगे, एक कहानी हमेशा की तरह सुनेंगे। आपके कोई सवाल है आप हमसे स्टूडियो में पूछ सकते हैं, स्टूडियो का नंबर वही रहेगा 416-593-0055। संजीव जी वेलकम।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी, और सभी फिल्मी नुक्कड़ सुनने वाले अपने श्रोताओं को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग।
3: वेरी गुड इवनिंग, और आज की कहानी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ।
4: स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि हर घर कुछ कहता है और हमें वो एक्सपर्टीज है कि जो हम सुन सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि पिछले 20 साल से मैं सिर्फ घरों की बातें ही नहीं सुन रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स की भी बातें,
3: घर वालों
4: की भी बातें सुन रहा हूँ, और कुछ घर वालों के साथ में डिस्कशंस, बहुत तरह के क्लाइंट्स के साथ में डील करना होता है, बहुत तरह के रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ में होते हैं। तो आज की कहानी ये अगेन सच्ची घटनाओं से प्रेरित है।
3: अच्छा, ठीक है
4: ठीक है, और आधारित है रादर, और पात्र काल्पनिक है, सिर्फ पात्र काल्पनिक है। तो ये बात है कोविड के आसपास की काफी सारी कहानियां हैं।
3: अच्छा।
4: तो जी, कोविड के आसपास की ये बात है, जब कोविड बिल्कुल शुरू हुआ और मार्केट शुरू में क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिर रही थी।
3: ठीक है
4: एकदम से मार्केट में हड़कंप था, हर लोग सब डरे हुए थे, तो एक मेरे साथ एक कपल थे, यंग कपल, काम कर रहे थे, मॉर्गेज के लिए प्री अप्रूव्ड थे, जॉब्स दोनों की अच्छी थी, यंग, रिसेंटली मैरिड, और हमने उनके साथ में बैठ के बायर काउंसलिंग की, सब कुछ सेट था कि कौन सा घर लेना है, क्या करना है, सारा क्राइटेरिया जितना भी हो सकता है सब कुछ बराबर था, और जीटीए के अंदर था।
3: अच्छा, ठीक है।
4: घर हमने देखे, कुछ एक घर देखे, 10-15 घर देखे, एक घर पसंद आया, बहुत बढ़िया घर था। तो हुआ यूं कि हमने कहा कि भाई अब सब कुछ फिट बैठ रहा है, तो एक्शन, हाँ, ऑफर का एक्शन। अगला सवाल उनका ये था कि एक दिन हमें दे सकते हैं।
3: हाँ।
4: मैंने कहा ठीक है, आप एक दिन ले लीजिए, ऐसा क्या है। तो हुआ यूं कि उन्होंने इंडिया में अपने मम्मी पापा से बात की।
3: अच्छा।
4: तो मम्मी पापा इंडिया बैठे हैं। हाँ। वो यहाँ कभी आए नहीं।
3: अच्छा, उन्हें यहाँ का कुछ नहीं आईडिया,
4: उन्हें यहाँ का कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मम्मी पापा का एडवाइस लेना जरूरी है, मैं समझता हूँ, चलो ठीक है, उनसे एडवाइस लिया, बात हुई। उसके बाद में मेरे फूफा जी हैं, वो ब्रैम्पटन में है, मैं उनसे जरा बात कर लूँ, चलो फूफा जी से बात कर ली। उसके बाद में यूट्यूब एक्सपर्ट्स की मैं थोड़ी सी सुन लूं वीडियोस, वो
3: और आजकल हम लोग सारे गूगल से डॉक्टर हम खुद ही बन चुके हैं,
4: डॉक्टर हम खुद बन चुके हैं,
3: डॉक्टर परेशान है,
4: और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाद, उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ मैसेजेस देख लिए, करते कराते 3 दिन निकल गए। और 3 दिन के बाद में हुआ यूं कि यार संजीव, घबराहट हो रही है कि हमें लग रहा है कि मार्केट गिरेगी।
3: अच्छा।
4: तो मैंने कहा देखें, ऐसा है, मैं सिर्फ घरों की बातें नहीं सुनता, मार्केट की बातें भी सुनता हूँ, और मेरे तजुर्बे के हिसाब से ये बहुत छोटी विंडो है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसके बाद में आप देखना कि एकदम से पेंट अप डिमांड हो जाएगी। हाँ। और मार्केट उठेगी। खैर, नहीं समझी उन्होंने बात।
3: हाँ।
4: तो हुआ यूं कि 3 दिन के बाद में वो घर बिक गया, और ये लोग बैठ गए आराम से, नहीं अभी तो गिरेगी, तो करीब एक महीने के बाद में फिर वापिस से उठे, जब तक ये सो के उठे तब तक मार्केट उठनी शुरू हो गई,
3: चिड़िया चिक चुकी थी खेत।
4: तो हुआ अल्टीमेटली कि आप 36 लोगों की बातें सुनते हो, जितने मुंह उतनी बातें। अगर आपका डिसीजन फाइनल है कि हाँ मैं ये सब चीज पसंद है, हमारे एक बजट में है, सब कुछ है, तो फिर आपको उस टाइम पे कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना पड़ता है,
3: छोले का डायलॉग।
4: हाँ बिल्कुल। और अल्टीमेटली उन्होंने घर लिया जीटीए से करीब 1.5-2 घंटे की ड्राइव।
3: अरे बताओ,
4: जो घर उनको उसने प्राइस में जीटीए में मिल रहा था, क्योंकि एकदम से 6 ऑफर्स आ रही हैं, 10 ऑफर्स आ रही हैं, इतनी हड़कंप हो गई थी मार्केट में कि बेचारे उस टाइम पे फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गए।
3: रिमाइंड्स मी ऑफ ऑल दोस सिनेरियोस, जैसे हम अगर जो रास्ते में चल रहे होते हैं, हम ये सोचे कि ये रास्ता लें या वो रास्ता लें, आगे वाले से मोड़ लेंगे आगे, और कई बार हम इतने सारे सही रास्ते क्रॉस करके जाते हैं, फिर हमें यू टर्न लेके ही आना पड़ता है।
4: बिल्कुल,
3: है ना
4: बिल्कुल।
3: और शादी का किस्सा तो होता ही है कि हम मुझे याद है सब बड़े लोग, अब तो खैर वो सिनेरियो नहीं होते ज्यादा कि जिसमें लड़की देखने पूरा कुनबा जाता था, पर ऐसा होता था कि सभी कहते बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फिर तो खटाई में है मामला।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
3: क्योंकि कोई कुछ निकालता है कभी।
4: और हर बंदा एक्सपर्ट होता है, हर बंदा, मतलब जिसने शादी नहीं भी की है ना, वो भी आपको शादी के बारे में ज्ञान देगा। तो जिसने घर नहीं भी खरीदा कभी जिंदगी में, वो भी आपको घर के बारे में पूरा ज्ञान देंगे, और आप जो एक्सपर्ट के साथ में काम कर रहे हो आप उसको नहीं सुनेंगे,
3: उसी को नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ आज की कहानी का शीर्षक ये है कि भाई मौके पे चौका मारे, उसको ज्यादा सोच गहरी हो जाती है तो इरादे कमजोर हो जाते हैं, और वही उनके साथ हुआ, और फिर दिक्कत होती है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टूडियो के नंबर 416-593-0055। वी हैव मोर टू डिस्कस विद संजीव जी।

0: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Har ghar kuch kehta hai.
2: Ghar ki baat Sanjeev Manocha ke saath.
1: Brought to you by My Realco, the real estate company. Every Thursday, 6 p.m. Only on Filmi Nukkad. वेल संजीव जी का नंबर है 416-843-7600. सेगमेंट के बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं. माई रियल को से ये ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हैं और बहुत ही लंबा अनुभव है इनका, बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं. और मैं तो एक किस्सा ये भी सुन रही थी संजीव जी से कि कितने सारे लोगों की आपने उनको मदद करी है घर लेने में
3: जी.
1: जो कि कभी आपसे मिले नहीं और यहाँ पे कभी वो आए नहीं, पर उन्होंने टोरंटो में घर लेना था
3: जी,
1: और उन्होंने फोन पे बात करी, आपने सारी सर्विसेज उन्हें दी. और ऐसा एक नहीं, कई एग्जांपल्स आपने मुझे बताए.
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल. फॉर्चुनेटली आई वुड से कि वो एक ट्रस्ट बिल्डअप वाली बात होती है.
1: बट हाउ इट इज, मतलब कैसे बिल्डअप हो जाता है फोन पे ही बात करके?
3: देखें, मतलब जो समझदार लोग होते हैं
1: जी,
3: ठीक है, वो आप चाहे जितना मर्जी अपने आप को शो करते रहो कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कितने भी स्मार्ट बनते रहो, लेकिन सामने वाला आपको पहले 3-4 मिनट में ही भांप लेता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. ठीक है. और सिर्फ यही नहीं है, जब आप, मैं यूं भी कहूंगा कि हम इनफैक्ट ये सेगमेंट भी करेंगे आगे, कि जब आप किसी रियल्टर के साथ में काम करते हो, चाहे आपने घर खरीदना है या चाहे बेचना है, आपको किस तरह के सवाल उससे पूछने चाहिए
1: जी?
3: आपको किस तरह की प्रोबिंग करनी चाहिए कि ताकि आपको पता लगे कि वो इंसान जो बोल रहा है उसमें वाकई कुछ दम भी है कि खाली ऐसे गुब्बारे की तरह ही है कि बस हवा ही हवा है.
1: क्योंकि देखिए ना, आजकल तो नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट बहुत सारे कहते हैं ना, हर घर में एक रियल्टर है.
3: ओ, तो, कई में तो दो भी हैं.
1: जी, बहुत पॉसिबल हो सकता है. बट एक डेटा आप मुझे बता रहे थे कि उसके बावजूद डेटा कुछ और कहता है हमसे.
3: जी, डेटा ये कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 2024 में आप ये देखें कि ऑलमोस्ट 52% ऑफ द रजिस्टर्ड रियल्टर्स, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड में ऑलमोस्ट 70,000 रजिस्टर्ड रियल्टर्स हैं.
1: अच्छा.
3: जिसमें से 52% ने कोई घर नहीं बेचा लास्ट ईयर, जीरो.
1: अरे बाप रे. तो वो सिर्फ लाइसेंस मेंटेन कर,
3: लाइसेंस मेंटेन करके रखा हुआ है. अब क्या रीजन है क्या नहीं है वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे
1: जी.
3: और हार्डली आप यूं समझे कि करीब 10-15% रियल्टर्स थे जिन्होंने एक या एक से घर बेचा, ज्यादा बेचा. और उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट यूं कहें कि 52 ने तो कंप्लीट जीरो ही बेचा, राइट? और जो टॉप के एजेंट थे, दोज हु सोल्ड लाइक मोर देन, आई वुड से मोर देन 10 houses, दे वर वेरी फ्यू. आप उनको मतलब 10% में भी गिन सकते हो.
1: अरे वाह.
3: बाकी कोई नहीं. तो यहीं पे ही आपका तजुर्बा, जो आपके एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वो यहाँ पे काम आती है. कि लाइसेंस लेना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे, लाइसेंस बन जाएगा. लेकिन असली जो कहानी है
1: वो काम करने की
3: वो तो बाद में लाइसेंस लेने के बाद शुरू होती है. और उसके भी मैं कहूंगा कि लाइसेंस लेने के 2 साल के बाद शुरू होती है. क्योंकि पहले 2 साल में तो आप अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, उनको जिनको आपने नेटवर्किंग में पिच करते हो, क्योंकि आपने उनको रोक के रखा होता है कि रुक जाओ मैं लाइसेंस ले रहा हूँ, रुक जाओ मैं लाइसेंस ले रहा हूँ. जब वो फनल खत्म हो जाती है तो उसके बाद में फिर सूखा पड़ जाता है, तब असली कहानी शुरू होती है. और इसी वजह से अब यहाँ पे चूंकि आपने मेंशन किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी स्ट्रगलिंग रियल्टर हैं, जो पिछले 2 साल में आपने लाइसेंस लिया, लेकिन अब आप ऐसे कगार पे, ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या, आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको लीड्स की जरूरत है, आपको बिजनेस बढ़ाने की जरूरत है, तो मुझे कॉल करें. मेरा नंबर है 416-843-7600. मैं टीम एक्सपेंड कर रहा हूँ अपनी रियल एस्टेट ब्रोकरेज की. रियल एस्टेट ब्रोकरेज है माई रियल को इंक, विच इज माई चॉइस, माई प्रॉपर्टी, माई रियल को. जी बिल्कुल.
1: तो अगर यहाँ पे मैं भी एक शाउट आउट देना चाहूंगी कि जो भी लोग रियल स्टेट का लाइसेंस ले रखा है उन्होंने, एंड दे वांट टू वर्क बेटर जिस भी सिनेरियो में है उससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक बार संजीव जी से बात ज़रूर करें। आपको मेंटरशिप बहुत अच्छी मिलने वाली है। 416-843-7600। मुझे एक चीज़ और बताएं बिफोर वी गो अहेड, हम जब ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस हो सकता है नहीं हो सकता, एक अच्छा रियल्टर कैसे स्टैंड आउट कर जाता है? जो हम कह रहे हैं ना बहुत कम है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्स, उन्हीं की तो हो पाती होगी ना जो बहुत यूनिक होते होंगे अपने काम में।
3: जी जी जी बिल्कुल।
1: एंड आई वुड से रादर स्ट्रेट, संजीव जी कैसे स्टैंड आउट कर पाते हैं?
3: संजीव जी स्टैंड आउट कर पाते हैं अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, ना कि सिर्फ अपनी गाड़ी से और अपने कपड़ों से।
1: उससे भी एक सवाल आता है मेरा कि ये भी एक भ्रम, अब मैं इसे भ्रम ही कहूंगी, कई मुझे रियल्टर्स ये कहते मिले हैं, अगेन नॉट टू ऑफेंस एनीवन, कि देखिए हम ऐसे बिजनेस में हैं कि हमें तो सूटेड बूटेड होके ही जाना है और प्रेजेंटेबल, वेरी प्रेजेंटेबल, एंड हमारे पास गाड़ी महंगी वाली ही होनी चाहिए। एंड मैं कई बार ये सोचती हूँ कि आपको घर दिलवाना है या बिकवाना है, आपकी गाड़ी महंगी से हाउ इट इज गोइंग टू मेक डिफरेंस?
3: इट वॉन्ट। ये थोड़ा सा मतलब आपकी बात सही है, ये भ्रम है, ये मिसकंसेप्शन है
1: जी,
3: है ना लोगों के दिमाग में, और कि लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेते से बढ़िया मर्सिडीज और एस क्लास और यू नो रेंज रोवर ये सब निकलवा ली और बढ़िया सूटेड बूटेड होके हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, जो क्लाइंट है, जो समझदार क्लाइंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: सही बात है, मुझे क्या
3: आपके
1: फर्क
3: पास
1: पड़ता
3: में हुंडई है या आपके पास में होंडा या आपके पास में यू नो लेक्सस है या मर्सिडीज है। आप जितने मर्जी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स पहन लीजिए, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले लीजिए, लेकिन आपके पास में अगर वो नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास में वो एक्सपर्टीज नहीं है कि आप अपने क्लाइंट्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऑफर बनानी है तो उसमें क्या क्या क्लॉजेस लिखने हैं, आपने घर दिखाना है तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे बढ़िया घर दिलवाना है, कोई फायदा नहीं है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने का। और अक्सर ये देखा भी गया है, अगेन विदाउट यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी,
1: मतलब कई बार अपनी चॉइस होती है वो अलग चीज अलग है, बट आई एम कमिंग फ्रॉम द प्लेस जहां पे मैंने ऐसी बातें सुनी है।
3: जी जी जी जी जी
1: जी। अच्छा संजीव जी, एक और क्वेश्चन, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। मुझे ये बताएं, पावर ऑफ सेल में कह रहे हैं बहुत सारे घर आने वाले हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी लोग परेशानी में रहे हैं।
3: जी जी अनफॉर्चुनेटली।
1: तो क्या ये सही है और कितना सही है और इससे क्या होता क्या है, इसे सच में सस्ते घर मिल जाते हैं?
3: जी ये थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि सही भी है और गलत भी है। सही, सबसे पहले तो पावर ऑफ सेल होती क्या
1: जी?
3: मैं ये बताना चाहूंगा। पावर ऑफ सेल बेसिकली एक सिंपल सा लेमैन कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं तो ये कि अगर आपने अपनी किस्तें देनी बंद कर दी, डिफॉल्ट हो गया आपका मॉर्गेज का, तो बैंक आपसे या लेंडर आपसे उस घर को बेचने की पावर ऑफ अटर्नी ले लेता है एक तरह से। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ सेल। इट इज नॉट अ फोरक्लोजर, ये कुड़की नहीं है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये कुड़की नहीं है, ये पावर ऑफ सेल है। लेंडर आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी को बेच रहा है मार्केट में, तो उसने ये देखना है कि वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बिके। तो लोगों के मन में एक ये भी भ्रांति होती है कि पावर ऑफ सेल का मतलब होगा कि अगर बैंक की मॉर्गेज $1 million वाली प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ 5 लाख की है तो बैंक तो 5 लाख में बेचेगा, अपनी मॉर्गेज निकालेगा और खाली वाली हो जाएगा।
1: तुमसे मेरा मतलब
3: हाँ, मतलब बिल्कुल खाली वाली खत्म। ऐसा नहीं होता है।
1: अच्छा,
3: ऐसा नहीं है। पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी यस डेफिनेटली आपको बेहतर मिल सकती है, डील्स मिलती हैं, लेकिन उसके कैवियट्स हैं, उसके कैच होते हैं। एक तो ये कि पावर ऑफ सेल प्रॉपर्टी एज इज वेयर इज कंडीशन पे होती है।
1: अच्छा,
3: नो वारंटीज नो गारंटीज। पावर ऑफ सेल आज आपने देखी सब कुछ था उसमें अप्लायंसेज थे, सब बढ़िया था, लेकिन जिस दिन क्लोजिंग हुई उस दिन तक कोई गारंटी नहीं कि उसमें वो सारे अप्लायंसेज भी मिलेंगे ना मिले।
1: अच्छा।
3: उस दिन तक ये भी होता है कि जो बंदा जिसने डिफॉल्ट किया है उसके पास में ये राइट होता है कि अगर उसका पैसे का जुगाड़ हो जाए तो वो लास्ट मोमेंट तक आके अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है।
1: अरे
3: तो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और आपने रेंट पे लिया है और आपने आगे नोटिस दे दिया और आपकी जगह पे कोई दूसरा भी आ गया और क्लोजिंग वाले दिन आपको पता लगा अरे वो तो गई, तो फिर आप यू नो प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो पावर ऑफ सेल में पैसे किस लिए लोग कहते हैं कि डील मिलती है, क्योंकि एज इज वेयर इज कंडीशन है, आप हर तरह के रिस्क लेते हैं, तो उसके बिहाफ पे मतलब उसके एवज में बैंक आपको कहता है कि चलो ठीक है, यू नो सिंस यू आर टेकिंग द रिस्क सो यू हैव द नेगोशिएशन पावर, दैट राइट। बट नॉट ऑल पावर ऑफ सेल्स आर लाइक मिट्टी के भाव में बिक रही हैं, ऐसा नहीं है। कभी भी पावर ऑफ सेल लेनी है तो आप अगेन प्रोफेशनल रियल्टर के साथ में बैठें, बात करें, पूछें, और मेरे से बात करनी है मुझसे बात करें, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नंबर है 416-843-7600, 416-843-7600, 7600।
1: जी मैं यहाँ पे ये समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे सवाल होते हैं और लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होती कई बार, कुछ लोगों को होती है पर बहुत सारे लोगों को नहीं होती है, और ऐसे में इट इज़ ऑलवेज गुड कि वो जो भी घर हैं वो क्या कह रहे हैं, चाहे वो पावर ऑफ सेल वाले हैं या फोरक्लोजर्स वाले हैं, वो ढंग से आप समझें किसी प्रोफेशनल के साथ। एंड व्हाई नॉट संजीव,
3: और वही मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ।
1: जी देखें तो एक्सपीरियंस का फायदा तो आप लोग उठाएं। 416-843-7600। चलते हैं क्विक ब्रेक की तरफ एंड विल बी बैक विद अ फन सेगमेंट।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
0: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785,
3: और visit amitkurana.com। At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive। चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same। हर journey को बनाए खास। Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ। Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language। Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare waynesautogroup.com।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353।
0: हर घर कुछ कहता है।
5: घर की बात संजीव मनोचा के साथ।
0: Brought to you by My Realco, the real estate company. Every Thursday 6 PM only on Filmi Nukkad.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़ स्वाति और पायस्विनी के साथ, और हमारे साथ जुड़े हैं संजीव मनुचा जी फ्रॉम माई रियल को. हम बात कर रहे हैं इनसे बहुत सारी अबाउट यू नो कैसे रियल स्टेट मार्केट यहाँ वर्क करता है, सेलर्स क्या सोचते हैं, बायर्स क्या सोचते हैं, घर क्या सोचता कहता है, और फिर रियल्टर उस सबको कैसे देखता है, समझता है और कैसे आगे कन्वे करता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको. वैसे आप संजीव जी से इस सेगमेंट के बाद बात कर सकते हैं, विच इज़ 416-843-7600. उनका नंबर है 416-843-7600. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. थैंक यू सो मच. टंग ट्विस्टिंग इसे कहते हैं. अच्छा, मैं एक चीज और अपने श्रोताओं को बताना चाह रही हूँ कि अगली बार से जब संजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों को कुछ जीतने का मौका भी मिलेगा. आप बस सेगमेंट ध्यान से सुनिएगा, एंड यू आर गोइंग टू विन सम गिफ्ट कार्ड्स, मे बी विल सी आप क्या जीतते हैं, बट हमारे साथ जुड़े रहिएगा और फिर आप कुछ बहुत अच्छा सा इस सेगमेंट में कुछ जीत भी पाएंगे, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक. इस बार अभी एक क्विक सा रैपिड फायर आपके साथ करना चाहती हूँ, ठीक है? तो मुझे आप बताएं, आई एम एक्सपेक्टिंग सम

0: अरे यार फोटो में तो भी बहुत अच्छा दिख रहा था,
1: अच्छा
0: यहाँ आए तो पता लगा कि मजा नहीं आया।
1: मुझे लग रहा है ये भी शादी वाली चीज होती है, फोटो में तो बड़ी अच्छी लग रही थी या लग रहा था।
0: आपको शादी के साथ आप कहीं कोई मैच मेकिंग सॉफ्टवेयर या कोई कंपनी तो नहीं चलाते हो?
1: मुझे कई बार लगता है कि वो थी एमा बुक।
0: अच्छा।
1: मैंने वो पढ़ी थी और जब से वो पढ़ी है मुझे लगता है मेरे अंदर का वो कीड़ा मैच मेकिंग का निकलने लगा है। एनीवे, नेक्स्ट, सेलर्स की मोस्ट फेवरेट लाइन क्या होती है?
0: ओ, सभी सेलर्स की मोस्ट फेवरेट लाइन होती है, देखो मैंने इस घर पे बहुत पैसा लगाया, बहुत बड़ी रेनोवेशन की है, अब अगर उन्होंने सिर्फ टैप्स भी चेंज की होती है, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन चूंकि आपने फनी सेगमेंट लिया
1: जी, जी, जी।
0: तो अगर उन्होंने सिर्फ टैप्स और वो भी चेंज किए होते हैं, यानी फॉसेट्स और हैंडल्स भी चेंज किए होते हैं, 5 रुपए की चीज को भी वो कहेंगे मैंने 50 रुपए की चीज लगाई है। तो ये बड़ी फेवरेट लाइन होती
1: है। मैं यहाँ पे रियल्टर्स पर्सपेक्टिव ले रही हूँ बेसिकली, एंड आई एम श्योर बहुत सारे सेलर्स और बायर्स इससे रिलेट भी कर पाएंगे और बहुत सारे रियल्टर्स भी। अच्छा, रियल जैसे घर रिजेक्ट होते हैं, बायर्स रिजेक्ट होते हैं, सेलर्स रिजेक्ट होते हैं, रियल्टर्स भी रिजेक्ट होते हैं क्या?
0: ओह यार, डेफिनेटली, दिन रात
1: चले।
0: और यही रियल एस्टेट प्रोफेशन में देखें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर जो नए रियल्टर्स भी हैं, क्योंकि आपको हर मोड़ पे हर जगह पे रिजेक्शन मिलेगी। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है, डटे रहना है मुन्ना भाई, लगे रहना है। और सिर्फ रियल्टर ही नहीं, हर प्रोफेशन में आपको रिजेक्शन मिलती है, आपको भी मिलती होंगी,
1: हर जगह
0: मिलती है।
1: लाइफ में कोई दिन ऐसा नहीं होता, देर आर मोमेंट्स जब आपको बहुत लगता है कि अरे ये तो बढ़िया हो गया, और देर आर मोमेंट्स जब लगता है अरे यार ये गड़बड़ हो गया।
0: एब्सोल्युटली,
1: डेली का काम है ये तो। चले, अच्छा, परफेक्ट क्लाइंट क्या हो सकता है किसी रियल्टर के लिए?
0: सपना। जोक्स अपार्ट, तो परफेक्ट क्लाइंट वो जिसके जो अपने टाइमली डॉक्यूमेंट्स सारे भेज दे और रियल्टर की बात सुने, एज अ टीम काम करे, और साथ में एक ही सवाल को बार बार ये ना कहे बस यार एक आखिरी सवाल, और उसी सवाल को 25 बार पूछ ले और उसके बाद भी कहे समझ नहीं आया।
1: तो बेसिकली कई बार क्या होता होगा, मेरे ख्याल से सवाल तो 2500 होते हैं, लेकिन एक ही सवाल को जब वो घुमा फिरा के पूछते हैं, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग योर आंसर।
0: एग्जैक्टली,
1: दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, रियल स्टेट को अगर जो मैं एक रिलेशनशिप स्टेटस देना चाहूँ तो क्या देंगे?
0: Oh, it's complicated, baby.
1: आजकल तो उससे भी बड़े बड़े आ गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड के अलावा नए नए आने लगे हैं। जैन जी से पूछे आप। अच्छा, घर का टूर लेते हुए कभी
0: जी
1: आपने देखा है बायर्स को कि कौन सी ऐसी चीज वो करते हुए देखें, कौन कौन सी जिसमें आपको लगता है कई बार आप मुस्कुराते हैं कोने में खड़े होकर, अरे हाँ ये बायर्स ये करेंगे, आपको पता है ये तो हो गई, अब ये तो ये करने ही वाले हैं।
0: देखें, 20 साल में मैंने ये बहुत बार देखा है कि कई बायर्स होते हैं जो आते हैं और सबसे पहले आके उनका यही काम होता है किचन की कैबिनेट्स खोलना।
1: अच्छा, किचन मोस्ट फेवरेट।
0: हाँ, किचन मोस्ट फेवरेट, और किचन की कैबिनेट्स उनके दरवाजे ऐसे खोलेंगे कि जैसे बिल्कुल मतलब CID की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
1: कुछ खाने को मिल जाएगा भी।
0: जबकि ये देखना भूल जाते हैं कि अरे किचन की कैबिनेट का अगर मान लीजिए कोई हिंज टूटा भी है तो $5 में लग जाएगा। आप उसको छोड़े, आप बड़ी चीज देखें।
1: हाँ।
0: आप फ्लोरिंग देखें, रूफिंग देखें, बाकी चीज देखें।
1: हाँ, कई बार तो, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता
0: जी,
1: है।
0: जी जी,
1: वेरी नाइस, वेरी ट्रू एक्चुअली। अच्छा, बायर्स के मोस्ट कॉमन फियर्स आपने क्या देखे हैं?
0: मोस्ट कॉमन फियर्स आज की डेट में एक इंटरेस्ट रेट और अच्छा, दूसरा नेबरहुड जी।
1: अरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: हाँ।
1: रियल स्टेट में तो वैसे भी कहते हैं ना लोकेशन।
0: एब्सोल्युटली।
1: चले, थैंक यू सो मच आज के लिए। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाह रही हूँ, बट मेरे ख्याल से आज तो टाइम हमारे पास कम है, बट वी आर गोइंग टू गो विद दैट, पर आप कुछ लिस्टिंग जरूर बताते
0: जी। एब्सोल्युटली, जाते जाते मैं क्विकली दो हैंड पिक्ड लिस्टिंग्स जो हमारे श्रोताओं के लिए मेरे पास में, वुडब्रिज में, ईस्ट वुडब्रिज में वॉन एरिया में फ्री एक कॉन्डो टाउन हाउस है जिसकी मंथली मेंटेनेंस इज इवन लेस देन 250।
1: अच्छा,
0: ओके। 3 बेडरूम 4 बाथरूम, फिनिश्ड बेसमेंट, वॉकआउट बेसमेंट है ग्राउंड लेवल पे, एक कार का गैराज है, बिल्ट इन कार गैराज है, और बहुत ही वाजिब दाम पे है ये। इसकी जानकारी के लिए, देखने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 416-843-7600, 416-843-7600। और एक दूसरी लिस्टिंग है डिटैच्ड प्रॉपर्टी, 2-स्टोरी हाउस है, 3 बेडरूम 4 वॉशरूम, ये मिसिसागा में है, मेडोवेल एरिया में।
1: अच्छा,
0: बहुत बढ़िया लोकेशन है ये, और 3 बेडरूम 4 वॉशरूम, 2 कार का अटैच्ड कार गैराज है इसमें।
1: मैं रही हूँ उस एरिया में, बहुत सुंदर,
0: बहुत बढ़िया एरिया है, फिनिश्ड बेसमेंट है, बेसमेंट में बाथरूम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत घर है। आपको प्राइवेट टूर अगर करना है

0: उसका, मुझे कॉल करें, मेरा नंबर है 416-843-7600, 416-843-7600।
1: चलें, हर घर कुछ कहता है। आपका घर अगर आप बेचना चाह रहे हैं और ठीक से समझना चाह रहे हैं कि वो जाने से पहले क्या कहना चाह रहा है ताकि अच्छा बायर मिले, या आप खरीदना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कि वही घर हमें मिले जिससे आपकी वाइब मैच होती हो, आपकी नीड्स मैच होती हो, तो आप संजीव जी को ज़रूर कॉल करें क्योंकि इन्हें सुनाई देता है कि हर घर क्या कहता है। 416-843-7600। यू कैन विजिट MyRealCo.com। थैंक यू संजीव जी।
0: थैंक यू वेरी मच।

शुक्रवार आएगा, कल का कुछ शुक्र मनाता हुआ एज गैस प्राइसेस में होगा अब नो इजाफा, रादर प्राइसेस लुढ़केंगे 8 सेंट्स प्रति लीटर सीधा। मौसम की तरह गैस प्राइसेस भी दे रहे हैं हमें वो लेटली रोलर कोस्टर वाले मजे, कभी धूम से ऊपर तो कभी दम से नीचे। जब भी गैस भरवानी होती है ना आजकल, तो गैस स्टेशन तक जाते जाते यू नो इमरजेंसी में ऐसा लगता है कि वो दबंग का डायलॉग है ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, पर गैस प्राइसेस से लगता है, बस वही लगने लगता है। फिलहाल वीकेंड पर है, अगर आपके कुछ घुमाई वाले प्लान्स तो मौसम चाहे रहेगा कुछ गीला कुछ भीगता भिगोता सा, पर गैस प्राइसेस ने फ्राइडे को तो भाई साथ देने का कर लिया है हमारा वादा। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी ने बेशक कर रखा है हमें बेहाल, पर फ्राइडे की सुबह लाएगी थोड़ी मुस्कान। 8 सेंट्स की बचत रहेगी प्रति लीटर ऑन गैस, और उससे जेब रहेगी वीकेंड पर कुछ सेफ, और घुमाई प्लान्स पर वो आपके नहीं पड़ेगी इस वीकेंड पर रेट।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: घर कहीं भी ले

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 6478648844. That's 6478648844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप प्राइवेट स्टूडियो से लुक कर इंडी पॉप.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com.
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: फीफा के टिकट चाहिए घर, तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर। अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन। अब देखो ना, फीफा के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है। मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना। ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान, है ना? पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान। अब पूछो कैसे। एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन। और फिर ड्रॉ होगा जून में। जिनके नाम निकला है उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के। अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में। अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज, तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे। या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे। देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए। अब आपको करने हैं अपने प्रयास। जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई, वुडबाइन एवेन्यू, मार्कम। फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम।
4: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
5: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
6: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
0: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं, और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए आप वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये, एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर। For details, visit mymechanicauto.ca.
7: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmi Nukkad.
0: It's the free time.

Well, I really hope कि आपने आज ये सरगम सीख डाली हो, वरना कोई नहीं, दोबारा चला दूंगी जब भी आप फिर से रिक्वेस्ट करेंगे. फिल्म थी अभिनेत्री, जहां स्टोरी वॉज अबाउट अ मैरिड कपल, जिसमें एक अभिनेत्री है हेमा मालिनी और एक साइंटिस्ट है द वेरी हैंडसम शशि कपूर. मतलब इतने हैंडसम साइंटिस्ट होते हैं, दोनों पोल्स अपार्ट वाले कैरेक्टर हैं. एंड क्वाइट डिफरेंट प्रेजेंटेशन इस फिल्म में मैरिड कपल का दैट फ्रॉम अभिमान और आविष्कार. आई वुड से ये थोड़ी लाइटर नोट पे है फिल्म एंड हैप्पीली म्यूजिकल फिल्म थी. डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय सुबोध मुखर्जी, जो फिल्मों में आने से पहले फ्रीडम फाइटर थे इन ब्रिटिश इंडिया टाइम्स. 3 महीने जेल में भी रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी. फिर इनके भाई जो शशिधर मुखर्जी फिल्मों में ऑलरेडी फिल्म मेकर की तरह एस्टैब्लिश थे, इन्हें अपने साथ मुंबई ले आए और फिर ही गिव हिट फिल्म्स की पूरी लिस्ट लाइक जंगली, शागिर्द, शर्मीली, लव मैरिज, पिंग गेस्ट एंड यस उनकी डेब्यू फिल्म ग्रेट म्यूजिक के साथ, एस जी भवन का था उसमें मुनीम जी. सो रिमेम्बरिंग द वंडरफुल स्टोरी टेलर ऑफ फिल्म्स ऑन हिज पुण्यतिथि स्वाति साइनिंग ऑफ एंड ऑल लीविंग यू विद दिस फैक्ट ऑफ लाइफ म्यूजिकली. मिलते हैं फिर कल.

0: 3FM न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि पाकिस्तानी सालिसी वफद ईरान का दौरा करेगा और मुजाकरात के किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद पैदा हो गई है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान से अफजूदा यूरेनियम लेकर उसे तबाह करने का इरादा रखते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और ईरान इन तजावीज़ का तफसीली जायजा ले रहा है। चीनी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ हफ्ते से चीन का दौरा करेंगे। अमरीकी इंटेलिजेंस के जराये ने कहा है कि ईरान ने तवक्को से बहुत ज्यादा बढ़कर अपनी फौजी कुव्वत को बहाल करना शुरू कर दिया है और नए हमलों के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि ईरान को ताकत या दबाव के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करने का तस्वुर हकीकत से दूर है। ईरान ने अब नए हुरमुस पर नए इंतजामी ढांचे का ऐलान करते हुए अमाराती रियासत फुजैरा तक निगरानी जोन कायम करने का ऐलान कर दिया। ISPR का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आइंदा समाअत पर मुतबादिल वकील न होने पर फैसला सुना देंगे। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला की बहाली के लिए शेर अफजल मरवत अदालत पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शेर अफजल की वजीर आला KP को हटाने की आईनी दरख्वास्त एक साजिश है। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि कल हमारा एहतजाज होगा और इसमें पाकिस्तान के अवाम भरपूर शिरकत करेंगे। और आज रात से गैस की कीमत में 8 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जबरदस्त आप के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबता के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 200 रुपये 80 पैसे। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में MCB की 11 ब्रांचेस के साथ साथ पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अकाउंट नहीं कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbridges.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 200 रुपये 80 पैसे। कॉल कर लीजिए 905-306-0000 905-306-0000। आज थर्सडे है। मीरा फरीजी से पवन मीरा साहब हमारे साथ होंगे। आलम ऑफिस से आफ्ताब आलम साहब से आपको मुलाकात करवाते हैं। ब्रामटन TV अप्लाइंस से सुल्ताना साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। आज कोशिश करेंगे उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं। कनेडियन इंग्लिश एयरलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन इस सबको सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे अच्छे प्यारे सामिन, सिर्फ बुजुर्गों की याद मनाने से बुजुर्गों का फैज़ नहीं मिलता, बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने से ही बात बनती है। जिक्र बहार तो फसल बहार नहीं, आज का इस्तराब तो अमल से दूर होगा मुसलसल अमल। दरिया का मकसद अगर विशाल बहर है तो ये मंजिल सिर्फ समंदर के नाम का वजीफा पढ़ने से हासिल नहीं हो सकती। दरिया का इस्तराब इसकी कुव्वत है, इसकी रवानी है। वो इस्तराब में पहाड़ों को काटता है, मैदानों से रास्ता लेता है और एक तवील जद्दोजहद के बाद आगोश कुलज़म में राहत और सुकून हासिल करता है। इस्तराब को रवानी बनाने वाला दरिया आसूदा मंजिल होता है। कौमों का सफ़र दरिया के सफ़र की तरह है। मौजों और कतरों की एक अजीम वहदत अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा अंजामकार बहरे बेकनार हमकनार हो जाती है। इनफरादी इस्तराब को इज्तमाही फ़िक्र में ढालने वाला ही कौम का रहनुमा होता है। मेरे कारवा हुई है जो अफराद कारवा में यकचैती यकसमती यक नजरी पैदा करे। कौम में वहदत फिक्र पैदा हो जाए तो वहदत अमल मंतकी नतीजा है, यानी इकबाल मिल जाए तो जनाह का मिलना लाजमी हो जाता है। आज के इस्तराब को एक चैनल दरकार है। इस्तराब तलाश अमल का नाम है और अमल इल्म के वजाहतों के निजात का नाम है। लेकिन ये बात भी मलहूज़ ख़ातिर हो कि इस्तराब ज़्यादा देर तक मंतज़र नहीं रह सकता। इसे बहरहाल कुछ ना कुछ करना है, अच्छा या बुरा। इस्तराब को उम्मीद ना मैसर हो तो मायूसी इसका नसीब बन जाती है। टिमटिमाते हुए मुस्तरब चिराग इकट्ठे करते जाएं तो एक अजीम चिरागा पैदा हो सकता है, वरना चिरागों के बुझ जाने का अंदेशा भी रहता है। इस्तराब की वजह कुछ भी हो, इससे निजात की सूरत वहदत अफकार व किरदार है और इस वहदत का हसूल ही फजल इलाही है। इसका तरीक़ेकार ज़िक्र इलाही है। ज़िक्र इलाही हर उस अमल को कहेंगे जिसका मुद्दा रज़ाए हक को, अपनी मंशा को मंशाए इज़्ज़ती के हवाले कर देने से इस्तराब दूर हो सकता है। ये बेअमली नहीं है, ये अजीम अमल है इंसान का इत्तहाद और रज़ा इलाही के हसूल के लिए, ताकि ये ज़िंदगी भी बामुराद हो اور آئندہ آنے والی زندگی بھی بانصیب ہو۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca।
4: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 9058280009। You log in ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari।
5: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
6: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500। और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। अपने

दिलों में फिर सी नई चाहें सजा बैठे, गले मिले तो सभी रंजिशें भुला बैठे। वो जिसको प्यार का मफहूम तक नहीं मालूम, उसी के दर पे ही क्यों जान दिल लुटा बैठे। जो पत्थरों के हवाले से मुतबर है बहुत, हम ऐसे शहर में शीशे का घर बना बैठे। खबर भी है कि हवाएं वफा नहीं करती, उन्हीं के दोष पे फिर क्यों दिए जला बैठे। ये नैन कुर्ब में बेइख्तियार होते हैं, जो बात दिल ने छुपाई वही बता बैठे। वो जिसको प्यार का मफहूम तक नहीं मालूम, उसी के दर पे ही क्यों जानो दिल लुटा बैठे।

0: नंबरटी को कॉल मिलाएं।
1: Talawat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861.
0: To Talawati ko call milan.
1: Talawat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773.
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7467465550.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: स्टूडेंट में आपके नंबर 4165930003। आज के दिन ब्रम्पटन टीवी अप्लायंसेस से सुल्ताना साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। क्या स्पेशल डील्स हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। 9054502828। आप घर नया ले रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, पुराना घर है, आप अप्लायंसेस चेंज करना चाहते हैं, तो यहां से जो डील मिलेंगे आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा अप्लायंसेस के हवाले से स्टोर है ब्रम्पटन टीवी अप्लायंसेस। मोवेर चकूजे का इंटरसेक्शन है, brampton appliances.com इनकी वेबसाइट है। 9054502828 रबते का नंबर है। सुल्तान राणा साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। सुल्तान साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
2: आप बहुत जबरदस्त आपकी डील, आप क्योंकि डायरेक्ट डील करते हैं, तमाम बड़े सप्लायर्स होते हैं तो आपके पास तो हर वक्त डील मौजूद रहती है, तो मैं चाहूंगा आज भी कुछ स्पेशल डील्स बताइए हमारे सुनने वालों को, और चाहे तो टीवी से शुरू कर लें।
3: बिल्कुल जी, ऐसा ही है, और मैं समझता हूँ ये अच्छा हुआ हमारे लिए कि राइट आफ्टर मदर्स डे ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया।
2: जी बिल्कुल।
3: टीवी की बात करें तो बिग स्क्रीन टीवी में 85 इंच सैमसंग टीवी, ये $1800 का था जी, तो सेल प्राइस इसकी 1399 है, लेकिन ये ओनली 999 का, सिर्फ 999 में 85 इंच कस्टमर ले सकते हैं।
2: जबरदस्त।
3: अगर 55 इंच की बात करें, सिर्फ 399 में 55 इंच, और अगर 65 इंच की बात करें तो 699 में 65 इंच। ये स्पेशल प्रमोशन है, मिस ना करें, खास तौर पे जो शौकीन कस्टमर है बिग स्क्रीन पे, अगर वो 85 से भी बड़ा टीवी लेना चाहते हैं तो 98 इंच मेरे पास $3500 वाला सिर्फ 1999 में 98 इंच फ्री डिलीवर करवाएं, 6 मंथ में पे करें, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है जी। इवन $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं। जरूर विजिट करें, लोएस्ट प्राइस गारंटी है। बोवेर एंड चंकूजी पे जी, 801 बोवेर ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेर है। brampton appliances.com हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, और डायरेक्शन ऑफ द स्टोर फ्रॉम वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। 9054502828 जी।
2: और जनाब फीफा वर्ल्ड कप भी आना है, बिग स्क्रीन पे देखने का मजा आएगा, और इतने प्राइसेज आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो फौरन रब्ता कर लीजिए 9054502828। अप्लायंसेज में क्या स्पेशल है सुल्तान साहब?
3: अप्लायंसेज में भट्टी 40% का डिस्काउंट है वैसे हमारी अप्लायंसेस इंडस्ट्री में ना जी, मैक्सिमम 15 या 20 और मैक्सिमम 25% का डिस्काउंट चलता है जी। 40% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें खास तौर पे अगर आप पैनल रेडी फ्रिज लेना चाहते हैं, 48 इंच का फ्रिज है जी, बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव और पैनल रेडी डिशवॉशर इसके साथ लगाई गई है। $26,000 का ये बिल्ट इन किचन, जिसमें पैनल रेडी 48 इंच फ्रिज इंक्लूड किया है, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन, $18,900 में ऑलमोस्ट $6,100 आप सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे, अगर आप बिग 48 इंच फ्रिज के साथ लेना चाहते हैं, या फिर 36 इंच फ्रिज के साथ भी बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवॉशर, $12,000 वाला किचन आपको 6,900 में मिल जाएगा। ये भी ह्यूज सेविंग है जी। इवन सिंगल पीस लेना चाहते हैं, 36 इंच वाइड फ्रेंच डोर फ्रिज, $2500 वाला 1799 में लेके $700 आप सिंगल पीस फ्रिज पे ही सेव कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ड्री सेक्शन में जी, टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर हमारे पास $1800 वाला 1099 का पेयर है, वॉशर ड्रायर दोनों 1099 में मिल जाएंगे, और जो कस्टमर फ्रंट लोड अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी, वॉशर भी स्टीम ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ, अपडेटेड टेक्नोलॉजी विद प्लैटिनम सीरीज, प्लैटिनम कलर, आपको $2600 वाला 1799 में पेयर मिलेगा वॉशर एंड ड्रायर का, और आप एटलीस्ट $800 वॉशर एंड ड्रायर फ्रंट लोड अल्ट्रा लार्ज कैपेसिटी, जिसमें आप किंग साइज कंफर्टर या किंग साइज ब्लैंकेट यू कैन वॉश इन अ सिंगल लोड। बेस्ट डील, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहां आपने सिक्स मंथ में पे करना है, डिलीवरी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। 801 बोवे ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। 905-450-2828, 905-450-2828 जी,
2: 905-450-2828, brampton appliances.com इनकी वेबसाइट है। कि स्पेशल डील्स का फायदा उठा लीजिए, अप टू 40% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सुल्तान साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, और तशरीफ ले जाइए और इस स्पेशल मौके का फायदा उठा लीजिए।
4: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
5: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
4: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ,
5: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
4: दैट्स वंडरफुल,
5: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
4: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
5: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
2: जी हाँ, brampton appliances.ca या brampton appliances.com पे जाके आप तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 905-450-2828 रब्ते के नंबर है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। रुकन कौमी असेंबली शेर अफसल मरवत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के मंसर पर अली अमीन गंडापुर की बहाली के लिए अदालत पहुंच गए हैं। वफाकी आईनी अदालत में उन्होंने दरख्वास्त जो है दायर की है और कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को गैर आइनी और कलदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के उहदे से इस्तीफा एक सजा याफ्ता नाहिल अफराद की डिक्लेरेशन पर लिया गया। शेरफुल मरवत की दरख्वास्त में सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर तकर्री का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की इस्तदा की गई है और दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा दबाव के तहत लिया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इन्हें दोबारा वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर बहाल किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गैर आइनी इक़दामात के नतीजे में होने वाले तमाम सरकारी फैसले भी मनसूख किए जाएँ। अच्छा, अब इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब का क्या रद्द अमल है और अली अमीन गंडापुर का क्या रद्द अमल है, ये भी आपको बताते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेर अफसल मरवत की आइनी कोर्ट में डायर पिटिशन मेरे नोटिस में आई है और पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी कोशिश इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी जिसमें माइनस बानी पीटीआई होगा। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में जो कि 8 घंटे जारी रहा, मुल्क में दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। मुश्तरका तौर पर कहा गया है कि हमें माइनस बानी पीटीआई मंजूर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के साथ जो रवैया बरकरार रखा गया है वो गैर आइनी है, गैर इंसानी है। बुशरा बेगी केसेस फिलफौर मुकर्र करके उनका फैसला किया जाए। उनका कहना था कि मेरे नोटिस में लाया गया है कि शेर अफसल मरवत ने आइनी कोर्ट में पिटिशन दायर की है, ये एक साजिश की जा रही है जिसकी हम मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौर ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला कौन होगा, इसकी इजाजत सिर्फ बानी चेयरमैन देते हैं। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी बानी पीटीआई की मर्जी से बने हैं, यह फैसला रिवर्स नहीं हो सकता। अली अमीन ने भी इस हवाले से वजाहत की, उन्होंने उनको खराज तहसीन भी पेश किया। उधर साबिक वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असेंबली शेर अफसल मरवत की अदालती दरख्वास्त पर अपने रद्द अमल में कहा है किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ ना मेरा ताल्लुक है ना ही अमल दखल है। बानी पीटे के हुक्म पर वजारत आला के इस्तीफे की हिदायत पर अमल दरामा से अपना फर्ज अदा किया है और जैसे हमने जिक्र किया शेर अफसल मरवत साहब ने इस हवाले से अदालत से रजू किया है और अब दोनों तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसकी वजाहत कर दी कि उनसे कोई उनका ना इससे ताल्लुक है और बैरिस्टर गौहर तो कह रहे हैं कि साजिश है, इसको कोर्ट इंटरटेन करेगी और उसके ऊपर कोई फैसला होगा। बाहर तो लगता है ऐसा है कि ये मामला शेर अफसल मरवत साहब क्यों लेकर आए हैं, उनका इससे क्या ताल्लुक बनता है। वो तो मेंबर सूबाई असम्बली भी नहीं है, अगर मेंबर कौमी असम्बली, अगर कौमी असम्बली को मामला होता फिर तो कोई बात हो सकती थी। तो इसके पीछे क्या है, हो सकता है कुछ हकीकत इसकी सामने आ जाए, लेकिन क्या कीजिए। कुछ खूबसूरत सा एक नगमा आपको सुनवाते हैं, उसका इससे ताल्लुक तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, आइए सुनते हैं।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। अपने